जिंदगी में जागना ही है तो हर दिन उम्मीद के साथ ही जागिए। जिंदगी में जागना ही है तो हर दिन उम्मीद के साथ ही जागिए। निराशा के साथ जागे तो पूरा दिन निराश ही रह जाएंगे। उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, कभी न कभी सफल जरूर हो जाएंगे। 5:36 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरत

सिर्फ काटना ही है मकसद तुम्हारा तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी। सिर्फ काटना ही है मकसद तुम्हारा तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी। पर हम लोग यहाँ जिंदगी काटने नहीं, जिंदगी जीने आए हैं। 5:47 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 14वीं तिथि के तदनुसार 5 अगस्त सन 2026 इस समय सुबह के 5:53 और 36 सेकंड हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। 6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और ठीक 7 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 7:05 का समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का।

10 मिनट पर रोजाना की तरह आप सुनेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। 7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आज सवेरे। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। आठ बजकर 15 मिनट का समय रहेगा मॉर्निंग न्यूज का। 8:30 पर आप सुन सकेंगे उर्दू में समाचार और 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ठीक 9 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 9:05 पर एक बार फिर से होंगे अंग्रेजी में समाचार और 9:10 पर जारी रहेगा कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ये थी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 5:59 हो चुके हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश के संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी के जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित

0: ने चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha had already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the neat paper leak issue. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor Olia that sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. In a statement, Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It said the Indian Embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Yemeni authorities for the safety and security of the crew. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. It said the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. The Ministry of External Affairs said the targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He added that Pakistan must be held accountable and the world should see Pakistan's hypocritical lecturing on human rights.
1: This so-called local election in Pakistan-occupied Kashmir is a complete farce. The real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. Such hollow exercises cannot hide reality. Since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. Many more have been injured. As you have seen, the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression, and now seeks to manufacture legitimacy.
2: India, as chair of BRICS 2026, will host the third BRICS Culture Working Group meeting in Bhopal from today till August 6th. The Ministry of Culture said that the meeting will bring together representatives from BRICS member states to advance cultural cooperation and build consensus on key areas ahead of the BRICS Culture Ministers meeting.

में ही आस्था है, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति है, ओम में ही समस्त संसार। चलिए शिव के आशीर्वाद के साथ करते हैं नए दिन की मंगलमय शुरुआत। ओम नमः शिवाय। 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं अर्पण, मैं हूं उर्वशी, FM गोल्ड पर। सुप्रभात।

कुछ भी वास्तविक नहीं होता जब तक उसका अनुभव ना किया जाए, और अनुभव करने के लिए समय और ध्यान दोनों देने होते हैं। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें। 6:17 और 20 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं अर्पण 100.1 MHz FM गोल्ड पर।

सुबह की शुरुआत अगर शिकायतों से नहीं बल्कि धन्यवाद से हो तो पूरा दिन हल्का और सुंदर महसूस होता है। यकीन ना हो तो आजमा कर देखिएगा आज।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: छः बजकर 31 मिनट और 25 सेकंड हो चुके हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज FM गोल्ड पर आप हैं अर्पण में। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। आइए मिलकर प्रभु के स्मरण करें और इन पलों को आनंदमय बनाएं।

देखिए तो मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा आगे ही बढ़ाती हैं। इसलिए भाग्य के इंतजार में मत रुकिए, एक एक कदम सीढ़ी चढ़ते रहिए। अगर सफर में भाग्य साथ दे दे तो मंजिल और भी आसान हो जाएगी।

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया, अनुनय विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हट उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया पर हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। हमले के बाद ये जहाज कल यमन तट से दूर लाल सागर में डूब गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने यमन के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी थी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। ये नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के कारण, पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही आज दिन में 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha had already passed the bill. Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved the bill in the Upper House, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. Following the passage of the bill, the Lower House was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The Lower House witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET paper leak issue. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz-e-Noor-e-Aulia that sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. In a statement, Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It said the Indian Embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Yemeni authorities for the safety and security of the crew. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. It said the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. The Ministry of External Affairs said the targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He added that Pakistan must be held accountable and the world should see Pakistan's hypocritical lecturing on human rights.
1: This so-called local election in Pakistan-occupied Kashmir is a complete farce. The real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. Such hollow exercises cannot hide reality. Since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. Many more have been injured. As you have seen, the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression, and now seeks to manufacture legitimacy.
2: The Reserve Bank of India will announce its bi-monthly monetary policy review today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the latest repo rate decision in Mumbai at 10 a.m. Monetary Policy Committee of the Central Bank began its three-day meeting on Monday. The policy decision comes at a crucial juncture amid persistent geopolitical tensions and a hawkish U.S. Federal Reserve. The RBI is expected to hold the core repo rate unchanged at 5.25%. India, as chair of BRICS 2026, will host the third BRICS Culture Working Group meeting in Bhopal from today till the 6th of August. The Ministry of Culture said that the meeting will bring together representatives from BRICS member states to advance cultural cooperation and build a consensus on key areas ahead of the BRICS Culture Ministers meeting. Meanwhile, the 13th BRICS Education Ministers meeting and the third BRICS Senior Officials meeting will also be held from today till the 7th of this month in Bhubaneswar, Odisha. Education Ministry said that these meetings will bring together education ministers, senior officials and delegates from BRICS member countries. The Medical Counseling Committee will begin round one registration for NEET U.

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जानते हैं 1914 में आज ही के दिन दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल अमेरिका के क्लीवलैंड शहर में लगाया गया था। सोचिए, एक छोटी सी लाल, पीली और हरी बत्ती ने सिर्फ ट्रैफिक को ही नहीं संभाला बल्कि लोगों को एक बड़ी चीज भी समझा दी कि जिंदगी में हर समय आगे बढ़ना जरूरी नहीं होता। कभी रुकना, थोड़ा इंतजार करना और सही समय पर आगे बढ़ना, ये भी एक तरह की समझदारी है, इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी है।

जी हाँ, रस्ते पे प्रीत कड़ी मिल जाए तो मज़ा ही क्या, लेकिन रस्ते पे और भी बहुत कुछ मिलता है, स्पेशली जब आप सुबह सुबह निकलते हैं। और आज है बुधवार की खूबसूरत बादलों भरी सुबह, मूड तो अलग है ही आज मौसम का, साथ ही आपका भी हो सकता है मूड, बारिश हो सकती है। और जब निकलेंगे घर से तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं पानी मिल सकता है या थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है, तो ऑफिस या स्कूल के तरफ जाते हुए निकलते हुए थोड़ा सा टाइम साथ में लेके निकलिएगा और मौसम का मज़ा लेते रहिएगा। फिलहाल गोल्ड सुप्रभात में इतना ही, आपसे मिलूंगी म्यूजिकल दिल्लगी में 8:45 पर। और अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार, सुप्रभात। कवि हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। इन पंक्तियों में जैसे सुबह का एक संदेश छिपा है। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, कदम कभी भी धीमे भी पड़ेंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए चलते रहना जरूरी है। तो क्यों ना आज की सुबह खुद से यही वादा करें कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हम अपने उत्साह को कम नहीं होने देंगे। इसी उम्मीद और उत्साह के साथ समाचार सेवा प्रभाग की कार्यक्रम आज सवेरे की सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खुशनुमा सुबह में आपके साथ मैं हूँ वैष्णवी, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। Good morning, Subhadra.
1: Vaishnavi, good morning. You know, facing life's hurdles with a cheerful spirit always makes one stand out. You said it already. Mm-hmm. So just focus on, you know, the solutions with a positive mindset. So listeners, get ready now for another, you know, interesting session of Aaj Savere. Vaishnavi, we then begin with some news headlines.
0: भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे ओलिया पर हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। हमले के बाद ये जहाज कल यमन तट से दूर लाल सागर में डूब गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन तथा व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए।
1: Reserve Bank of India will announce its bi-monthly monetary policy review today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the latest repo rate decision in Mumbai at 10 a.m. Monetary Policy Committee of the Central Bank began its three-day meeting on Monday. The policy decision comes at a crucial juncture amid persistent geopolitical tensions and a hawkish U.S. Federal Reserve. The RBI is expected to hold the core repo rate unchanged at 5.25%. This would mean that the six-member MPC is anticipated to retain a neutral stance. The repo rate is the interest fee the Reserve Bank of India charges when it lends money to commercial banks. The central bank in its commentary will lay out the inflation risks, crude oil prices, global geopolitical uncertainties that may affect the Indian economy.
0: और अब अगली खबर छात्रों के लिए है। मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। पंजीकरण शुरू होने से पहले संस्थानों ने कल संभावित सीट मैट्रिक्स का सत्यापन किया। उम्मीदवारों के लिए चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सुबह 11 बजे बंद हो जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए उम्मीदवार टोल फ्री नंबर 8180010273 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने प्रश्न mcc2026@gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं।
1: India Meteorological Department has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. According to IMD, heavy to very heavy rainfall is expected over parts of Arunachal Pradesh, Bihar, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Uttar Pradesh and Uttarakhand for the day.
0: और सुभद्रा, आप खेल जगत के कुछ श्रोताओं को खबर देते हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत सहित

0: भारत के शीर्ष खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानित दयानंद और थारुन मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में चुनौती रखेंगे। वहीं अनमोल खार, मालविका भंसौड़, आकर्षि कश्यप, ईशा रानी बरुआ और तान्या हेमंत महिला सिंगल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।
1: एंड वैष्णवी, समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो व्हाट इफ कार्स स्टार्ट टॉकिंग, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यू नो कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप एंड ऑल ऑफ अस लव चैटिंग, राइट? व्हेदर इट्स बिटवीन फ्रेंड्स, family or colleagues, the better we communicate and safer and stronger our connections become. But here's something fascinating. What if vehicles could communicate too? Well, that future may not be far away. Starting October next year, that's 2028, after 2 years, new vehicles in India could be equipped with vehicle-to-vehicle or V2V communication technology.
0: जी बिल्कुल, बहुत ही आधुनिक तकनीक है ये, और इसे इस तरह समझें कि जैसे गाड़ियां आपस में बात कर रही हों, एक दूसरे को अचानक ब्रेक लगने के बारे में चेतावनी देना, आसपास के वाहनों को संभावित टक्कर से सावधान करना, गलत दिशा में गाड़ी चलाने का पता लगाना या यहां तक कि आने वाली एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाना, अंतिम क्षण में प्रतिक्रिया देने के बजाय वाहन वास्तविक समय में बात और सुन सकेंगे, जिससे हमारी सड़कें ज्यादा स्मार्ट और काफी सुरक्षित हो जाएंगी।
1: I'm sure even the roads will talk, start talking, you know. So it's going to be fun if our cars start talking. And it also, Vaishnavi, it's a reminder that our communication isn't just important for us humans anymore. It's becoming essential for machines as well. And also, you know, it's breakfast time. I'm sure you're thinking of eating something good, some fruit maybe.
0: Bilkul.
1: Maybe a fruit. Mm-hmm. So what if a fruit that looks a little scary turns out to be incredibly sweet and even changes the fortunes of farmers? Meet rambutan, a bright red hairy looking tropical fruit from Southeast Asia that's often called the hairy cousin of the lychee. So peel away its spiky shell and you will find juicy translucent white flesh that tastes like a delightful blend of lychee, grapes and a hint of pear. I'm sure you may want to try it, right?
0: बिल्कुल, और अब ये सिर्फ दिल ही नहीं जीत रहा बल्कि आजीविका भी संवार रहा है। केरल में कई किसान पारंपरिक रबर के बागों की जगह रामबुतान के बाग लगा रहे हैं, क्योंकि इस विदेशी फल से रबर के मुकाबले बहुत बेहतर मुनाफा मिल रहा है, जबकि रबर की कीमतें लंबे समय से दबाव में है। ये इस बात की एक मीठी याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़े अवसर सबसे अप्रत्याशित रूपों में उगते हैं, और इस मामले में वे छोटे छोटे लाल बालों से ढके होते हैं।
1: इंटरेस्टिंग, एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन।
0: अब जरा अपने सफर का रुख देश के अलग अलग शहरों की ओर करते हैं, जहां आज की सुबह अपने साथ कई अहम गतिविधियां लेकर आई हैं। इस सफर की पहली मंजिल है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी रहेगा। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 27 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
1: Getting to Chennai now, Indian Institute of Technology, IIT Madras and SBI Foundation have expanded the program to support 80 para-athletes across 8 Paralympic disciplines. In the first phase, the scholarship was awarded to 26 athletes who collectively won 70 medals, including 32 gold, 22 silver, 16 bronze in national and international competitions. In the second phase, the scholarship will be awarded to 40 male and 40 female para-athletes across archery, athletics, badminton, judo, powerlifting, shooting, swimming, taekwondo sports. Each athlete will get a monthly scholarship stipend of 40,000 rupees for a year, in addition to personalized sports science, based performance assessments, and sports nutrition guidance. Indian para athletes up to 35 years who have represented their state and India in recognized national or international competitions are eligible to apply, subjected to the program's selection criteria. And Vaishnavi, we have another news from Chennai now. Sleuths from Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, DVAC, seized 3.61 lakh rupees unaccounted cash following simultaneous raids at the Jujuwadi checkpost near Hosur on the Tamil Nadu-Karnataka National Highway.

0: Yesterday, following a tip-off on illegal bribe collections, DVAC teams led by Krishnagiri DSP Jay Kumar split into two groups and stormed both checkposts, one entering Tamil Nadu and another exit towards Karnataka. During the intensive search of files, registers and officials on duty, the team recovered 2.28 lakh rupees from the Tamil Nadu entry checkpost and 1.33 lakh rupees from the Karnataka exit checkpost. A case has been registered and investigations is underway.
1: और चेन्नई से अब चलते हैं महाराष्ट्र के ओर. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम 6 और 7 अगस्त को मुंबई में ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन करेगा. इसमें ब्रिक्स देशों के 500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे. इस दो दिवसीय कार्यक्रम में फिल्म प्रसारण, ओटीटी, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी से जुड़े विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श और कारोबारी बैठकों का आयोजन होगा. और दूसरी खबर है, बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं यातायात समिति BEST ने मुंबई में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को देखते हुए फीडर सेवाओं और अंतिम छोर तक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 1500 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक मीडी बसों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है. इन 9 मीटर मीडी बसों को विभिन्न चरणों में वर्ष 2027 के अंत तक बेड़े में शामिल किया जाएगा.
0: We are going to Bengaluru now. Bengaluru Development Minister Krishna Bairagoda Gowda reviewed the progress made on the LED street lighting project in the state capital. He observed that this project has the potential to achieve 61% electricity savings. Work orders for the project were issued in May last year, under which over 3,02,000 LED streetlights were to be installed across the city. However, he added that only about 2.67 lakh such lights have been installed so far. On the same lines, 24,677 centralized control and monitoring system panels were to be installed, but only 7,567 panels have been set up as of now. The minister noted that the project is not done within the stipulated time and announced an additional 2-month extension to complete the installation of all pending LED street lights and control system panels. He asked the municipal corporation engineers to submit reasons for the delay in completing the project. He also directed the contractors to resolve all the complaints received for replacing the street lightings within 48 hours. He also ordered the officials to impose penalties on the contractors who do not heed to the complaints. Over to you, Vaishnavi.
1: और कोलकाता में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज पश्चिम बंगाल पहुंचेंगी. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और शिकायतों का समाधान करना है. कार्यक्रम के दौरान वे महिलाओं की जनसुनवाई करेंगी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ महिला सुरक्षा की समीक्षा बैठक भी करेंगी. इसके अलावा वे हावड़ा और कोलकाता में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भी शामिल होंगी.
0: Going to Hyderabad now, Telangana Chief Minister Revant Reddy has ordered top officials to make foolproof arrangements for the upcoming police recruitment exams. The government recently announced 7,437 police job vacancies across the state. The Chief Minister held an emergency meeting yesterday. He directed officials to ensure strict security and complete transparency at every stage of the exam, from preparing and printing question papers to transporting them safely. He also asked for tight security at exam centers and close watch on coaching centers across the state. The Chief Minister ordered action against fake news on social media related to the examinations. He also instructed the cybercrime wing to track down touts, fake websites and social media accounts cheating candidates with false job promises. Both the cybersecurity and intelligence wings have been told to stay on high alert until the examinations are completed.
1: सुभद्रा, अब एक नज़र मौसम के पे भी डाल लेते हैं. महानगरों में आज कैसा मौसम रहने वाला है? दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है.
0: I hope you're carrying your umbrella today.
1: जी बिल्कुल. और अधिकतम तापमान श्रोताओं 33 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई में भी आसमान में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश हो सकती है. यहां अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं कोलकाता में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
0: एंड चेन्नई

0: is likely to witness a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The temperatures are expected to range between a minimum of 26 degrees Celsius, maximum of 35 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 21 degrees, while the maximum may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. Temperatures are expected to range from 25 degrees to 32 degrees Celsius.
1: आइए अब इतिहास के उन खास पलों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने 5 अगस्त को यादगार बनाया।
0: Okay, I'm going to the year 1772. The first partition of Poland among Austria, Prussia and Russia is made public. And in 1884, workers laid the cornerstone for the Statue of Liberty on Bedloe Island in New York City. This marked the commencement of the creation of an enduring icon representing freedom and hope.
1: और 1960 में 5 अगस्त के दिन उस समय अपर वोल्टा के नाम से पहचाने जाने वाले देश ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की थी। बाद में 1984 में इसी देश का नाम बदलकर बुर्किनो फासो रखा गया।
0: And in 1963, the United States, the Soviet Union and the United Kingdom signed the Nuclear Test Ban Treaty in Moscow.
1: और 1991 में आज ही के दिन न्यायमूर्ति लीला सेठ ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला और भारत की किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। वहीं 2019 में 5 अगस्त का दिन भारतीय राजनीति और संविधान के इतिहास में एक बड़े फैसले के लिए दर्ज हुआ। इसी दिन केंद्र सरकार ने संसद में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव पेश किया और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से जुड़े कदम भी सामने रखे गए। और अगर बात खेल के मैदान की ओर रुख करें तो 2021 में 5 अगस्त का दिन भारतीय हॉकी के लिए बेहद खास बन गया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ओलंपिक हॉकी में भारत के पदक का 41 साल का इंतजार खत्म हुआ।
0: एंड ऑल्सो वैष्णवी, इन 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द सिंबॉलिक कॉर्नरस्टोन फॉर राम मंदिर एट अयोध्या।
1: और श्रोताओं, अब इतिहास के पन्नों से आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं उन विशिष्ट हस्तियों के और जिनका जन्म या पुण्यतिथि आज के दिन से जुड़ी है और जिनके विचार, व्यक्तित्व तथा योगदान आज भी समाज को प्रेरित करते हैं।
0: Yes, Vaishnavi, he was called the modern builder of Assam, freedom fighter, the first chief minister of Assam, Gopinath Bordoloi, passed away this day in 1950 at the age of 60.
1: महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें 1922 में गिरफ्तार भी किया गया था। विभाजन के दौर में उन्होंने असम की पहचान और भारत की एकता अखंडता से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा को विकास की आधारशिला मानने वाले बोर्दोलोई ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय समेत कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में योगदान दिया। उनके जनसेवा के प्रति समर्पण के कारण उन्हें लोकप्रिय की उपाधि मिली। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 5 अगस्त 1950 को उनका निधन हुआ, लेकिन आधुनिक असम के निर्माण में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है।
0: Yes, and of course.
1: और श्रोताओं, आज से करीब 125 साल पहले जब देश में अंग्रेजी शासन का प्रभाव रहा था, तब उड़ीसा की धरती पर एक ऐसे युवा ने जन्म लिया जिसने कम उम्र में ही अपनी आवाज को समाज और राष्ट्र के सवालों से जोड़ दिया। आचार्य प्यारे मोहन का जन्म 5 अगस्त 1852 को कटक जिले में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने उत्कल पुत्र नामक समाचार पत्र निकालना शुरू किया और निर्भीकता से अपने विचार सामने रखे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और 1875 में एक हाई स्कूल की स्थापना में उनकी प्रमुख भूमिका थी, जो आगे चलकर प्यारे मोहन अकादमी के नाम से जाना गया। उन्होंने उड़िया भाषा में उड़ीसा का इतिहास भी लिखा। राष्ट्रवादी विचारों और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण उन्हें उड़ीसा के इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। वहीं राजनीति के साथ पत्रकारिता और साहित्य, तीनों क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं, लेकिन द्वारका प्रसाद मिश्रा का व्यक्तित्व इन तीनों का अनोखा संगम था। 5 अगस्त 1901 को जन्मे मिश्रा स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक अंग्रेजी शासन का विरोध किया। 1929 में उन्होंने लोकमत नामक राष्ट्रवादी हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहित्य के क्षेत्र में उनकी प्रमुख रचना कृष्णायन

0: मंच पर कोई किरदार सिर्फ संवादों से नहीं बल्कि आवाज, भाव और मौन से भी जीवित होता है। उत्तरा बावकर ने अभिनय की इस गहराई को रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन तीनों माध्यमों में अपनी पहचान बनाया। उत्तरा बावकर ने मुख्यमंत्री, मीना गुर्जरी, शेक्सपियर के ओथेलो, तुगलक और उमराव जान जैसे नाटकों में यादगार भूमिका निभाई। हिंदी रंगमंच में उनके अभिनय के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। फिल्म एक दिन अचानक में उनके अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का सम्मान भी मिला।
1: Erto Moreira is a Brazilian percussionist, drummer and singer who gained worldwide recognition after being a member of the Miles Davis group from 1969 to 1971. Also friends, he's a favored musician wanted by not just jazz peak artists, but also from the rock world. Erto's contribution as a percussionist to the jazz world was so powerful that Downbeat magazine created the category of percussion to its readers and critics polls, which he has won over 20 times since 1973. You're listening to a beautiful tune playing in the background called Escape, accompanying his cool Latin rhythms, the singer Flora Purim.

0: एक दिन चलते चलते यूं ही ढुलक जाएगी गर्दन, सबसे ज्यादा दुख सिर्फ चश्मे को होगा। ये पंक्तियां हिंदी के चर्चित कवि वीरेन डंगवाल की कविता कैसे जिंदगी जिए से है। इस कविता में कवि एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की विडंबना और अकेलेपन को सामने रखते हैं जो भीड़ के बीच रहकर भी भीतर से अकेला है और अपनी ही उलझनों में घिरा हुआ है। वीरेन डंगवाल की कविताओं में आम आदमी और रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयां सहज भाषा में दिखाई देती है। इसी दुनिया में दुष्चक्र में श्रेष्ठा और स्याही ताल उनके प्रमुख कविता संग्रह है। दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए उन्हें 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: Tributes to Carmen Miranda, Portuguese-born Brazilian samba singer, dancer, Broadway actress and film star who began her entertainment career in the 1930s as a singer in Rio de Janeiro. And also friends, former cricketer, then a coach, Venkatesh Prasad celebrates his birthday today. He made his test debut in 1996, had a steady career for the next 5 years. Of course, he performed best under helpful conditions abroad. He worked as a bowling coach of the Chennai Super Kings as part of the team when they won a trophy in 2010.
0: कुछ कलाकार पर्दे पर किरदार निभाते हैं और कुछ अपने अंदाज से उन किरदारों को यादगार बना देते हैं। काजोल का नाम ऐसी ही अभिनेत्रियों में लिया जाता है। आज काजोल अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं। काजोल ने बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और फना जैसी फिल्मों में विविध भूमिकाएं निभाई। उन्हें 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं और 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। अगर काजोल की अभिनय की किसी एक खासियत की बात करें तो वे है भावनाओं की सहजता से पर्दे पर उतार देना। यही वजह है कि उनकी कई भूमिकाएं आज भी दर्शकों की स्मृतियों में ताजा है। आइए काजोल के जन्मदिन को थोड़ा और खास बनाते हैं उनके यादगार गीतों के साथ।

0: और श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ आज के आज सवेरे में बस इतना ही। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी।
1: Stay tuned for coming up now with Samacha Prabhat, the Hindi News Bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day. Namaskar.

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
3: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
4: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
2: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
5: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में दो अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन स्तर पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को

0: मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
2: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17-23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के 2-2 खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत का परचम बरदार जहाज बोहेरा एमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजियों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी 2 माही पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने RBI से कहा है कि वो फर्जी और साइबर घोटाले वाले खातों से निमटने के लिए कामकाज के मयारी तौर तरीके तैयार करे। 2026 की नीट UG काउंसलिंग के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने आसाम और मेघालय में आज बहुत शदीद बारिश से आगाह किया है। और बैडमिंटन में PV सिंधु ने BWF आलमी चैंपियनशिप के लिए नवा मकाम, जबकि सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 5वां मकाम हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। यमन के साहिल के नजदीक बोहरे अहमर में कल भारत का परचम बरदार तिजारती जहाज MCV फैजे नूरे ओलिया हमले के बाद डूब गया है। जहाज पर सवार सभी 14 जहाजरां, जिनमें 13 भारतीय शहरी थे, उन सभी को बचा लिया गया है। तफसील हमारे नामे निगार से।
1: रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय परचम बरदार टैंकर सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस जहाज को यमन के पानी में हमले का निशाना बनाया गया, जिसके बाद ये डूब गया। जनाब सोनोवाल ने कहा कि भारत दिफा से कासिर तिजारती जहाज पर इस इश्तियाल अंगेज हमले की सख्त मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की सलामती सबसे अहम तरजीह है। इस दौरान वजारत खारजा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि खित्ते में तिजारती जहाजरानी पर हमलों के वाकयात का जारी रहना इंतहाई तशवीशनाक है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि खित्ते में तिजारती जहाजरानी को हमले का निशाना बनाना ख़त्म होना चाहिए और खित्ते की बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों में जल्द से जल्द आज़ाद और बिला रुकावट जहाजरानी और तिजारत को बहाल किया जाना चाहिए। वजारत ने कहा कि रियाज में वाक़ भारतीय सफारतखाना सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है और अमले के अफराद की हिफाजत और सलामती के लिए यमन के हुकाम के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रहा है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के नाम नहाद मकामी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर तमाशा करार दिया है और कहा है कि इस तरह की खोखली हरकतें सच्चाई को नहीं छुपा सकती। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने इशारा दिया कि असल मामला अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मुजाहिरीन का जालिमाना कत्ल है। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में अब तक कम से कम 90 शहरी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी इख्तलाफ का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट, जोर ज़बरदस्ती और धमकियों से दिया है और अब इस तरह की खोखली इंतखाबी मशकों के जरिए उन्हें जायज़ ठहराने का जवाब ढूंढ रही है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को इंसानी हकूक पर पाकिस्तान की मुनाफिकाना लफाजी को भी सुनना चाहिए। सितंबर के महीने में नई दिल्ली में मुनद होने वाली ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के दावतनामे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के वजीर अजम तारिक रहमान की जानिब से इस साल फरवरी के महीने में अहदा संभालने के बाद उन्हें भारत के दोतरफा दौरे की रस्मी दावत दी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स की सकाफती मीटिंग की मेज़बानी की जा रही है। बहुत से मुल्कों के मंदूबीन सकाफत से मुतालिक 4 रोज़ा तबादले ख्याल के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: ये 4 रोज़ा मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनक़िद की जा रही है, जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें ब्रिक्स के सकाफती वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स के वज़राए सकाफत की मीटिंग से शामिल हैं। इस तकरीब के लिए शहर की खास तौर पर तज़ईन कारी की गई है। VIP रोड और भोज सेतु को ताज़ा रंगों और मुराल से सजाया गया है। इब्तदाई 2 रोज़ के दौरान सीनियर अफसरान तबादला ख्याल करेंगे और बाद के 2 दिन सकाफत के वज़ीरों की मीटिंग्स मुनक़िद होंगी। वज़रा एक मुश्तरक ऐलानिया को कतई शक्ल देंगे। भारत ने रुकन मुल्कों के सामने 2 अहम तजावीज रखी हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक फनकारों और सकाफती वर्से के लिए एक मुश्तरक डिजिटल प्लेटफॉर्म तख्लीक देने से है और दूसरी तजवीज़ का ताल्लुक ब्रिक्स मुल्कों की तरफ से यूनेस्को की मुश्तरक नामजदगियों की हौसला अफजाई से है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: ब्रिक्स के वज़राए तालीम की 13वीं मीटिंग और ब्रिक्स के सीनियर अफसरान की 30वीं मीटिंग ओडिशा के शहर भुवनेश्वर में आज से इस महीने की 7 तारीख तक मुनक़िद की जाएगी। वज़ारत तालीम ने बताया कि इन मीटिंग्स में ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए तालीम, सीनियर अफसरान और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मीटिंग के दौरान इश्तराक के मौजूदात पर बातचीत की जाएगी, जिनमें बचपन के इब्तदाई दौर में देखभाल और तालीम, नीज हुनरबंदी को मुस्तहकम बनाने, तआवुन में इजाफा करने और इश्तराक पर मबनी तहकीक, इख्तिरा, नीज स्टार्टअप्स को फ़रोग देने जैसे तरजीही मैदान शामिल हैं। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ब्रिक्स के वज़राए तालीम की इस 13वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI अपनी माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान आज करेगा। इस माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान हर 2 महीने में एक बार किया जाता है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ताज़ा तरीन रेपो रेट के फैसले का ऐलान मुंबई में सुबह 10 बजे करेंगे। पॉलिसी से मुतालिक ये फैसला एक ऐसे वक्त किया जा रहा है जब जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी का सिलसिला जारी है और अमरीका के वफाकी बैंक की पॉलिसी में जारहीत का रुझान पाया जाता है। उम्मीद है कि RBI अपनी रेपो रेट 5.25% में कोई तब्दीली न करे। इसका मतलब ये होगा कि माली पॉलिसी से मुतालिक 6 रुकनी कमेटी MPC अपना गैर जानबदाराना मौकिफ बरकरार रखे। रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आयद सूद की वो फीस होती है जो वो कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देते हुए वसूल करता है। रिजर्व बैंक अपने तबसरे में इफरात जर से मुतालिक उन अंदेशों, खाम कीमतों और आलमी जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी हालात का जिक्र करेगा जो भारतीय मईशत पर असरअंदाज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को हिदायत दी है कि वो फर्जी खातों और साइबर घोटालों वाले बैंक खातों से निपटने के लिए एक मयारी तरीक़ेकार तश्कील दे। अदालत ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों नीज कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को भी हिदायतें जारी की हैं कि वो शिकायतों के इजाले को मुस्तकम बनाएं, घोटालों से बचाए गए रुपये पैसे की बहाली में तेज़ी लाएँ और डिजिटल घोटालों के केस से निपटने के अमल को बेहतर बनाएं। मेडिकल काउंसिल कमेटी NCC आज नीट UG काउंसलिंग के पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। शेड्यूल के मुताबिक पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन और फीस की अदायगी इस महीने की 12 तारीख को सुपहर 3 बजे तक की जा सकेगी। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: उम्मीदवार 6 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान अपने मुतबादिल फराहम कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए 12 और 13 अगस्त को 24 लॉकिंग सहूलत दस्तियाब रहेगी। इस दौरान 13 से 16 अगस्त के दरमियान पहले राउंड की सीटों का अलॉटमेंट होगा। नतायज का ऐलान 17 अगस्त को होगा। सीट अलॉट किए गए उम्मीदवारों को 18 से 22 अगस्त के दरमियान मुतालिका इदारों में रिपोर्ट करना होगा। इस अमल में हिस्सा लेने वाले इदारे रिपोर्ट किए गए उम्मीदवारों के डेटा की 23 अगस्त को तस्दीक करेंगे। काउंसलिंग के अमल की शुरुआत से पहले वजारत सेहत ने मरहलेवार ट्यूटोरियल वीडियोज़ जारी किए हैं ताकि उम्मीदवार MCC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, मुतबादिल फराहम करना और सीट अलॉटमेंट के तरीक़ेकार को समझ सकें। रिशु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC के इम्तिहान में मुबैना बदउनवानियों पर तलबा के मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। रांची में हजारों उम्मीदवार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिन से गैर मुयना मुद्दत का एहतजाज कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुजाहिरीन ने दावा किया कि तेज़ धूप में भी मुजाहरे की जगह पर रहने के बावजूद उन्हें पीने के पानी, खुराक और बैतुलखला जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। दिफा के मरकजी वजीर ममलिकत और रांची के रुकने पार्लियामेंट संजय सेठ ने इस मामले पर अपोजिशन की खामोशी पर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने इस मामले में मुकम्मल बेहिसी का मुजाहरा किया है और अब तक हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे ने एहतजाज कर रहे तलबा से मुलाकात नहीं की है। मुजाहरों के मुकाम पर बुनियादी सहूलतों की कमी पर इजहार ख्याल करते हुए गोड्डा के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन की क़यादत वाली हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने इम्तिहानात के दौरान सीटों की फरोख्त का संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए भर्ती के अमल का नज़्म करने के हुकूमत के तरीक़ेकार पर सवाल उठाए। तलबा ने पेपर लीक और एहतजाज के मुकाम पर बुनियादी सहूलतों के फुकदान का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज जारी रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार रियासती रोडवेज की बसों में 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करेगी। तफसील हमारे नामा निगार से।

0: उत्तर प्रदेश हुकूमत के पहले सप्लीमेंट्री बजट में माली साल 2026-27 के दौरान उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की पहल को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस पहल का वादा किया था। इस फैसले के जरिए रियासत भर की लाखों मोमर खवातीन शहरियों को माली तौर पर राहत मिलेगी और वो मजहबी, सामाजिक, खानदानी और सेहत देखभाल से मुतालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सफर कर सकेंगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: भारत के महकमे मौसमियात ने आज आसाम और मेघालय में मूसलाधार बारिश और बाज़ मकामात पर शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक बहुत तेज़ बारिश की पेशगोई की है। आज सुबह दिल्ली के बाज़ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई। IMD के मुताबिक कौमी राजधानी में आज उमूमी तौर पर आसमान अब्र आलूद रहेगा और मुतअद्दिद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। आज केरलम में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसकी शिद्दत गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले कम रहने का इम्कान है। कासरगोड, कन्नौर, वायनाड, कोझिकोड, इदुकी, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अल्पुया और पट्टनम थट्टा अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि बाज़ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। रियासत के बाकी 5 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल के लिए भी रियासत के तमाम अजला में बारिश की वार्निंग जारी की गई है। आज सुबह तक रियासत के जनूबी अजला के कई इलाकों में 15 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 17 अगस्त से 23 अगस्त के दरमियान मुनक़िद होने वाली BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दौरान साबिक चैंपियन PV सिंधु के खवातीन के सिंगल मुकाबलों में दर्जाबंदी 9 है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की सबसे आला दर्जीबंदी मर्दों के डबल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिली है, जो 5 है। साबिक आलमी चैंपियन और कांसे का तमगा जीत चुके लक्ष्य सेन मर्दों के सिंगल्स में 14वें नंबर पर, जबकि ध्रुव कपिला और ओलंपिक खिलाड़ी तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स में 15वें नंबर पर हैं। ताइपे ओपन में खवातीन के सिंगल्स की चैंपियन तन्वी शर्मा और साबिक आलमी नंबर 1 किदाम्बी श्रीकांत समेत भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी आज से जनूबी कोरिया के आसान में कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। राष्ट्रपति भवन में मौसम गर्मा के दौरान सालाना तौर पर अमृत उद्यान इस महीने की 16 तारीख से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लोग अमृत उद्यान की सैर 15 सितंबर तक कर सकते हैं। इस दौरान ये बाग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा और इसमें सुपहर 5 बजे तक दाखिल हुआ जा सकेगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
2: शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबार ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में होने वाले बदियाती इंतखाबात को नुमाया किया है। अखबार की सुर्खी है, भारत अपनी खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी कदम उठाएगा। वजारत खारजा ने नाम निहाद बलदियाती इंतखाबात को मजहका खेज और दिखावा करार दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उज्बेकिस्तान के वजीर खारजा से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। रोजनामा इनकलाब की अहम सुर्खियां इस तरह हैं, यूपी हुकूमत ने असेंबली में 59,000 करोड़ रुपए का जिमनी बजट पेश किया। दारुल हुकूमत का AQI मुसलसल 5वें दिन इत्मीनान बख्श रहा।
1: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत का परचमबरदार जहाज बुहेरे अहमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजियों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी 2 माही पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने RBI से कहा है कि वो फर्जी और साइबर घोटाले वाले खातों से निपटने के लिए कामकाज के मयारी तौर तरीके तैयार करे। 2026 की नीट UG काउंसलिंग के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने आसाम और मेघालय में आज बहुत शदीद बारिश से आगाह किया है। और बैडमिंटन में PV सिंधु ने BWF आलमी चैंपियनशिप के लिए 9वां मकाम, जबकि सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 5वां मकाम हासिल किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

क्यों ना आज थोड़ा अलग बने, खुश रहने की सलाह देने की बजाय किसी की खुशी की वजह बने। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर उर्वशी है आपके साथ म्यूजिकल दिल्लगी में। आइए इस सुबह को बनाते हैं थोड़ा सा और मैजिकल, थोड़ा सा और म्यूजिकल।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई गाना सुनते ही पुरानी याद सामने आ गई हो, या किसी खुशबू से बचपन का कोई पल अचानक से याद आ जाए? एक्चुअली जिन यादों के साथ इमोशन जुड़े होते हैं ना, वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा गहराई से बैठ जाते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें सालों बाद भी हमें बिल्कुल ताज़ा सी लगती हैं। तो अगर किसी पल को आप हमेशा याद रखना चाहते हैं ना, तो एक ट्रिक बताती हूँ, उसे सिर्फ जिए नहीं, उसे महसूस भी करें, क्योंकि जो यादें दिल से बनती हैं उन्हें दिमाग भी आसानी से भूल नहीं पाता।

0: किस्से हैं बातें, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।
1: आजकल हम

0: म्यूजिकल दिल्ली का सफर ऐसे ही जारी रहेगा। इंदु रहेंगे आपके साथ। अब आप सुनिए एफएम गोल्ड पर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। इस पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
2: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से

0: लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को अवैध लेन देन के लिए किसी और के खातों का इस्तेमाल और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि को वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को भी कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य निर्णय में केंद्र सरकार को वैध थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस वाले वाहनों को ईंधन बिक्री से संबंधित पायलट परियोजना विकसित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने प्रस्ताव किया है कि गैर बीमाकृत वाहनों को कवरेज प्राप्त होने तक पेट्रोल पंप से ईंधन न दिया जाए। न्यायमूर्ति संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्र की एक खंडपीठ ने कहा कि देश में लगभग 56% वाहन गैर बीमाकृत हैं और ये स्थिति चिंताजनक है। न्यायालय ने ऐसे वाहनों की पहचान के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण तथा केंद्र को ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान आधारित बीमा सत्यापन विकसित करने और मोटर वाहन अधिनियम के अनुपालन में सुधार सुनिश्चित करने को कहा है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उपहिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड में भी बारिश हो सकती है। इसके साथ
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. An Indian flag commercial vessel, MSV Faiz Noor Olia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals, who were on board the vessel were rescued safely. According to reports, the Indian flagged tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Port Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. In a statement, Minister of External Affairs, MEA, said targeting of commercial shipping in the region must end, and free and unimpeded navigation commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. Reserve Bank of India will announce its bi-monthly monetary policy review today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the latest repo rate decision in Mumbai at 10 a.m. Monetary Policy Committee of the Central Bank began its three-day meeting on Monday. The policy decision comes at a crucial juncture amid persistent geopolitical tensions and a hawkish U.S. Federal Reserve. The RBI is expected to hold the core repo rate unchanged at 5.25%. The Supreme Court has directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. The Medical Counselling Committee, MCC, will begin Round 1 registration for NEET UG Counselling 2026 today. According to the official schedule, Round 1 registration and fee payment will remain open till the 12th of this month until 3 p.m. We have more from our correspondent.
4: Candidates can fill their choices between the 6th and 13th of this month. The choice locking facility will remain available to students between 12th and 13th of August. Meanwhile, the Round 1 seat allotment process will open to students between the 13th and 16th of this month. Further, the result will be declared on 17th of August. Candidates who have been allotted seats have to report to the respective institutes between August 18th and 22nd. The participating institutes will verify the data of joint candidates on 23rd of this month. Ahead of the commencement of the counseling process, Health Ministry has released step-by-step tutorial videos to help candidates understand the registration, choice filing and seat allotment process on the MCC portal. Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
3: Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, is hosting an important BRICS cultural meeting from today. Delegates from several countries have arrived in the city for 4 days of discussions on culture. The Ministry of Culture said that the meeting will bring together representatives from BRICS member states to advance cultural cooperation and build consensus on key areas ahead of the BRICS culture ministers meeting. Meanwhile, the 13th BRICS education ministers meeting and the 3rd BRICS senior officials meeting will also be held from today till the 7th of this month in Bhubaneswar, Odisha. Education Ministry said that these meetings will bring together education ministers, senior officials and delegates from BRICS member countries. IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. In Assam, heavy rainfall continues to disrupt normal life in several parts of the state. The Brahmaputra and many of its tributaries are flowing close to the danger level at several locations. In Kerala, heavy rain will continue across the state today, although the intensity is expected to be lower than yesterday. The summer annuals of Amrit Udhyan at Rashtrapati Bhavan will open for the public from the 16th of this month. People can visit the Amrit Udhyan till 15th of September. In badminton, India's Isharani Barua defeated Lee So-hee of South Korea 18-21, 21-15, 7-21 in the quarterfinals at the Korea Masters Super 300 badminton tournament in Asan today. Top Indian shuttlers, including reigning Taipei Open women's singles champion Tanvi Sharma, former world number one Kidambi Srikanth, will also begin their campaigns today. And that's the end of this news bulletin.

आपका स्वागत है। ये कहते हुए कि आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे दिल्ली की फिजाओं में बहुत ही प्यारी सी एक सुगबुगाहट है, इतिहास है, हर मोड़ पे नया एहसास है। दिल्ली शहर नहीं है बल्कि ये एक कहानी है, रफ्तार है, रंग है, अफसाने हैं, सबके अपने अपने तराने हैं और उसी में हम भी आ जाने हैं।

सबको गले लगाते हुए म्यूजिकल दिल्ली का सफर शुरू करते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त होने वाला है 9:20। और अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम माहौल पूरा बना हुआ है, फील लाइक टेम्परेचर अलग है, हमें जो दिख रहा है वो मौसम बिल्कुल अलग है। कुल मिला के दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, मौसम की स्थिति यही बनी हुई है, लेकिन फिर भी हमें बारिश का इंतजार है। बारिशें अच्छी लगती हैं, कुछ तो है इसका जादू कि हम छाता लाएं या ना लाएं, लेकिन जब बारिश होती है तो ये एक सुखद एहसास के साथ हमारे पास रह जाती है। और उसके बाद जो खाने पीने का सिलसिला शुरू होता है उसकी अलग बात है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे म्यूजिकल दिल्ली है ये, और इसी के साथ 1971 के फिल्म अंदाज से ये गाना।

और इस दिल और जान के बीच में अगर बारिशें हो जाएं तो फिर आप क्या कहेंगे, कैंडल लाइट डिनर भूल जाएंगे। मानसून रोमांस कुछ ऐसा ही होता है जब दो लोग हाथों में हाथ डाले भीगते हुए चले जा रहे हैं। एक छाता है, हम दो हैं, एक कप चाय है, नहीं नहीं इसको कर देते हैं एक ग्लास चाय है और हम दो हैं। इस बरसात में जो लोग अकेले हैं वो सबसे ज्यादा डेटिंग ऐप पर पाए जा रहे हैं। रिसर्च आजकल यही कहती है, रेनी सीजन की तलाश में साथी कई जो आस है वो बढ़ जाती है। साथ हमारा भी वैसे कम मैजिकल नहीं है, हमारे पास गाने हैं, हमारे पास बातें हैं और हमारे पास ईमेल आईडी भी है fmgoldaardelhi@gmail.com पे। कौन सा गाना है जो इस वक्त आपको याद आ रहा है आप हमें बड़े आराम से बता सकते हैं।

चार लोग हैं क्या कहेंगे, उन लोगों की फिक्र करनी होती है। तो चार लोग क्या कहेंगे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पता है हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इन्हीं चार लोगों में से कुछ लोग हमें चाहिए होते हैं अपना हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। कुछ लोग चाहिए होते हैं कि वो आए हमारी शादियों में रौनक लगाएं। जब अकेलापन घेर लेता है तब हमें चाहिए होता है कोई दोस्त। तो दोस्ती प्यार है, दोस्ती विश्वास है, रंग है, खुशबू है, और दोस्ती FM गोल्ड भी है, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। ये है म्यूजिकल दिल्ली की, और दोस्ती एक गाना भी है, आप मैं और वो पूरा का पूरा माहौल। एक गाना जो हमें न जाने कितनी सारी चीज़ें याद दिला सकता है, और एक गाना हमें आपको और हमसे जोड़ता है, और इसी जुड़ाव में बहुत सारा प्यार छुपा हुआ है, और इसीलिए हम हाजिर हो जाते हैं दिल और दिल्ली की और आपकी और हमारी बातें लेके। तो हम आपको बता दें कि शामली के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाई गई है, दिल्ली जंक्शन से शामली के बीच में ये जो रेलगाड़ी है आगामी 13 अगस्त तक चलेगी, और इसलिए इसके बारे में कुछ और आप देखना चाहते हैं तो फिर से इसको देखिए, पढ़िए कि हाँ आपके काम का है कि नहीं। जल भराव अगर कहीं है तो नगर निगम में आप शिकायत कर सकते हैं, और शिकायत के लिए आप 311 और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सूचना दे सकते हैं। शिकायत करने के लिए हमारे पास नंबर है, देखिए कितनी बड़ी बात है ये, है ना। 9:32 है हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त समय, और आप माशाल्लाह।

0: क्या आप जानते हैं कि मेट्रो स्टेशन पे अर्पण केंद्र की शुरुआत हो चुकी है? अगर नहीं तो फिर सुनते रहिए, ये तो मैं आपको बताऊंगी कि कहां और कैसे।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: तारा।
1: हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि मेट्रो स्टेशन पे अर्पण केंद्र शुरू हो चुका है। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन के पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पे यहाँ अर्पण केंद्र पर लोग पुराने कपड़े अपने दान कर सकते हैं। मेट्रो के 10 स्टेशन ऐसे सेंटर्स बनाए जाएंगे, ऐसे 10 स्टेशन होंगे। बस चीज एक चाहिए और वो कि हम सब देने वाले बने। वैसे भी कपड़े के लिए कहा गया है कि मन से गया तो बस समझ जाइए तन से गया। ये है म्यूजिकल दिल्ली की आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे।

मैं हूँ यहाँ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे। आप ट्यून कर लीजिए 100.1 मेगाहर्ट्ज। म्यूजिकल दिल्ली चल रही है। और जब हम चलते हैं, मतलब कि जब घर से बाहर निकलते हैं, चलते हैं, तो फिर राह में हमें चलते हुए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कुछ अच्छी लगती हैं तो कुछ अच्छी नहीं लगती। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं बैग में पानी की बोतल देखती हूँ, मतलब वो घर से पानी की बोतल भर के लाई जाती है। और भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम अपना कूड़ा डालने के लिए डस्टबिन ढूंढते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम सबको क्या चाहिए ये बड़े अच्छे से हमें मालूम है, लेकिन हमें दूसरों को क्या देना है ये सोचने में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है दिमाग, है ना। 9:46 हो चुके हैं म्यूजिकल दिल्ली में। हमारे स्टूडियो की घड़ी का जो टाइम है वो हमने बता दिया। फिलहाल आप अपना टाइम मैच कर लीजिए।

0: और इसी प्यार के आजू बाजू में जिम्मेदारियां होती हैं। वो क्या कहती हैं? PMSMA यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार की एक स्वास्थ्य पहल है, जिसके तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को दूसरी और तीसरी तिमाही यानी कि गर्भावस्था के 4 महीने के बाद के दौरान बिल्कुल फ्री, निशुल्क, व्यापक और गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व स्वास्थ्य की जांच दी जाती है। और आज है कितनी तारीख? 5 अगस्त। तो यानी कि अभी भी समय है, इसको और जानिए, समझिए।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी।

0: के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: तो क्या अब आप तैयार हैं अमृत उद्यान घूमने के लिए? राष्ट्रपति भवन परिसर स्थित अमृत उद्यान 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा। प्रवेश होगा इसमें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। हर सोमवार को उद्यान रखरखाव के लिए बंद रहेगा। नॉर्थ एवेन्यू रोड स्थित गेट नंबर 35 से एंट्री और वहीं से वापसी की व्यवस्था है। तो अभी से ही प्लानिंग करनी शुरू कर दीजिए आप।

हाल तो बदलते रहते हैं, तो हम आपको बताएं कि क्या आप जानते हैं कि भारत में सोलो टूरिज्म बाजार में लगभग 20% सालाना वृद्धि होने का अनुमान है। मतलब ये कि अकेले घूमना अब ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि भाई कहीं जाना है तो बस चल पड़ो। और इसमें एक चीज जो चौंकाने वाली है वो ये है कि अकेले घूमने में ज्यादा पसंद है ये चीज महिलाओं को। वो चाहती हैं कि हमने अगर कोई डेस्टिनेशन चूज की तो फिर किसी का इंतजार ना किया जाए, बस चल दिया जाए बड़े आराम से। तो वैसे आप अकेले अगर इतनी बहादुर हैं तो फिर जा सकते हैं दिल्ली के चिड़ियाघर में, क्योंकि वहां पे वीकली संडे बर्ड वॉक मॉर्निंग शुरू हो रही है 6:30 से लेकर 9:30 तक। इसमें सिर्फ 20 पार्टिसिपेंट्स होंगे हर संडे। बस इतना सब कुछ बता दिया, इसके बाद क्या सोचना। जाइए संडे मॉर्निंग बनाइए और उसके बाद अच्छा से कहीं पे ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर आप कहेंगे भाई वाह लाइफ हो तो ऐसी, बिल्कुल म्यूजिकल।

वैसे मैं तो कहीं नहीं चली, मैं तो हूँ यहीं पे सिर्फ एफएम गोल्ड चैनल पे। आप सुनिए समाचार, क्योंकि बजने वाले हैं 10 और उसके बाद होगी आपकी हमारी मुलाकात।

0: ऐकत रहा FM गोल्ड वर।
1: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद परिसर में हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी पर अब हर सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है।
2: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: वहीं सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार 300 ऐसे संस्थानों

0: को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। श्री गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में हर वर्ष लगभग 1,80,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति ने आज इस फैसले की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। और वक्त हो गया है कलाकार बेमिसाल का। आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जो अपने अभिनय, बेबाक अंदाज और शानदार करियर के लिए जानी जाती हैं। आज हम बात करेंगे खूबसूरत अदाकारा काजोल की, जो आज अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं। तो उन्हें हम सबकी तरफ से, FM गोल्ड की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। बस हम यही चाहते हैं कि उनकी मुस्कुराहट ऐसे ही बनी रहे, वो हंसती रहें, खिलखिलाती रहें, यही हम सबकी कामना है। तो आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात करेंगे इसी खूबसूरत अभिनेत्री की। मैं हूं रुचिका आपके साथ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ, आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जो अपने अभिनय और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और साथ साथ उनका करियर भी बेहद शानदार रहा और आज भी वे उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी उस वक्त लगा करती थी जब उनकी पहली फिल्म आई थी बेखुदी। आपको बता दें कि आज अभिनेत्री काजोल का हम जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 5 अगस्त 1974 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। वो एक फिल्मी करियर से ताल्लुक रखती हैं। काजोल एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जिनकी कई पीढ़ियां फिल्मों में सक्रिय हैं। उनके पिता शोमू मुखर्जी जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे और माँ तनुजा समर्थ फिल्म अभिनेत्री। काजोल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 17 साल की उम्र में ही कर दी थी। उनकी पहली फिल्म थी बेखुदी। हालांकि फिल्म ने खास कमाल

नहीं किया, लेकिन सभी को काजोल का अभिनय बेहद पसंद आया और इसी के चलते उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। उनके बाद काजोल अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में नजर आई थी, जो रिलीज हुई थी ठीक एक साल बाद, और इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी भी थे। काजोल की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और फिल्म में लोगों को शाहरुख और काजोल की जोड़ी बेहद पसंद आई थी और आज भी ये जोड़ी जब भी हम और आप पर्दे पर देखते हैं तो कमाल करती है। काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी बेहद सफल रही थी और दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में भी दी, जिनमें बाजीगर, करण अर्जुन, दिलवाले, दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज़ खान और दिलवाले। उन दोनों की लगभग सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई।

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री काजोल की। उनकी फिल्मों की हमने बात की, करियर की बात की, तो चलिए अब उनकी पर्सनल लाइफ की थोड़ी बात कर लेते हैं। काजोल की शादी अभिनेता अजय देवगन से 24 फरवरी 1999 को हुई थी। जिस समय काजोल की शादी हुई उस समय वे हिंदी फिल्मों की लीडिंग एक्ट्रेसेस में शुमार थी। हालांकि कुछ लोगों का उस वक्त कहना था की शादी के बाद काजोल का करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काजोल ने अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने परिवार को भी बखूबी संभाला। काजोल ने फिल्मों में काम करना जारी रखा और शादी के बाद उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। आपको बता दें, काजोल और अजय के दो खूबसूरत बच्चे हैं जिनका नाम है न्यासा और युग।

आपको बता दें, काजोल को उनके शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्हें 6 फिल्मफेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और साल 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दफा 370 को मंसूख किए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जिंदगी यकसर तब्दील हो गई है। आरबीआई ने इस माली साल के दौरान 6.7% मजमूई शरह तरक्की का तखमीना लगाया है। उसने कहा है कि इक्तसादी नशोनुमा को मुस्तहकम मांग से मदद मिल रही है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाईयों में कई मामलात पर रखने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुक्काम नौजवान मुजाहिरीन से निमटते वक्त तहम्मुल से काम लें। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी इम्तिहानात में बेजाबतगियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज तेज हो गया है। और बैडमिंटन में 3 खिलाड़ी आसन में कोरिया ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 साल पहले दफा 370 और 35 से मनसूख किए जाने के बाद से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के अवाम की जिंदगियों में काया पलट कर देने वाली तब्दीलियां आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मरकज के जेर इंतजाम दोनों इलाकों में बुनियादी ढांचे में तौसी हुई है और तालीम, हिफ्जानी सेहत, सनतकारी और खेलकूद जैसे शोबों में मवाक़े में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि खवातीन नहायत पसमानदा बिरादरियों या जिन्हें दहाइयों से उनके बुनियादी आईनी हुकूक से महरूम रखा गया है, उन सबको आईन के मुकम्मल निफाज के साथ अब बा इख्तियार बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को भी नुमाया किया कि आज के दिन को इससे भी ज्यादा अहमियत हासिल है क्योंकि मुल्क इस साल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां यौम पैदाइश मना रहा है। बीजेपी ने दफा 370 मनसूख किए जाने के आज 7 साल मुकम्मल होने के मौके पर 5 अगस्त को एक तारीखी दिन करार दिया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि आईन की ये शिक आईन की रूह को बरकरार रखते हुए मनसूख की गई थी। उन्होंने कहा कि अगरचे खुद दफा 370 आरजी तौर पर नाफिज हुई थी, लेकिन किसी भी साबिका हुकूमत ने कभी इसे खत्म करने का इरादा जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला शाह ने 2019 में ये जरूरी कदम उठाया जिससे सरदार पटेल के अज़्म की अक्कासी होती है। दफा 370 मनसूख किए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, हुक्मरानी, सियाहत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी से मुतालिक शोबों में काबिल जिक्र तरक्की हुई है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में बेहतर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, पब्लिक खिदमात और इक्तसादी तरक्की, बेहतर हुक्मरानी और बेहतर मयारी जिंदगी की बदौलत तेज रफ्तार काया पलट कर देने वाली तब्दीली आई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: 5 अगस्त 2019 के बाद से मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के बुनियादी ढांचे में तेज़ रफ्तार तरक्की का मुशाहिदा किया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को चेनाब और अंजी घाट रेल पुलों समेत नई सुरंगों, कई बाईपास और कई मकामात पर सड़क को चौड़ा करने से मुतालिक प्रोजेक्टों से बेहतर बनाया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रास्ते की बदौलत कश्मीर वादी को कौमी

0: रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस से रेल कनेक्टिविटी मजीद मुस्तहकम हुई है, जबकि जेड मोड़ टनल की बदौलत पूरे साल सोनमर्ग तक पहुंचा जा सकता है और जोजिला टनल की तामीर जल्द ही मुकम्मल होने वाली है, जिसकी बदौलत स्ट्रेटेजिक तौर पर अहमियत की हामिल श्रीनगर लेह शाहराह पर पूरे साल आमोदरफ्त हो सकेगी। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक साल 2019 के बाद से दहशतगर्दी से मुतालिक वाकयात में 83% तक की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों में भी तेजी से कमी आई है, जबकि पत्थर फेंकने के वाकयात तकरीबन खत्म हो गए हैं। श्रीनगर से अशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मौजूदा माली साल में GDP की तरक्की के 6.7% रहने का तखमीना लगाया है। मरकजी बैंक ने रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मुल्क की मुआशी तरक्की में मुस्तहकम मांग के सबब भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मुआशी साल में अप्रैल से जून तक की तिमाही में मुल्क की मईशत की कारकर्दगी तवक्को से बेहतर रही। आज मुआशी पॉलिसी से मुतालिक कमेटी के फैसले का ऐलान करते हुए जनाब मल्होत्रा ने कहा कि RBI ने रेपो रेट में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है। रेपो रेट वो शरह सूद है जिस पर मरकजी बैंक कमर्शियल बैंकों को मुख्तसर मुद्दत के लिए कर्ज देता है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई समेत कई मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से रखना पड़ा। लोकसभा की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक के लिए, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई पहले 12 बजे तक के लिए, उसके बाद 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब लोकसभा का इजलास 11 बजे शुरू हुआ तो स्पीकर ओम बिरला ने वक्फाई सवालात की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। जनाब बिरला ने तमाम अरकान से जोर देकर कहा कि वो वक्फाई सवालात की कार्रवाई चलाने में तआवुन करें। उन्होंने कहा कि वक्फाई सवालात कार्रवाई का एक अहम हिस्सा है जो हर एक मेंबर को अवाम के मामलात उठाने का मौका फराहम करता है।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: जब ऐवाने बाला का इजलास शुरू हुआ तो सदर नशीन CP राधाकृष्णन ने अपोजिशन के शोरगुल के दरमियान वक्फाई सिफर की कार्रवाई शुरू की, लेकिन शोरगुल की वजह से सदर नशीन को ऐवान की कार्रवाई दिन के 12 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। जम्मू और कश्मीर के BJP मेंबर पार्लियामेंट सतपाल शर्मा ने दफा 370 मनसूख किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि 7 साल पहले आज ही के दिन ये कदम उठाया गया था। उन्होंने कहा कि आज का ये दिन न सिर्फ जम्मू और कश्मीर की तारीख में बल्कि पूरे मुल्क की तारीख में एक अहम दिन है।
3: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया, और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुक्काम नौजवान तालिबे इल्म मुजाहिरीन से निमटते वक्त तहम्मुल से काम लें। अदालत ने कहा कि तशद्दुद रोकने की गरज से की जाने वाली किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई से सूरत हाल मजीद खराब होगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में एक बेंच ने CJP के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए ये बात कही। चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे ताकतवर तरीका ये है कि बात को सुना जाए कि एहतजाज करने वाले क्या कह रहे हैं, और ये समझा जाए कि वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज दिन ब दिन तेज हो रहा है। एहतजाज करने वाले तलबा ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए आने वाले मॉनसून इजलास के दौरान झारखंड असेंबली का घेराव करने के मंसूबे का ऐलान किया है। CRPF और झारखंड पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई में सरायकेला खरसावां जिले से ममनुआ CPI माओनवाज के 3 कट्टर अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑपरेशंस नरेंद्र कुमार सिंह ने गिरफ्तारी की तस्दीक की है।

सुनवाइयों में कई मामलों पर रखने का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुक्काम नौजवान मुजाहिरीन से निपटते वक्त तहम्मुल से काम लें। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी इम्तिहानात में बेजाबतगियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज तेज हो गया है। और बैडमिंटन में तीन खिलाड़ी आसन में कोरिया ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का

0: economic growth continues to be supported by resilient demand. Proceedings of both houses of parliament continue to witness disruption over several issues. Supreme Court says authorities must exercise restraint while responding to young protesters. Students protest against alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations intensifies in Ranchi. Red warning issued for extremely heavy rainfall of Assam and Meghalaya. And in badminton, three Indian shuttlers enter the second round of the women's singles of the Korea Open in Assam. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
2: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
1: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
3: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
1: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
4: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में

0: पहुंच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
2: After a detailed assessment of the evolving
0: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
1: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
2: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
0: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
2: As projected earlier.
1: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
2: रियल GDP ग्रोथ फॉर दिस ईयर
0: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
2: Q4 at 6.8%।
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22,00,000 चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपुर

0: लाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
1: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडीचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
2: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी।

0: जारी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वलीशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलो हट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 आणि 15 सेकंद झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत नादब्रह्म शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम। या कार्यक्रमात पंडित राजेंद्र कांदळगावकर यांनी गायलेला राग मेघ आपण ऐकणार आहोत। विलंबित खेळातील बंदिश 1 तालात, द्रुत ख्यालातील बंदिश 3 तालात निबद्ध आहे। विलंबित 1 तालातील बंदिशीचे बोल आहेत ए री जलधर लाई, द्रुत 3 तालातील बंदिशीचे बोल आहेत बदरवा बरसन लागी। त्यांना तबल्याची साथ माधव मोडक यांनी, हार्मोनियमची साथ राजीव तांबे यांनी केली आहे। ही आकाशवाणी पुणे केंद्राची निर्मिती आहे। ऐकूया तर पंडित राजेंद्र कांदळगावकर यांनी गायलेला राग मेघ।

0: आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा ने आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक सदन में पेश किया था। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों को कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया है कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भगवान राम का विरोध किया और उनका अपमान किया। उन्होंने ये भी कहा कि इन पार्टियों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी आज ऐसी स्थिति देखने को मिली। इस बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। उन्होंने कहा कि उचित प्रशिक्षण से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। ईश रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई हैं। पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानी दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Lok Sabha has passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026. When the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m., Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill which seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. The legislation was cleared by the Lok Sabha without any discussion amid continuous uproar by the opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET paper leak issue.

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हम

0: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। संयुक्त निदेशक उत्पादन, उपनिदेशक लागत और वित्त, उपनिदेशक कला, क्षेत्रीय प्रबंधक कोलकाता, क्षेत्रीय प्रबंधक बेंगलुरु और क्षेत्रीय प्रबंधक पुणे। योग्यता और अनुभव संबंधी विवरण तथा आवेदन पत्र की जानकारी के लिए देखिए विभाग की वेबसाइट www.nbtindia.gov.in। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड नई दिल्ली आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। वरिष्ठ निदेशक, प्रबंधक, उप प्रबंधक और उप प्रबंधक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, आवेदन पत्र आदि की जानकारियों के लिए देखिए एनबीए की वेबसाइट www.nbaind.org। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सक्रिय भारत सरकार का उद्यम आयुध निर्माणी देहू रोड पुणे महाराष्ट्र आमंत्रित करता है डेंजर बिल्डिंग वर्कर कार्मिकों के पदों को भरने के लिए ऑफलाइन आधार पर आवेदन। कुल रिक्तियां 14 हैं। पूर्ण विवरण और आवेदन करने की प्रक्रिया के लिए योग्य उम्मीदवार म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है munitionsindia.in/career अथवा आयुध निदेशालय की वेबसाइट भी आप देख सकते हैं ddpdoo.gov.in। आवेदन डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए और 1 से 7 अगस्त 2026 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने के 21 दिन के भीतर आवेदन आपको भेज देने चाहिए। केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी नई दिल्ली में संयुक्त निदेशक, महाप्रबंधक, गुणवत्ता आश्वासन और प्रबंधक प्रापण के एक एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक आवेदक विस्तृत विज्ञापन, पात्रता मानदंड, वेतनमान, आवेदन पत्र, सामान्य नियम और शर्तों के विवरण के लिए देख सकते हैं वेबसाइट recruitment@cmss.gov.in। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत सक्रिय राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी में ये पद रिक्त हैं। उपनिदेशक वित्त एवं प्रशासक 2 पद, सलाहकार निदेशक ICT PMU 1 पद, उत्पाद प्रबंधक 2 पद, योजना एवं GIS प्रमुख 1 पद और चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 पद। पात्रता के विस्तृत मानदंड और आवेदन प्रारूप के लिए देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी की वेबसाइट nrida.dord.gov.in अथवा www.dord.gov.in पर भी आप ये जानकारी देख सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार और अभिनंदन आप सभी सुनने वालों का। हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी समय हो चला है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आप तक लाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानेंगे कि आज के दिन उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। मैं हूँ सरफिरोजी और मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा।
2: नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी fresh episode of Parikrama and

0: Of course, since the name of the show is Parikrama, so that's why we'll go to different parts of the country and see what interesting stories our correspondents have. And sir, for instance, today's episode would probably be a bit more special because ek bahut hi pasandeeda
1: main unka naam nahi reveal karna chahti, to hum log zarur unke bare mein bhi baat karenge.
0: Right, a very popular actress has a birthday today, so we are going to give her a befitting tribute on her birthday. But all of that in the next half an hour. Let's start with the headlines.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया.
0: RBI projects the GDP growth at 6.7% this financial year. Says economic growth continues to be supported by resilient demand.
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित.
0: Supreme Court says authorities must exercise restraint while responding to young protesters.
2: झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ.
0: Red warning issued for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya.
2: और भारत की ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलीशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची.
0: And yes, of course, we started the show with our special segment, Dateline India, in which we talk about some important topics. And today we're going to talk about something that has quietly saved millions of lives. Well, Khelo India and the making of a sporting nation. Sports carry immense power to transform a nation, shaping individuals and elevating countries onto the world stage. It builds character and confidence in citizens while announcing a nation's arrival as a sporting superpower. Victory on field brings immense national pride, uniting people beyond caste, creed and religion. This shared pride helps build a happier, healthier and more cohesive society. India's greatest sporting asset is its youth. Around 65% of the population is below 35 years of age. Recognizing this immense potential, the Ministry of Youth Affairs and Sports continues to strengthen youth development and promote sporting excellence across the country. And even the union budget, Sarfarozi, has been, it has been increased manifold this time. And of course, it was up from 1,219 crores as compared to 2013-14, because now it's 4,479.88
2: crore. And Sahara, this whole change in the center of the Khelo India program, which has reached a big and wide stage. The Kendra Cabinet has for this ऐसी विस्तृत योजना को मंजूरी दी है जिसका दृष्टिकोण सिर्फ प्रतियोगिता और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है बल्कि उससे कहीं आगे का है. स्कूल के खेल के मैदानों और गांव के खेतों से आगे निकलकर युवा खिलाड़ियों के लिए अब आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता तैयार हो रहा है. शुरुआती स्तर पर पहचान के बाद उन्हें अच्छी कोचिंग और नियमित प्रतियोगिताओं का मौका मिलेगा. मजबूत संस्थाएं और व्यापक साझेदारियां होनहार खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगी. कई अन्य अहम पहलों के साथ मिलकर खेलो इंडिया ग्रामीण और शहरी भारत में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है और ये सभी प्रयास मिलकर हर स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्हें निखारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक मदद मुहैया कराते हैं. और साइरस का मकसद ये पक्का करना है कि भौगोलिक स्थिति, सीमित संसाधन या मौकों की कमी होने की वजह से किसी भी प्रतिभा, टैलेंट जो है वो आगे बढ़ने से ना रुके.
0: बिल्कुल सही कहा आपने सर फिरोजी. इनफैक्ट दिस विजन बिल्ड्स ऑन द स्पोर्टिंग फाउंडेशन इंडिया हैज क्रिएटेड इन रीसेंट इयर्स. द कंट्रीज फोर्थ प्लेस फिनिश एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ऑफर्ड अनदर ग्लिम्स ऑफ दैट ग्रोइंग स्ट्रेंथ. सच मोमेंट्स कैप्चर समथिंग लार्जर दैन मेडल्स अलोन. लॉन्च्ड इन 2017 टू क्रिएट अ स्ट्रांग फाउंडेशन फॉर इंडियन स्पोर्ट, द खेलो इंडिया स्कीम ब्रॉट टुगेदर 3 एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स. इट मर्ज्ड द राजीव गांधी खेल अभियान, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम and National Sports Talent Search Scheme into a unified framework for sports development.
2: और ये स्कीम स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के हर चरण को मजबूत करने के लिए एक व्यापक तरीका अपनाती है. इस मिशन का लक्ष्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के जरिए हर जिले में एक खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर बनाना है. ये स्पोर्ट्स साइंस, साइकोलॉजी और न्यूट्रिशन की मदद से खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थित रास्ते भी तैयार करती है और डेटा आधारित प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों की रियल टाइम ट्रैकिंग में मदद करते हैं. इसका मकसद 2036 तक भारत को दुनिया के प्रमुख स्पोर्ट्स देशों में शामिल करना है.
0: That's right.

0: Faisal Firozi, and the Khelo India scheme has entered a significantly expanded phase for the period 2026-27 to 2030-31. Together with enhanced assistance to national sports federations, it has combined an outlay of 36,441 crore. And that's a very big number. Well, for the first time, young sportsperson will receive structured support at every stage, from talent identification and scientific training to international exposure and Olympic preparation. The nationwide ecosystem will bring together National Centers of Excellence, Khelo India Centers of Excellence, SAI Training Centers, Khelo India Accredited Academies, Khelo India Centers and Youth Sports Companies of the Armed Forces. Together, these institutions will provide modern infrastructure, professional coaching and sports science support across the country.
1: Bilkul Sara, aur Khelo India scheme jo hai wo zameeni star par bhi lagu ho rahi hai. Iske tehat Khelo India Feeder School aur Khelo India Utkrisht Vidyalay bhi shuru kiye ja rahe hain. Ye pehal khel ko mukhya dhara ki shiksha se jodengi aur pratibhashali bachcho ki shuruati pehchan aur unke vyavasthit vikas mein madad karengi. 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत के साथ ही खेलो इंडिया अभियान एक नए चरण में पहुंच गया. नई दिल्ली में आयोजित इस इवेंट ने देश भर के युवा खेल प्रतिभाओं को एक मंच पर इकट्ठा किया और उसी साल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी इस पहल से जुड़ गया. 2019 से इस इवेंट का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया है. ये खेलो इंडिया के तहत मुख्य प्रतियोगिता के तौर पर जारी है. सारा खेलो इंडिया गेम्स का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों के लिए ज्यादा मौके भी पैदा हो रहे हैं और अब हर साल होने वाली इन प्रतियोगिताओं में अपने राज्यों और यूनिवर्सिटीज का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी एक साथ आते हैं. इससे उन्हें मुकाबला करने, बेहतर प्रदर्शन करने और ऊंचे स्तर पर तैयारी करने में मदद मिलती है.
0: Yes, Sir Firozi. In fact, the Union Cabinet's approval of the revamped Khelo India scheme, it marks a major step in India's sporting journey. This features an enhanced assistance to national sports federations, as I mentioned, with a combined outlay of 36,441 crore rupees. The investments made in India's sporting ecosystem are delivering results at the global stage. India's performances at major international sporting events reflect the country's growing strength across Olympic, Paralympic, and multi-sport disciplines. Stronger athlete development, better training support, and sustained investment have translated into consistent improvements at the world stage. And the steady rise in participation and medal tallies highlights India's emergence as an increasingly competitive sporting nation.
1: तो सायरा, समय हो चला है अपने श्रोताओं को देश भर की परिक्रमा पर लेकर चलने का. तो सबसे पहले कहाँ चले?
0: वह सबसे पहले हम लोग जो जिसको दुनिया की जन्नत कहा जाता है वहाँ से शुरुआत करते हैं. वी आर हेडिंग टू कश्मीर. वेल, 7 years आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जम्मू एंड कश्मीर हैज विटनेस्ड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, गवर्नेंस, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी. द यूनियन टेरिटरी हैज अंडरगॉन रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू बेटर infrastructure, connectivity, public services and economic growth, improving governance and quality of life. Let's hear more from our correspondent Ishfaq Shah.
2: Since August 5, 2019, infrastructure has witnessed rapid growth in the UT. The Jammu-Srinagar National Highway has been upgraded with new tunnels, bypasses and road widening projects. The completion of Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link, including the Chenab and Anjikhat rail bridges, has connected the Kashmir Valley with National Railway Network. The Vande Bharat Express has further strengthened rail connectivity. The Zadmoh Tunnel has ensured all-weather access to Sonamarg, while Zojila Tunnel is nearing completion and will provide year-round connectivity on the stretch. Important Srinagar Leh Highway. Tourism has emerged as one of the biggest success stories in these years. In 2024, the tourist arrivals crossed 2.35 crore, including over 65,000 foreign tourists. The tourist arrival this year too is significantly high, despite receiving a setback after the Pahalgam terror incident in 2025. In these years, the Union Territory has also witnessed record pilgrim footfall during the Shri Amarnath Ji Yatra and at the Shri Mata Vaishno Devi Shrine. According to official figures, investments worth around 18,000 crore have been made in the UT since 2019. More than 2,200 industrial units have been established. 26 new industrial estates have been developed. More than 41,000 government jobs have been provided and around 9.81 lakh self-employment opportunities have been created. Jammu and Kashmir has also achieved full functional literacy under the Ullas program and was ranked fifth in the country in ease of doing business reforms in 2025. The security situation has also improved considerably in these years. According to official figures, terror-related violence has declined by 83% since 2019. Civilian deaths and security force casualties have also declined sharply, while stone pelting incidents have almost disappeared. Ishfaq Shah, Akashvani News, Srinagar.
1: और श्रोताओं, आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा, जहां 9 अगस्त को महेंद्रगढ़ में वंदे मातरम की भावना से उत्प्रोत एक तिरंगा कॉन्सर्ट आयोजित किया जाएगा।
3: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि 9 अगस्त को महेंद्रगढ़ में वंदे मातरम की भावना से ओतप्रोत एक तिरंगा कंसर्ट आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले अभियान के दौरान रेलवे स्टेशनों, पब्लिक पार्क, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेजों और अन्य प्रमुख जगहों पर तिरंगे और वंदे मातरम से जुड़ी प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। इन प्रदर्शनियों में आने वाले छात्रों और लोगों को तिरंगे के इतिहास, इसके महत्व और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में जानकारी दी जाएगी। सेल्फी विद तिरंगा अभियान की मुख्य डिजिटल गतिविधि के तहत नागरिक हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपनी सेल्फी अपलोड कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, क्योंकि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस साल डिजिटल कंटेंट में इसके बोल भी शामिल किए जाएंगे। तिरंगा बनाने, स्थानीय बिक्री के अंदर चलाने, रंगोली बनाने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनसंपर्क के कामों में समय सहायता समूह सक्रिय रूप से भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि तिरंगे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में इसकी मांग का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के नागरिकों से ये भी अपील की है कि वे पूरे सम्मान और गरिमा के साथ तिरंगा फहराएं। परिक्रमा के लिए चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा।
0: And now we go to Ladakh. Well, Ladakh today, that is on 5th August 2026, marks another year of Union Territory Declaration Day. Let's listen more on this from our Leh correspondent.
4: The annual festival, popularly known as the Ladakh Spalngam Stustun, brings together the region's cultural pride, tradition and collective memory of Ladakh's journey as a union territory. As per the past practice, the main function of the festival was held at Leh Palace this morning with Honorable Lieutenant Governor of Ladakh, V.K. Saxena, presiding over the event as the chief guest. Speaking on the occasion, Lieutenant Governor reflected on Ladakh's progress since attaining the UT status. He further stressed on the importance of preserving the region's cultural heritage alongside the development.
5: 5 अगस्त 2019 यह तारीख लद्दाख के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है, जिसने हमारी विकास की यात्रा को नई दिशा, नई गति और नई पहचान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में इसी दिन लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। यह केवल एक प्रशासनीय निर्णय नहीं था, बल्कि लद्दाख के लोगों की दशकों पुरानी आकांक्षाओं को साकार करने वाला एक ऐतिहासिक कदम। लद्दाख की विकास यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट के विजन पर प्रेरित, ताकि विकास के साथ साथ लद्दाख का फ्रेजाइल इकोसिस्टम और यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी सुरक्षित रहे।
4: The Spalngam Tustun celebration includes cultural program showcasing the tradition from different parts of the region. This year, the prestigious Spalngam Tustun Award is announced to be conferred upon His Holiness the 12th Gelwang Drukpa Rinpoche, recognizing His Holiness's outstanding contribution to Ladakh society spiritually, educationally and environmentally. The Spalngam Tustun Lifetime Achievement Award for this year is conferred upon the late Kargil War hero, Lion of Ladakh, MVC Colonel Sonam Wangchuk, for his bravery during 1999 Kargil War. For Parikrama, this is Phunsuk Wangmo from Leh Ladakh.
1: पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों में सिनकोना के बागानों की कायाकल्प होने वाली है। पश्चिम बंगाल के श्रम तथा परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने इसे राज्य के लिए हरित स्वर्ण बताया है।
6: पश्चिम बंगाल के श्रम तथा परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह 3 दिवसीय दार्जिलिंग पहाड़ के भ्रमण पर हैं। विगत सोमवार उन्होंने दार्जिलिंग के ऐतिहासिक व प्रमुख औषधीय वनस्पति केंद्र मंगपू सिनकोना बगानों तथा नर्सरी का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की राज्य सरकार ने इन बगानों की कायाकल्प करने हेतु विस्तृत योजना बनाई है। उन्होंने आगे कहा कि मंगपू को औषधीय वनस्पति केंद्र के रूप में शीघ्र विकसित किया जाएगा तथा इसके लिए सरकार ने विशेष बजट आवंटित किया है। उन्होंने विगत 5 दशकों में दयनीय अवस्था में पहुंचे इन बगानों को आधुनिक कृषि व बागवानी तकनीक से पुनर्जीवित

0: जीवित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि सिनकोना बगान देश, राज्य व दार्जिलिंग पहाड़ के लिए एक अमूल्य संपदा व धरोहर है।
1: बहुत कुछ देखा हम लोगों ने और ऐसा चीज देखा जिसके बारे में हम लोगों ने सुना था लेकिन आज देखा, और इसको डेवलप करने से हमारे सिर्फ बंगाल का नहीं देश का भी बड़ा ये गोल्ड माइन है।
0: स्मरण रहे दार्जिलिंग जिले के मंगपू व लाकपंचर में तथा कालिम्पोंग जिले के मोनसोंग व रोंगोंग में सिनकोना बगान के लगभग 14 से अधिक डिवीजन हैं। श्रम मंत्री ने वर्षों से बंद पड़े सिनकोना फैक्ट्री का पुनर्निर्माण करने तथा यहां काम करने वाले हजारों श्रमिकों के दिहाड़ी व कल्याण तथा रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती का आश्वासन भी दिया। मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए हम मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सिनकोना के साथ साथ अन्य औषधीय पौधों को भी बड़े पैमाने पर लगाया जाएगा जिससे यह क्षेत्र औषधीय वनस्पति केंद्र के रूप में विकसित हो। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी समाचार, कर्शंग।
2: श्रोताओं, अब चल रहे हैं खेल के मैदान की ओर। खेलों में भारत की ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलीशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई हैं। पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानित दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे।
3: And now let's take a look at some business news. Well, benchmark domestic equity indices ended on a positive note today. Sensex gained 152 points to close at 78,581. Nifty rose marginally by 10 points to settle at 24,625. And for more updates about market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
2: श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे कुछ महान व्यक्तियों की जिनके आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
4: We remember the freedom fighter Gopinath Burdaloi, who died on the 5th of August 1950.
5: Born on 6 June 1890 at Raha, Assam, Burdaloi was a lawyer by profession. He actively participated in the non-cooperation movement and was jailed in 1922. Burdaloi was elected leader of the opposition in the Assam Legislative Assembly in 1936. 2 years later, in 1938, he became the Premier of Assam. However, after the outbreak of World War II, he and his cabinet resigned in 1939. After resigning from the post of Chief Minister of Assam, Burdaloi was jailed twice. After his release in 1944, he was once again elected as the Premier of Assam in 1946.
4: Burdaloi served as a member of the Constituent Assembly from Assam. Burdaloi became the first Chief Minister of Assam in independent India. He implemented progressive industrial and educational policies and was also responsible for establishing a number of universities, including the Guwahati University. Burdaloi was conferred the title Lokpriya, meaning loved by all.
5: The great nationalist Gopinath Burdaloi passed away on August 5, 1950, while still in office. He was posthumously awarded the Bharat Ratna in 1999 for his work in public affairs. In 2002, a statue of Burdaloi was unveiled in Parliament.
4: We also remember nationalist Neelakanth Das, who was born on the 5th of August 1884 at Sri Ramachandrapur village in the district of Puri, Odisha. Along with Utkalmani Gopabandhu Das, Acharya Harihar Das, Pandit Godabarisha Mishra and Pandit Kripa Sindhu Mishra, Neelkanth Das is one of the Panch Sakha of Satyavadi era, who resolved to bring renaissance in the field of education and culture in Orisha and ensure its prosperity.
5: Neelkanth rejected an offer of a lucrative job by the British government and preferred to serve as the headmaster of Satyabadi High School. Later, he worked as a professor in Odia and philosophy but relinquished his service in order to join the non-cooperation movement. He was elected as a working member of the Utkal Pradesh Congress Committee and also member of the All India Congress Committee. He edited a newspaper titled Seba from Sambalpur. He was arrested in 1922 for his participation in the freedom struggle and imprisoned.

0: और सायरा अब याद करेंगे उस खास अभिनेत्री को भी जिनका जिक्र हमने प्रोग्राम के शुरू में ही कर लिया था। कुछ कलाकार पर्दे पर किरदार निभाते हैं और कुछ अपने अंदाज से उन किरदारों को यादगार बना देते हैं, और बात कर रही हैं काजोल की, जिनका आज जन्मदिन है और इनका नाम ऐसी ही अभिनेत्रियों में लिया जाता है। काजोल ने बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और फना जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई हैं।
1: दैट्स राइट, सो हियर इज विशिंग काजोल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ परिक्रमा, एंड वी ऑल नो दैट यू नो शी इज अ रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस एक्लेड्स इंक्लूडिंग 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स। इन 2011 काजोल रिसीव्ड द पद्मश्री, एंड वी ऑल नो दैट शी इज अ डॉटर ऑफ तनुजा एंड शोमू मुखर्जी। शी मेड हर एक्टिंग डेब्यू विद बेखुदी इन 1992 व्हाइल शी वाज स्टिल इन स्कूल। उनकी अदाकारी की जो खास बात लगती है ना सरफरोजी, इट डजंट अपीयर दैट शी इज एक्टिंग, इट्स अ वेरी नेचुरल वे दैट शी एक्ट्स ऑन स्क्रीन। सो विदाउट मच अडू वी हैव prepared a medley of her very memorable songs. Let's listen to it.

0: श्रोताओं, काजोल को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं और 2011 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। और सायरा, आपने पहले भी कहा कि कुछ जो कलाकार होते हैं उनकी अदाकारी में ऐसी खास बात होती है कि वो भावनाओं को, किसी किरदार को बहुत ही सहजता से पर्दे पर उतार देते हैं, और काजोल में भी बिल्कुल वही बात है। और यही वजह है कि उनकी कई भूमिकाएं आज भी दर्शकों की स्मृतियों में ताज़ा हैं। श्रोताओं, इसके साथ ही अनुमति दीजिए सायरा और सरफिरोजी को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज

0: गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड. आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट.
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है. विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है. इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है. विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की. श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है. राज्यसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और वापसी के लिए चर्चा शुरू कर दी है. इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में और संशोधन करके भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है. लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है. सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार और फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की है. सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है. यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है. इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे. रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है. बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है. कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्रीरामराज, अश्मिता चालिहा और श्रेयांसी वलुशेट्टी ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. मिक्स डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने सात्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा को हराया. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha has passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026. When the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m., Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill which seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. The legislation was cleared by the Lok Sabha without any discussion amid continuous uproar by the opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET paper leak issue. Following the passage of the bill, the Lok Sabha was adjourned for the day. The Rajya Sabha has taken up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 for consideration and return. The bill aims to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. Lok Sabha has already passed the bill. Earlier in the day, the Upper House also witnessed repeat

ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि वक्त हो गया है 5:11 और ये है वक्त हमारे कार्यक्रम गाते गुनगुनाता है और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी रेणुका, लेकर आपके लिए कुछ बेहतरीन गीत और गीतों के साथ ढेर सारी बातें भी। तो क्यों ना शुरुआत करें इस कार्यक्रम की एक शेर के साथ जिसे लिखा है निदा फाजली।

दिल में ना हो जरूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में ना हो जरूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। दिल में तो पता नहीं हम क्या क्या समेट जाते हैं, कभी नाराजगी, कभी प्यार, कभी गुस्सा और न जाने कितनी ही ऐसी चीज़ें। और हाल दिल जो बताने आ रहे हैं आपको पहले गीत के साथ, वो हैं कुमार सानू और अलका याग्निक, फिल्म है सरफरोश।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

दफ्तर से मिल नहीं रही छुट्टी, दफ्तर से मिल नहीं रही छुट्टी, वरना मैं बारिश की एक बूंद ना बेकार जाने दूं, कहते हैं अजहर फराग। और ये सिर्फ उनका मानना नहीं है, खैर अगर मेरे बस में होता ना तो मैं भी बारिश की हर एक बूंद को इकट्ठा कर लेती। खैर इसके लिए वैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो करते ही हैं, पर बारिश में भीगने, उसकी बूंदों से खेलने और उसको जो हम लुत्फ उठाते हैं, बारिश के मज़े लेते हैं, चाहे वो गानों के साथ हो या अपनों के साथ या कुछ पकौड़ों के साथ, उसका अलग ही मज़ा है। तो चलिए एक गीत सुन लिया जाए बरसात के ऊपर, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक, उदित नारायण ने, फिल्म है मोहरा।

अनवर शऊर कहते हैं, सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूं मैं, सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूं मैं, खुद बना लेती हैं होठों पर हंसी अपनी जगह। खैर, कुछ लोगों के बारे में सोचकर ही चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। अगला भी जो गीत है आपके लिए जो मैं सुनाने जा रही हूँ, वो भी होंठों पर ही है और इसे गाया है कुमार सानू, अलका याग्निक, और फिल्म है नाजायज़।

0: एनसीआर ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
3: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
2: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
3: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
4: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है गाते गुनगुनाते आपके रेडियो सखी रेणुका के साथ। अगला गीत जो मैं आपके लिए पेश करने जा रही हूँ वो है फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, और ये जो फिल्म है ना ये काफ़ी हिट हुई थी, और ये दूसरी फिल्म थी अक्षय कुमार और सैफ अली खान की। इससे पहले उन्होंने ये दिल लगी फिल्म में काम किया था, और ये फिल्म हिट तो थी ही, इसके गाने भी सुपर हिट थे। और आपको पता है इस फिल्म का जो शीर्षक है वो पहले एक अनाड़ी एक खिलाड़ी रखा जाना था, पर ये भी अच्छा है ना, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। और इस फिल्म में रवीना टंडन जो है उन्होंने भी एक कैमियो किया है, गेस्ट अपीयरेंस के रोल में वो दिखाई देती हैं इस फिल्म में। और इस फिल्म के गीत जो हैं आज भी खूब पसंद किए जाते हैं, तो चलिए हम भी देरी न करते हुए सुनते हैं ये गीत जिसे गाया है कुमार सानू और अलका।

अगला जो गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रही हूँ वो है फिल्म खलनायक से, और खलनायक के बारे में तो क्या ही कहना, वो एक सुपरहिट फिल्म तो है ही है, उसके गाने भी आज बहुत फेमस है, आज भी बहुत फेमस है और पूरी दुनिया में फेमस है। इनफैक्ट खलनायक फिल्म जो है वो पहली हिंदी फिल्म थी जिसने बहुत बड़ा जो है सक्सेस देखा कनाडा और अमेरिका में, और कुछ हॉलीवुड फिल्में जो उस समय रिलीज हुई थी इसके साथ ये उनकी कलेक्शंस को भी मात दे गया था। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो संजय दत्त का किरदार था उसे अनिल कपूर निभाने के लिए बहुत ही उतावले थे, पर सुभाष गाय ने अंत में संजय दत्त को ही कास्ट किया था। और ये भी बताना चाहूँ कि बॉलीवुड की जो फिल्में थी वो 1982 के बाद से ओवरसीज यानी कि कनाडा यहाँ सब रिलीज होनी बंद हो गई थी, पर ये पहली फिल्म थी जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। और जो गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रही हूँ उस फिल्म से, उस गाने से प्रेरित होकर स्लमडॉग मिलियनेयर जो फिल्म आई थी ना उसमें भी एक गाना जो है बनाया गया था, क्योंकि ये गाना इतना प्रचलित था। तो चलिए सुनते हैं ये गीत अलका याग्निक इला अरुण की आवाज़ में।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

हफीज जौनपुरी कहते हैं, आशिक की बेकसी का तो आलम न पूछिए, आशिक की बेकसी का तो आलम न पूछिए, मजनू पे क्या गुजर गई सहरा गवाह है। खैर, मैंने भी आपको बताया था कि इस छोटे से दिल में हम कितनी बड़ी बड़ी चीजों को समेट लेते हैं, समा लेते हैं और पता भी नहीं लगने देते कि बाहर क्या हो रहा है। अपनी दिल की बेकसी को बताने आ रहे हैं किशोर कुमार और गाना है फिल्म अलग अलग से।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हम समाप्त करते हैं अपना कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, और मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता

0: पहुंचकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है। तथाकथित यौम इस्तेहसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानि कारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईश रानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया, अनमोल खरब और श्यांशी वली शेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, including the Chief Justice of India. After completing the business, Deputy Chairman adjourned the House for the day. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. The legislation was cleared by the Lok Sabha without any discussion amid continuous uproar by the opposition members over several issues. Following the passage of the bill, the Lok Sabha was adjourned for the day. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has said the government is cognizant of the risks associated with children's online activities, including exposure to harmful content, cyberbullying, online exploitation and digital addiction. In a written reply to a question in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnav said the Digital Personal Data Protection Act 2023 has been enacted, which establishes the legal framework to regulate the processing of digital personal data. He said the Act provides a legal framework for safeguarding children's privacy online. CEO of Meta, the parent company of several of the world's largest social media networks, Mark Zuckerberg, today sent his apologies to the government of India for the child sexual abuse material, related content, deepfake content and errors in operating the platform. Sources said Meta admitted that a lot of money was paid for boosting certain type of content. It was made clear to

0: whether they are not covered under intermediary definition, and they select who receives the content. They apologized and regretted the mistake. Today marks 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said, "Lives of people of Jammu and Kashmir and Ladakh have witnessed wide-ranging transformation since the abrogation of Articles 370 and 35A on this day in 2019. Talking to Akashwani News at Parliament premises, Jammu and Kashmir BJP President and Rajya Sabha MP Satpal Sharma described the abrogation of Article 370 as a historic step.
1: It was on this day in 2019 that Article 370 was abrogated. We all know that Jammu and Kashmir is scaling new heights today. Due to this article, women from our region who married outside the state used to be deprived on their rights, including their property rights. Now that injustice has been ratified, communities such as Balmikis and Gurkhas have finally secured their due rights following the abrogation of Article 370.
0: India Today advised Pakistan to stop the bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, take credible, verifiable and irreversible action against terror networks operating from its soil, and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal was responding to media queries on remarks made by Pakistan's foreign minister on the so-called Yom-e-Istisal. Mr. Jaiswal said the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are, have always been, and will always remain an integral and inalienable part of India. He said the constitutional changes made on the 5th of August 2019 are an internal matter of India, and Pakistan has no locus standi to comment on these matters. The Monetary Policy Committee, MPC of the Reserve Bank of India, RBI, at the conclusion of its policy meeting today, decided to keep the key policy repo rate unchanged at 5.25%. The MPC also decided to keep the stance neutral while hiking the growth projection to 6.7% from 6.6% in the current financial year. India enjoyed a mixed day at the Korea Masters Badminton Tournament in Asan, with seven women's singles players advancing to the second round, while all six Indian men's singles shuttlers crashed out in the opening round. And with that, we end this news bulletin.
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्यघर। खाद्य उत्पादों की खरीद आसान हुई है और उपभोक्ताओं के सामने विकल्प भी पहले की तुलना में कहीं अधिक हैं। ऐसे समय में ये सुनिश्चित करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि बाजार में उपलब्ध खाद्य उत्पाद सुरक्षित हों, उनकी गुणवत्ता तय मानकों के अनुरूप हों और उन पर दी गई जानकारी सही तथा पारदर्शी भी हो। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों से सशक्त बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य परीक्षण प्रक्रिया को अधिक तेज, सटीक और विश्वसनीय बनाना है। साथ ही खाद्य उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी यानी किसी उत्पाद की पूरी यात्रा का पता लगाने की व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI भी खाद्य उत्पादों पर भ्रामक दावों और गलत लेबलिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके और वे सोच समझकर निर्णय ले सके। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता जाँच इतनी महत्वपूर्ण आखिर है क्यों? इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स किस तरह बदलाव ला सकते हैं, उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी का क्या महत्व है और भ्रामक लेबलिंग पर रोक लगाना उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्यों आवश्यक माना जा रहा है। खाद्य सुरक्षा केवल स्वाद या गुणवत्ता का विषय नहीं है, बल्कि ये सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि किसी खाद्य उत्पाद में मिलावट हो, उसमें हानिकारक रसायनों की मात्रा तय सीमा से अधिक हो या उस पर दी गई जानकारी वास्तविकता से मेल न खाती हो, तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक परीक्षण और प्रभावी निगरानी किसी भी मजबूत उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बाजार में बिक रहे खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस दिशा में सरकार लगातार विभिन्न कदम उठा रही है। आइए सुनते हैं इस विषय पर एक रिपोर्ट।
4: देश में विभिन्न सरकारी प्रयोगशालाएं नियमित रूप से खाद्य और अन्य उपभोक्ता उत्पादों की जांच करती हैं। इन परीक्षणों के दौरान ये देखा जाता है कि उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। इसके लिए रासायनिक परीक्षण, सूक्ष्म जीवों की जांच, कीटनाशक अवशेषों का विश्लेषण, भारी धातुओं की मौजूदगी और अन्य गुणवत्ता संबंधी मानकों का परीक्षण किया जाता है। इन वैज्ञानिक जांचों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद ही पहुंचे। लेकिन जैसे जैसे बाजार का आकार बढ़ रहा है और नए नए उत्पाद सामने आ रहे हैं, परीक्षण प्रयोगशालाओं का काम का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में नमूनों की जांच, कम समय में सटीक परिणाम देना और नई तकनीकों के अनुरूप परीक्षण व्यवस्था को लगातार अद्यतन रखना आज एक बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। यही कारण है कि अब परीक्षण व्यवस्था को पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ाकर आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डिजिटल डेटा विश्लेषण और स्वचालित परीक्षण प्रणालियों के उपयोग से जांच प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। इससे न केवल परीक्षण की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी और मजबूत होगा।
3: श्रोताओं, खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन बदलते समय में केवल पारंपरिक तरीकों से काम करना पर्याप्त नहीं है। आज जरूरत ऐसी तकनीकों की है जो कम समय में अधिक नमूनों की जांच कर सके, त्रुटियों की संभावना को कम करें और गुणवत्ता परीक्षण को अधिक सटीक तथा भरोसेमंद बनाएं। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों को परीक्षण व्यवस्था का हिस्सा बनाया जा रहा है। आइए समझते हैं कि ये बदलाव किस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण को और मजबूत बना सकता है।
5: तकनीक आज जीवन के लगभग हर क्षेत्र को बदल रही है और अब इसका प्रभाव उत्पादों की गुणवत्ता जांच व्यवस्था में भी दिखाई देने लगा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर
5: विश्लेषण कर सकती है, जबकि रोबोटिक्स दोहराए जाने वाले परीक्षण कार्यों को अधिक सटीकता और एकरूपता के साथ पूरा करने में सहायता कर सकती है। इससे मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी और जांच की गति भी बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य केवल परीक्षण प्रक्रिया को तेज बनाना नहीं, बल्कि उसे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना भी है। इसके लिए राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरणों, डिजिटल प्रणालियों और उन्नत विश्लेषण तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इससे विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता उत्पादों की गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी भी है। ट्रेसेबिलिटी का अर्थ है किसी उत्पाद की पूरी यात्रा का रिकॉर्ड उपलब्ध होना, यानी उसका उत्पादन कहाँ हुआ, वह किन चरणों से होकर बाजार तक पहुँचा और गुणवत्ता परीक्षण कब तथा कैसे किया गया। यदि किसी उत्पाद में बाद में कोई समस्या सामने आती है तो ट्रेसेबिलिटी व्यवस्था के माध्यम से उसके स्रोत की पहचान करना और आवश्यक कार्रवाई करना आसान हो जाता है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
3: श्रोताओं, किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक ये भी है कि उस उत्पाद के बारे में उपभोक्ता को सही और स्पष्ट जानकारी मिले। यदि पैकेज पर लिखी जानकारी भ्रामक हो या उत्पाद के गुणों के बारे में बढ़ा चढ़ा कर दावे किए जाएं, तो उपभोक्ता सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए गुणवत्ता परीक्षण के साथ साथ पारदर्शी लेबलिंग और जिम्मेदार विपणन भी उपभोक्ता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण आधार है। आइए अब समझते हैं कि इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी

0: FSSAI तथा सरकार किस प्रकार काम कर रही है।
1: आज अधिकांश उपभोक्ता खाद्य उत्पाद खरीदते समय पैकेट पर लिखी जानकारी पर भरोसा करते हैं। उत्पाद में क्या सामग्री है और उसका पोषण मूल्य क्या है, उसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे किस प्रकार सुरक्षित रखा जाना चाहिए, ऐसी जानकारी उपभोक्ता के निर्णय को प्रभावित करती है। इसलिए ये आवश्यक है कि पैकेज पर दी गई हर जानकारी सही, स्पष्ट और भ्रामक दावों से मुक्त हो। इसी उद्देश्य से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य उत्पादों की लेबलिंग और विज्ञापनों पर लगातार निगरानी रखता है। यदि किसी उत्पाद पर ऐसे दावे किए जाते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है या जो उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं, तो उनके विरुद्ध नियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है। विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण और प्राकृतिक गुणों से जुड़े दावों को लेकर निर्धारित मानकों का पालन आवश्यक है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता किसी भ्रामक प्रचार के आधार पर नहीं बल्कि सही जानकारी के अनुसार अपना निर्णय ले। उपभोक्ता संरक्षण केवल नियामक संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि जागरूक उपभोक्ता भी इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए लोगों को खाद्य उत्पाद खरीदते समय पैकेज पर दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ने, निर्माण और उपयोग की तिथि देखने तथा केवल अधिकृत और मानक अनुरूप उत्पादों को प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है। एक और जहां आधुनिक प्रयोगशालाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी तकनीकें गुणवत्ता परीक्षण को अधिक सक्षम बना रही है, वहीं दूसरी ओर पारदर्शी लेबलिंग, उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी और प्रभावी नियामकीय निगरानी उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को और मजबूत कर रही है। इन सभी प्रयासों का साझा उद्देश्य यही है कि बाजार में उपलब्ध उत्पाद सुरक्षित हों, गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों और उपभोक्ताओं का विश्वास उन पर बना रहे। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्रोताओं, तेजी से बदलते बाजार और नई तकनीकों के इस दौर में उपभोक्ता संरक्षण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक परीक्षण, आधुनिक तकनीक, पारदर्शी लेबलिंग और जागरूक उपभोक्ता, ये सभी मिलकर एक सुरक्षित विश्वसनीय उपभोक्ता व्यवस्था की नींव रखते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज श्रोताओं हमारे साथ आमंत्रित हैं. हमारे समक्ष वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: प्राची, आपके साथ साथ गौरा, आपको भी गुड इवनिंग.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: थैंक यू प्राची. सिद्धार्थ, वंस अगेन गुड इवनिंग, वेलकम. Listeners, a quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex rises over 150 points. Nifty settles above 24,600. RBI leaves repo rate unchanged. Raises current fiscal year growth forecast to 6.7%. Trims inflation projection to 5%. And global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 150 अंकों से ऊपर बढ़ा. निफ्टी 24,600 से ऊपर बंद हुआ. भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. चालू वित्त वर्ष में विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया. वहीं महंगाई दर का अनुमान 5% घटाया है. दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी.
0: Listeners, before we move further into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or

0: Consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स 0.2% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% बढ़ा। बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा दोनों प्रमुख शेयर सूचकांक कमजोर होते नजर आए। हालांकि कारोबार के अंत में क्लोजिंग ऑक्शन सत्र के बाद दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कुछ हद तक रिकवरी भी की।
0: Benchmark domestic equity indices ended on a positive note today. The Sensex gained 152 points to close at 78,581. The Nifty rose marginally by 10 points to settle at 24,625. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index rose 0.2% and the Small-Cap 100 Index added 0.8%. Earlier, the markets opened in the positive zone, but as the session progressed, both benchmark indices slipped into negative territory. However, towards the end of the session, the Sensex and the Nifty paired their losses after the closing auction session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बढ़त वाली कंपनियों के शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट 2%, एनटीपीसी 1.8% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.7% बढ़े। वहीं घाटा दर्ज करने वाली कंपनियों के शेयरों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.2%, एचसीएल टेक 1% से अधिक और रिलायंस में लगभग 1% की गिरावट आई।
0: In sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, housing finance advanced 1.8%, metal rose 1.6% and auto gained 1.4%. In contrast, mid-small private banks quality tilt, energy and oil and gas fell by 0.4%, mid-small private banks fell 0.3% and capital goods dropped by 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,292 companies advanced, 1,958 declined and 198 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, अगर हम पिछले यूएस स्टॉक मार्केट के सेशन की बात करें तो वहां पर एक रैली रही, तो क्या ये उसी का प्रतिरूप हमें आज बाजार में देखने को मिला कि बाजार जो है पॉजिटिव नोट पर बंद हुए?
2: नहीं, उसके अलावा प्राची, जो मुझे लगता है न केवल जो यूएस मार्केट का रिफ्लेक्शन जो आप बोल रही हैं, वहाँ पे जो तेज़ी है पिछले 3-4 दिनों में, खासकर आईटी स्टॉक्स में तेज़ी है जो अमेरिकी बाज़ारों में, मुझे लगता है कि आज जो मुझे लगता है जैसा जैसे जब बाज़ार खुले तो काफ़ी फ्लैट थे, उसके बाद गिरे भी लेकिन उसके बाद रिकवरी आई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2-3 जो महत्वपूर्ण कारण मुझे लगता है, खासकर एक जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध है उसकी जो अनसर्टिनिटी है वो कहीं ना कहीं अभी भी बाज़ार में बनी हुई है। और उसके अलावा मुझे लगता है आज प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला मुझे लगता है, तो कहीं ना कहीं ये दो कारण और मुझे लगते हैं जो बाज़ार पे कहीं ना कहीं हावी रहे। मतलब जो रेपो रेट जो आया, आरबीआई का जो अनाउंसमेंट है रिजर्व बैंक का, सेंट्रल बैंक का, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। वो एक्सपेक्टेड था कि कोई बहुत ज़्यादा, मतलब इस समय कोई वो बदलाव
1: नहीं था, बिल्कुल नहीं।
2: वो जो न्यूट्रल स्टांस है, और वो आप देखेंगे चाहे अमेरिका का जो फेड है, फेड रिजर्व, उन्होंने भी अभी तक अपने इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया, चाहे यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, तो मुझे लगता है वो उसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं था। बाजार ने उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रखा था, और वो अच्छा भी है, शुभ संकेत है हमारी बाजारों के लिए।
0: सो दैट लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स बिल्डिंग इन सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, कीपिंग ऑल दैट इन माइंड एंड ऑल्सो कीपिंग आई थिंक द फैक्ट दैट द इंडियन इकोनॉमी इज सॉलिड रोबस्ट, I think consumption is still there. The monsoon has picked up, which was predicted not to be so good, but I think by and large it's averaging out with little pockets of disturbance. Do you think that somewhere in August and September there was a sentiment that maybe the markets won't be really rallying or really picking up. Do you think the range in which they're going to move is

0: to 4.4% in June after remaining below target for 16 consecutive months, it turned out to be lower by 30 basis points than what was our earlier projections. After considering all factors, CPI inflation for this year is now projected to be 5%, 10 basis lower than our earlier projections, with Q2 at 4.7, Q3 at 5.9, and Q4 at 5.5%.
1: सिद्धार्थ, रेपो रेट अनचेंज्ड, पॉलिसी स्टैंड्स न्यूट्रल और जीडीपी ग्रोथ की जो फॉरकास्ट है दैट इज 6.7, जो कि एक राहत की सांस है, कैसे देखते हैं आप इसे?
2: नहीं प्राची, राहत ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये राहत की सांस है, बट मुझे लगता है कि जो कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी में है या जो रेजिलेंस की बात अभी गौरा कर रही थी, तो मुझे लगता है शायद उसी को उन्होंने अपने आज का जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है सेंट्रल बैंक का, वो उन्होंने उसी उसको और मजबूती से पेश किया है। आप अगर उनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो जहाँ तक महंगाई की बात उन्होंने कही है कि अभी भी महंगाई खाली फूड और फ्यूल और में ही जो है जो एक चिंता का सबब है, और दूसरा उन्होंने जो चिंता जताई है वो है खरीफ की जो सोइंग चल रही है इस समय और जो मॉनसून और एल नीनो का इम्पैक्ट, तो वो एक दो एरियाज हैं, ग्रे एरियाज। हालांकि उन्होंने उसके साथ साथ ये भी बोला कि जो डाइवर्सिफिकेशन के सरकार ने कदम उठाए हैं क्रॉप्स के, और जो हमारे पास अभी भी फूड ग्रेन के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो इसीलिए आरबीआई ने शायद जो महंगाई का जो उनका आकलन था, जो एस्टिमेट था, उसको भी मार्जिनली घटाया है। साथ साथ जो उन्होंने एक्सपोर्ट्स की बात की और जीडीपी का भी आकलन जो है उसको भी ऊपर किया है। पहले पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में इट वॉज 6.6 और इस बार उन्होंने 6.7 का एस्टिमेट किया है फॉर दी करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो कहीं ना कहीं, और अगर आप रूरल डिमांड देखें या अर्बन डिमांड देखें, इंडस्ट्रियल साइड, सर्विस सेक्टर, तो कहीं ना कहीं और जो लेटेस्ट नंबर्स आ रहे हैं, चाहे जीएसटी के नंबर्स आए हों या जो कार सेल्स के नंबर आए हों, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल दिखती है कि जो हिंदुस्तान मैक्रो इकोनॉमी फंडामेंटल्स हैं इंडिया के, वो इंटैक्ट हैं एंड देर इज़ नथिंग टू वरी।
1: बिल्कुल सिद्धार्थ, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी हमारे जो डोमेस्टिक इंडिकेटर्स हैं वो पहली तिमाही में काफ़ी रेजिलिएंट नजर आए। बहरहाल, इस संदर्भ में आइए सुनते हैं आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने क्या कहा।
0: Renewed tensions in West Asia, which are disruptive of global supply chains, volatility in international financial markets, and weather-related shocks pose downside risks to growth. However, domestic economic activity has exhibited resilience, as reflected by the high-frequency indicators available for Q1. Early results of corporates for Q1 indicate healthy performance in the manufacturing sector. This is also corroborated by an expansionary PMI. Services activity too maintained its momentum in the wake of strong domestic demand. Overall, the Indian economy performed better than expected in Q1.
1: आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ी एक और खबर। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ टेस्ट कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इनके सुरक्षा फीचर्स और अन्य विवरण जल्द साझा किए जाएंगे। प्लास्टिक के नोट जब चलन में आ जाएंगे, जिसकी परिकल्पना हम अभी कर रहे हैं, और किस तरीके से उभरेंगे ये तो वक्त बताएगा सिद्धार्थ, मगर आप इसे कैसा देखते हैं ये हम जानना चाहेंगे।
2: नहीं प्राची, मुझे लगता है कि दुनिया के 30 देश कम से कम ऑलरेडी प्लास्टिक नोट्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और आरबीआई रिजर्व बैंक भी इसको एक पायलट के तहत अभी शुरू कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट होगा, हालांकि जो एक्चुअल हमको देखने को मिलेंगे नोट्स वो अगले साल अप्रैल में, जो उन्होंने बोला है अगले वित्त वर्ष के शुरू में। और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, कम से कम ऐसा बोला जाता है कि जो अपने कागज़ के नोट हैं उनसे कहीं ना कहीं कम से कम 2 से 4 गुना ज़्यादा उनका लाइफ स्पैन होता है। आप उसमें जो फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स और अच्छे डाल सकते हैं, और अगर लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा अगर कॉस्ट इनिशियली ज़्यादा भी होगी तो जो उनकी लाइफ स्पैन है अगर वो ज़्यादा है तो वो उसमें वो उसको कवर कर लेगी। तो कहीं ना कहीं एक तो दो कारण तो ये हो गए, तीसरा जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली कि जो छोटे नोट्स हैं, जो छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स हैं
1: जी,
2: उनका जो उसका शुरुआत हम वहाँ से कर रहे हैं, और वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे 10 या 20 रुपए के नोट्स की जो बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो आप इस्तेमाल में आते हैं वो 10 रुपए या 20 रुपए के नोट्स का चलन ज़्यादा होता है,
1: चेंज होते हैं।
2: हाँ, जो 500 का नोट है वो आप रोज़ रोज़ हर चीज़ में अपने लेन देन में उनका इस्तेमाल

0: नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो है छोटे नोट्स, इसीलिए फोकस इज ऑन स्मॉल नोट्स, स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स, और ये आने वाला मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने बोला कि पायलट के तौर पे शुरुआत करें, अगर रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो इसको और जो है बड़े पैमाने में इसको आगे बढ़ाएंगे।
1: बिल्कुल। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज आइटम, द ऑफर फॉर सेल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हिच क्लोज्ड टुडे अट्रैक्टेड बिड्स फॉर अबाउट 70% ऑफ द शेयर्स set aside for retail investors. According to BSE, the category placed bids for about 57.6 million shares compared to 82.2 million shares reserved for retail investors. Yesterday, offer for sale in the LIC received an overwhelming response from institutional investors and was oversubscribed. In view of the exceptional demand, the government had decided to exercise the green shoe option. Moving on to our next story, India's services sector remained in expansion territory in July, supported by healthy export demand and continued hiring. According to the HSBC India Services Purchasing Managers Index PMI, data compiled by S&P Global, the seasonally adjusted services PMI, business activity index stood at 53.3 in July. It remained above the 50 mark that separates growth from contraction. However, the country's service economy growth slowed in July as business activity rose at the weakest pace in over 4 years. This was largely due to softer demand, competitive pressures and order postponements. Meanwhile, service providers continued to report growth in activity with strong overseas demand emerging as a key support factor. The report showed that the rate of job creation showed an uptick from that in June, with service providers continuing to expand their workforce. Further, input cost inflation softened to a six-month low and remained below the long-running average despite higher fuel, labor, material, technology and transportation expenses. Additionally, the HSBC India Composite PMI Output Index, which tracks both manufacturing and services activity, fell to 54.3 in July from 57.1% in June. So that here we're seeing figures and we're also seeing, mixed indications. And we also know that a lot of seasonal adjustments, normally some months, it does traditionally fall and does pick up later. Anything, any area of concern? Because we're moving overall over the indicators, we're seeing a marginally downward movement.
0: No, Gaurav, I don't think it is anything of concern, obviously. And also this PMI index, it also gives us it's a futuristic indication of things to come. So the heartening, still what is heartening in this is that it is above 50%. So anything above 50% indicates that there is expansion, there is in demand. So nothing to worry. And the other important why we should watch this data is also because, especially the service index, because almost 50% of Indian economy is now service sector. So I don't think there is anything to worry. Yes, obviously, and this is despite so much of uncertainty, and so I don't see still anything which is should be a matter of concern.
1: Oh, right. Okay. It could be considered in, as they say, in the normal flow of things.
0: And it is sometimes it's also month to month dips.
1: Absolutely.
0: So probably then next month it picks up.
1: And not read too much into it.
0: Yeah. And it is, since it is still futuristic and above 50%, so I don't think anything to concern.
2: आगे बढ़ते हैं गौरा और जायजा लेते हैं एशिया और यूरोपीय बाजार का। प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 4% और जापान का निकेई 3.5% से अधिक बढ़ा। बात यूरोपियन शेयर बाजार की करें तो आज प्रमुख यूरोपीय शेयर सूचकांक मिले जुले रुख के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स 0.3% बढ़ा, जबकि लंदन का फुटसी 0.2% नीचे कारोबार करता नजर आया।
1: Look at the US markets. Wall Street ended higher yesterday with the Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 closing at a record high. The surge was driven by hopes of de-escalation in West Asia, a decline in crude oil prices and strong quarterly earnings reports. The Nasdaq Composite Index climbed 2.6% to close at 26,585. The S&P 500 surged 1.8% to settle at 7,736. index and the Dow Jones Industrial Average jumped 1.7% to end at 54,085. On the economic front, country's goods and services trade deficit dropped by 5.6% in June to $73.3 billion as compared to May. According to a report released by the U.S. Bureau of Economic Analysis, exports declined by $2.9 billion to $314.7 billion, and imports were down by $7.3 billion to $388 billion in June on a sequential basis. Siddharth, before we talk about the international markets, quick, like this is just a paragraph that I read just now. The U.S. economy's, fall in exports. And is it also somewhere linked to tariff imposition by the Trump administration?
0: I think, Gaurav, obviously, because there have been retaliatory steps also taken by the economies which have been impacted by tariffs. Mm-hmm. And that would be one factor. But I think also, yes, because there have been cost pressures also in the U.S. economy because of the energy disruption and the inflationary pressures in the U.S. economy also. But I would still say there's the U.S. markets back into green, especially more after the results of the companies which are into artificial intelligence. The probably people investing in those stocks also have taken they're kind of coming to a situation where they are also ready to accept the high huge investments into these companies after the returns or the results that they have seen. So right. Not only of these, also of the data companies, plus as you also said, the falling crude oil prices, the if there is peace in US, Iran,
1: and hopes of the peace. I think it's all linked to hopes, but I think somewhere,
0: and also yes, and also another thing which Fed last week didn't raise the interest, so that also kind of has kind of also smoothened and has given the investors confidence back. Plus also the steep fall that we saw in AI stocks. So that kind of revaluation has also kind of brought in people back to the markets.
1: Right.
2: तो सिद्धार्थ, क्या ये कहना उचित होगा आज की तारीख में कि एआई को लेकर के जो भय जो एक लोगों के दिल में था वो अब धीरे धीरे निवेशकों के जहन से उतर रहा है, कम हो रहा है? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं एशियाई बाजार के संदर्भ में, तो आप क्या इससे सहमत होंगे कि अब ये भय उतर रहा है, या फिर अभी कहीं ना कहीं और भी देखने की ज़रूरत है और वक्त लेने की ज़रूरत है?
0: प्राची, मुझे लगता है ये मतलब अगर मैं एकदम से कहूं कि नहीं ये खत्म हो गया ये भय, तो ये सत्य नहीं होगा. क्योंकि जब ये भय आया था तब भी आप देखेंगे जो जिस मार्केट की आप बात कर रहे हैं साउथ कोरियन कॉस्पी, तो वहां पे जो दो बड़ी कंपनियां उनको रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिले थे यूएस की कंपनियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चिप्स वगैरह बनाने,
2: यानी ये कड़ी वहां से जुड़ी हुई.
0: हाँ बिल्कुल है, उसका बहुत बड़ा रोल है उनका वहां पे, क्योंकि दो बड़ी कंपनियां दुनिया को जो सप्लाई कर रही है चिप्स वो साउथ कोरिया के मार्केट में ही है. उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन से आता है तकरीबन 50%. तो ये जल्दबाजी होगा कहना कि अब वो भय खत्म हो गया. लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स आए हैं और कहीं ना कहीं जो एक अब जो लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना भी दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ का पार्ट है. हाँ, अब वो उसकी वैल्यूएशन, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो कितना जस्टिफाई करेगा, वो आने वाले समय में तय होगा. और अभी ये कह देना कि भय खत्म हो गया, मुझे लगता है जल्दबाजी.
2: यानी कुछ चीजें गौरा भविष्य के गर्भ में रहने देनी चाहिए.
1: राइट. इन फैक्ट, व्हेन वी टॉक ऑफ द फियर लिंक टू दिस, आई थिंक द कंसर्न दैट इट्स अ बबल, इट्स अ वेरी बिग बबल, इट्स गोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दैट समवेयर हैज बीन मॉडरेटेड एंड आई थिंक ऑल्सो स्ट्रेंथन्ड बाय द फैक्ट दैट यू नो इट्स नॉट रियली अ बबल. But it's a sunrise area.
0: Or would do the kind of investment justify the earnings? Probably that also is a reason.
1: Right. Our next story, government has operationalized the inventory-based cross-border e-commerce export framework under the Foreign Trade Policy 2023. The framework provides a comprehensive policy and procedural architecture for facilitating inventory-based cross-border e-commerce exports of goods manufactured or produced in India. It incorporates several safeguards to ensure that the benefits of e-commerce exports accrue to Indian manufacturers and MSMEs while maintaining regulatory oversight. It also provides for timely payments to Indian sellers within the prescribed timeline, irrespective of the receipt of payment from overseas buyers. A quick comment here, Siddharth, because one of the grudges of the MSMEs is that, you know, we want a quick turnaround time for the money to come back to us.
0: Timely
1: and
0: payment.
1: This will, yes, because that keeps them going.
0: Yeah, I think another one more step in the direction of ease of doing business and facilitating the process of for our exporters, and also obviously taking care of the interest of the MSMEs, small scale industries.
1: Right. Crude oil prices, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 1.4% up at $80.45 per barrel in intraday trade. West Texas intermediate crude was trading 0.8% higher at $76.37 per barrel when reports last came in. Right. I think you already have made your comment on crude oil prices, so we shall move to gold and silver, the glittering metals. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 2.2% up at 1,47,490 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% higher at 2,28,800 rupees per kilogram. A short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.8% बढ़कर 1,45,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 2.7% की बढ़त के साथ 2,27,520 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सिद्धार्थ, समय की परिधि में रहते हुए मैं टिप्पणी आपसे चाहूंगी सोने के दाम पर खास करके, और एक सोने चांदी अगर आप दोनों के दाम पर बताएं तो बेहतर है।
0: नहीं देखिए, सोना अभी तक जो बॉटम हमने देखा इस पिछले 2-3 महीने में, हमने देखा तकरीबन $4,000 पर आउंस पे कहीं ना कहीं वो मतलब वहाँ बाइंग आ रही है। हाँ, वहाँ बाइंग आ रही है, लेकिन अभी आप जब आज की बात करें तो एक बार फिर कीमतें बढ़ी हैं, तकरीबन मुझे लगता है $4,100 के ऊपर पर आउंस है। और उसके दो प्रमुख कारण मुझे लगता है, एक तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आई हैं, साथ ही साथ जो US के ट्रेजरी यील्ड्स हैं या बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी थोड़ा घटा है हल्का सा। तो वो दोनों कारण है, क्योंकि गोल्ड को ये माना जाता है कि इसमें कोई आपको रोज़ कोई इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी अभी भी बड़े पैमाने पे गोल्ड जमा कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड बनी रहेगी।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, मेरे और गौरा के हम दोनों के ही तमाम सवालों के जवाब।
0: आप दोनों को भी धन्यवाद।
1: थैंक यू सिद्धार्थ। Before we close the headlines, benchmark domestic indices end on positive note. Sensex rises over 150 points. Nifty settles above 24,600. RBI leaves repo rate unchanged, raises current fiscal year growth forecast to 6.7%, trims inflation projection to 5%, and global crude oil prices rise. That's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
5: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
4: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्य प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों

0: मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इस सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉप और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 24,625 पर रहा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में ईशा रानी, बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिहा, अनमोल खरब और श्रियांशी वलीशेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में सोनाली सिंह और ऋतिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. After completing the business, Deputy Chairman adjourned the House for the day. Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. The legislation was cleared by the Lok Sabha without any discussion amid continuous uproar by the opposition members over several issues. Following the passage of the bill, the Lok Sabha was adjourned for the day. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has said that the government is cognizant of the risks associated with children's online activities, including exposure to harmful content, cyberbullying, online exploitation and digital addiction. In a written reply to a question in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnav said, "The Digital Personal Data Protection Act 2023 has been enacted, which establishes the legal framework to regulate the processing of digital personal data." He said the act provides a legal framework for safeguarding children's privacy online. CEO of Meta, the parent company of several of the world's largest social media networks, Mark Zuckerberg, today sent his apologies to the government of India for the child sexual abuse material, related content, deep fake content and errors in operating the platform. Sources said Meta admitted that a lot of money was paid for boosting certain type of content. It was made clear to Meta that they are not covered under intermediary definition and they select who receives the content. They apologized and regretted the mistake. Today marks 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said, "Lives of people of Jammu and Kashmir and Ladakh have witnessed wide-ranging transformation since the abrogation of Articles 370 and 35A on this day in 2019. Talking to Akashvani News at Parliament premises, Jammu and Kashmir BJP President and Rajya Sabha MP Satyapal Sharma described the abrogation of Article 370 as a historic step.
2: Aaj ke din 2019 mein 370 ko nirast kiya gaya. It was on this day in 2019 that Article 370 was abrogated. We all know that Jammu and Kashmir is scaling new heights today. Due to this article, women from our region who married

0: outside the state used to be deprived on their rights, including their property rights. Now that injustice has been ratified, communities such as Balmikis and Gurkhas have finally secured their due rights following the abrogation of Article 370.
1: India Today advised Pakistan to stop the bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, to take credible, verifiable and irreversible action against terror networks operating from its soil, and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal was responding to media queries on remarks made by Pakistan's foreign minister on the so-called Yom-e-Istehsal. Mr. Jaiswal said the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are, have always been and will always remain an integral and inalienable part of India. He said the constitutional changes made on the 5th of August 2019 are an internal matter of India and Pakistan has no locus standi to comment on these matters. The Monetary Policy Committee MPC of the Reserve Bank of India, at the conclusion of its policy meeting today, decided to keep the key policy repo rate unchanged at 5.25%. MPC also decided to keep the stance neutral while hiking the growth projection to 6.7% from 6.6% in the current financial year. The India Meteorological Department IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall conditions over Uttarakhand, Jharkhand, Gangetic, West Bengal, Orissa, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa tomorrow. IMD has also forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Chhattisgarh, coastal Karnataka, among others. And India enjoyed a mixed day at the Korea Masters Badminton Tournament, with seven women single players advancing to the second round, while all six Indian men singles shuttlers crashed out in the opening round. And that is the end of this news bulletin.
2: Surkhiyon mein. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं हाल ही में संसद द्वारा पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर, और आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इस विधेयक के विभिन्न आयामों पर, और साथ ही जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को लेकर जो पुरानी स्थिति थी और अब इस विधेयक के बाद जब ये अधिनियम के रूप में हमारे सामने आएगा तो उसमें क्या बदलाव आएंगे, क्या सामाजिक और इसमें प्रशासनिक जो जटिलताएं थी उनको दूर करने में इससे मदद मिलेगी। हम इस विषय पर व्यापक चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं हमारे विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी। सुविमल जी, बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद
3: सुविमल जी। अगर हम भारत में नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड की बात करें तो हमारे सामने 1969 का एक मूल कानून है जिसमें जन्म और मृत्यु का जो रिकॉर्ड है वो स्थानीय प्रशासनिक रिकॉर्ड माना जाता रहा है। लेकिन जब ये विधेयक अब संसद में पारित हो चुका है और अधिनियम के तौर पर ये विधेयक हमारे सामने आएगा तो क्या कुछ इसमें हमें तब्दीलियां देखने को मिलेंगी?
4: देखिए, ये बहुत जरूरत था इस संशोधन को लाने के लिए, इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग आपकी जो जन्म और मृत्यु समय पर रजिस्टर नहीं करते हैं, और जो एक प्रशासनिक रूप से भी तकलीफ होते थे, बहुत सारे फ्रॉडुलेंट गतिविधि भी चलते थे इस डेथ रिपोर्ट में। और जब हमारे आगे की जो वेरिफिकेशन पर्पसेस या बहुत सारे बेनिफिशियरी पर्पसेस के लिए जब करेक्ट रिकॉर्ड, सही रिकॉर्ड रखना जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए इसको शुरू से ही लाभ के इसमें सारे जो बदलाव लाना था इसलिए इसको लाया गया। तो अगर हम देखें तो हमारे देश में जो ये जन्म की पंजीकरण, ये 86.6 2014 में जो था उससे 99.1 तक पहुंच गया 2024 में, और मृत्यु कर पंजीकरण 72.99 तक आ गया। तो ये जो एक बदलाव आया था, मुझे लगता है कि इसके साथ साथ ये सही और वेरीफाइड तरीका से ये पंजीकरण होना चाहिए, तभी आगे एक करेक्ट और रिकॉर्ड सिस्टम में रहेगा। और ये काफी दिन हमारा इसमें बहुत उसमें देखा जाता था कि एज बेनिफिट के लिए बहुत लोग अपने जन्म की तारीख गलत या कम करके डालते हैं। आप बहुत सारे मैंने

0: सरकारी संस्थान में भी देखा है कि बंदा देखने में लग रहा है कि वो रिटायरमेंट एज क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उम्र में वो 50 भी नहीं।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए इस तरीके के जो फ्रॉडुलेंट गतिविधि होते थे इनको भी रोकना जरूरत था, इसीलिए इस संशोधन को लाया गया था।
1: ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने सुविमल जी बताई कि जो असत्यापन या वेरिफिकेशन है उस पर महत्वपूर्ण फोकस है इस विधेयक में, और जो जन्म और मृत्यु है वो नागरिकों की एक बहुत एक ऑथेंटिक डेटा होना जरूरी है किसी भी देश के लिए। तो ऐसे में ये भी है कि जो पहले हम देखते थे कि जैसा आपने भी बताया कि जन्म और मृत्यु को लेकर नागरिकों के जो आंकड़े थे उनमें बहुत बिखराव था, अब ये प्रावधान है कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा नागरिकों का। तो ऐसे में जो पूरा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारे सामने नागरिकों का जन्म और मृत्यु को लेकर सामने आएगा, उससे कैसे आंकड़ों के इस बिखराव को समेटने में मदद मिलेगी और कैसे हमारे सामने पुख्ता और सही आंकड़े जन्म और मृत्यु को लेकर नागरिकों के सामने आ सकेंगे?
0: देखिए, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में ये सारे रिकॉर्ड्स रहने का पहले से करना चाहिए था। हमारा यहाँ ये गतिविधि राज्यों का बीच में, राज्य अपना तरीका से इसको रिकॉर्ड के रखते थे और बहुत समय ये एक कोऑर्डिनेशन का भी इश्यूज होते थे। जब 2023 में ये कानून का ओवरहॉल हुआ था तब बर्थ सर्टिफिकेट को एक सिंगल मैंडेटरी प्रूफ की उसको ठीक किया गया था और जगह और डेट ये दोनों सब की पब्लिक सर्विसेज जो दिया जाता है, जैसे स्कूल एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, आधार और सरकारी नौकरियों के लिए भी इसको आधार बनाया गया था कि एक सिंगल मैंडेटरी प्रूफ होना चाहिए। तो ये सिंगल मैंडेटरी प्रूफ को आप लागू करने के लिए एक कॉमन डेटाबेस में होना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी के काम देश में हुए हैं, लेकिन ये देखा जाता था कि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग अलग अलग डेटा फेंकते हैं। तो इसको एक कॉमन डेटाबेस में जब लाते हैं तो ये वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए जरूर सही होते हैं, लेकिन जो आपकी वेरिफिकेशन के अलावा भी जो एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में सुविधा के लिए उसमें भी बहुत मदद होते हैं।
1: बिल्कुल। और हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे समय बदला है तो अब हमारी जो मांग है वो दूसरी तरह की है, अब हम एक डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे में हमारे जो कानून और अधिनियम है वो भी, उनका ढांचा भी डिजिटल होना, उसका स्वरूप भी डिजिटल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जब ये संशोधन संसद में पारित हुआ है तो उसका जो एक डिजिटल स्वरूप अब हमारे सामने आएगा, उससे जो आम नागरिक है उन्हें कैसे अपने स्तर पर फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि हमारा जो जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड है, खासतौर पर अगर जन्म के ही हम बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट है वो हमें कई अवसरों पर पड़ती है, तो ऐसे में कितना जरूरी हो जाएगा कि एक डिजिटल रूप से हमारे सामने कॉमन डेटाबेस से एक आम नागरिक को जटिलताओं से दूर होने में उसे मदद मिलेगी।
0: देखिए, नागरिक के लिए ये बहुत अच्छा कदम है, इसीलिए क्योंकि हर जगह में इनको बार बार वेरिफिकेशन करना ये जरूरत नहीं पड़ेगा। एक कॉमन डेटाबेस जहाँ एक स्थित डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसी के साथ हर संस्था जो इनकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वेरिफिकेशन के लिए वही पे उस रिपोजिटरी से इसको टैली करेंगे। तो इनको बार बार हर जगह एक्सप्लेनेशन देना या दिखाना वो काम से ये जो एक टीडीएस एक जॉब होते है कि इनको हर जगह में अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दिखाना पड़े, वो मेरे ख्याल से एक नागरिक का रूप में उनके लिए एक सुविधा होता है। दूसरी बात होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिसिटी जिस तरीके से लोगों का, बहुत सारे लोगों का अलग अलग डेट ऑफ बर्थ भी देखे गए हैं कि वो कहीं एक ही आदमी कभी इस डिस्ट्रिक्ट में दाखला किया ही किया हुआ है, तो ये जो डुप्लीकेट की जो बात आती थी वो भी दूर हो जाते। तो एक साफ सुथरा डिजिटली रिकॉर्डेड डेटाबेस में जब नागरिकों की रिकॉर्ड्स रहते हैं तो आगे इनके लिए भी कोई परेशानी नहीं होती है कि क्या किस तरीके से वो नागरिक प्रमाण करे। थोड़े बहुत आउट चेंजेस लाए गए कल जैसे राज्यसभा ने पारित किया है, मुझे लगता है ये जो एक एनोमली था पब्लिक पोजिशन में वो साफ हो जाएगा।
1: मृत्यु की जो रिकॉर्ड की अस्पष्टता जो थी उसमें कई बार ऐसी अड़चनें हमें व्यावहारिक तौर पर देखने को मिलती थी, चाहे वो एक अगर उदाहरण लें संपत्ति का हस्तांतरण हो, पेंशन, बीमा क्लेम, इस तरह से जो कई कागजी अड़चनें थी वो भी क्या आने वाले विधेयक से आम परिवारों को राहत देंगी कि अब मृत्यु के रिकॉर्ड में स्पष्टता रहेगी?
0: जरूर। अगर आप देखें तो जब आधार लागू किया गया था तब देखा गया था कि बहुत सारे जगह में लोग गुजर चुके हैं लेकिन फिर भी उनकी पेंशन जा रही है, या जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के माध्यम से जो बेनिफिट जाते थे वो

0: भी जा रहा है। तो ये जो मैंडेटरी रूप से ये डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है, और जिस तरीका से आपकी डेथ सर्टिफिकेट को इशू किया जाएगा जिस टाइम पीरियड में, इससे ये सारे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होते थे या बहुत सारे केसेस में फ्रॉडुलेंट के अलावा भी बहुत लोग नहीं जानते कि कहां से डेथ सर्टिफिकेट मिले या डेथ सर्टिफिकेट मिलने में भी जो तकलीफें होते थे ऑफिस में, मेरे ख्याल से ये सारे दूर हो जाएंगे। तो इससे आपका लोगों का जो जेन्युइन स्थिति है, जैसे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा डेथ के बाद, या जो पेरेंटल ट्रांसफर्स होते हैं, या बहुत सारे जगह में आपकी एक डेथ के साथ जब बंद होते हैं खाता, तो इसी में बहुत मदद होगा।
1: जी, आपने अभी SIR का जिक्र किया, तो मैं मतदाता सूची पर ही आना चाहूंगा। जब हमारे पास एक स्पष्ट रिकॉर्ड होंगे जन्म और मृत्यु को लेकर, तो एक ऑटोमेटेड हमारे पास वोटर लिस्ट को अपडेट करने की सुविधा क्या हो पाएगी? अगर हमारे पास स्पष्ट रिकॉर्ड होंगे तो चुनाव निर्वाचन आयोग के पास 18 वर्ष पूरी कर चुके जो युवा मतदाता है उनकी स्वतः सूची को अपडेट करने में इससे कुछ मदद जरूर मिलने वाली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अब जो प्रयास हो रहे हैं उससे वो जो रिकॉर्ड्स है वो बिल्कुल साफ हो रहे हैं और करेक्ट हो रहे हैं। इसमें कोई जिस तरीका से आपकी टाइमिंग दिया गया कि 30 दिन की डिले के पहले क्या हो सकता है, 30 दिन डिले के बाद क्या हो सकता है, एक साल या दो साल, इसमें जिस तरीका से माइन्यूटली ये प्रोविजंस लाए गए, उससे क्या होगा कि लोग अपने आप एक डिसिप्लिन की तौर से वो अपने आप बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट लेंगे, और जो बर्थ सर्टिफिकेट जिस हिसाब से लेंगे वो उसका भी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उससे एकदम सही बर्थ रिकॉर्ड होगा, और जो आगे इनकी जो और सारे बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन वो करते रहेंगे उसमें वही टैली होगा। तो इलेक्शन की कार्ड में भी जो इश्यूएंस होगा 18 साल होने पर, ये इसी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर होगा और जो सही डेट ऑफ बर्थ है।
1: एक और सवाल मेरे मन में आया कि जैसे खासतौर पर चुनौतियां उन बच्चों के साथ भी होती थी जो विशेष परिस्थितियों वाले बच्चे, जैसे सिंगल पेरेंट जो होते हैं उनके बच्चों के जन्म के डेटा को लेकर, या फिर जो गोद लिए हुए बच्चे हैं, या जिनके माता पिता नहीं है उनके जन्म के रिकॉर्ड में, तो क्या कुछ ऐसे विशेष प्रावधान इस विधेयक में दर्ज हैं जो इन विशेष परिस्थितियों वाले बच्चों के जन्म के रिकॉर्ड को भी सही तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे, तो और उनको किस तरह से फायदा होगा इससे?
0: जी, 2023 में जब 1969 की जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ एक्ट की अमेंडमेंट लाए गए थे, उसी में ये सारे केसेस को बड़े विस्तार रूप से देखा गया है, और उसका लिए किस तरीके से उसको एप्लीकेशन होगा वो भी दिया गया। अब जो आया है इस कल राज्यसभा में पारित किया, इसमें विशेषकर ये जो आपकी दाखला में या एप्लीकेशन में जो डिलेज होते हैं इसको देखने के लिए, जी आप अगर ये 30 दिन तक डिले होते तो ये डायरेक्ट लोकल अथॉरिटी इसको रजिस्टर कर सकता है प्रिस्क्राइबर, अगर 30 दिन से एक साल है तब फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और लेट फी के साथ होगा, एक साल से दो साल होता है तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजन मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो नए प्रोविजन आए कि एक साल और दो साल से ज्यादा एक्सीडिंग जो डिलेज आए, तो उसमें तो ये इसमें ऐसा कोई नया कुछ नहीं लाया गया, जो 23 में संशोधन किया था, जहां तक आपने जो विशेष वर्ग के कुछ केसेस उदाहरण बताए उनके लिए ऐसा, इसमें कोई कल की उसमें कुछ नहीं है।
1: एक अंत में मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से इस तरह के विधेयक संशोधित रूप में हमारे सामने आते हैं सामने, उनकी जरूरत समय के साथ होनी कितनी जरूरी है कि उसमें परिवर्तन आए? अगर हम जन्म और मृत्यु संशोधन विधेयक का ही उदाहरण लें, तो जो टारगेटेड डिलीवरी है योजनाओं की, या जो कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच है, या जो सही मानक है लोगों तक पहुंचाने, उनमें सरकार को कितनी और प्रशासन को कितनी मदद मिलती है जब एक परिपक्व और संशोधित समय के साथ विधेयक हमारे सामने आता है?
0: जरूर, ये बहुत फायदा होता है, इसीलिए क्योंकि हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड्स पहले से उसको उस इंटीग्रिटी से किया नहीं गया है, जैसा बहुत सारे बांग्लादेश से भी आए माइग्रेंट्स लोगों को भी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, तो हमें किसी एक समय इन चीज को साफ करना था। अब ये जो प्रयास हुए है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ में, जब बर्थ्स रजिस्ट्रेशन है तो उसी में ये क्लैरिटी रहेंगे कि जो सही है वही आपकी रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो साफ करने का जो काम प्रयास था ये बहुत सही समय पे हुआ है, क्योंकि इससे भी आगे आप आज हम आधार के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत सारे कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अभी वो सिस्टम ऑलमोस्ट क्लीन कर चुके हैं, लेकिन आगे भी इस तरीके से और आगे इसको कैसा और सख्त किया जाए कि किसी तरीके से फ्रॉडुलेंट एंट्रीज ना आए।

0: सिस्टम में, इसीलिए समय समय पर संशोधन लाना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आजकल जो नेटवर्क्स होते हैं और आपकी वेरिफिकेशन की सुविधा भी बहुत बढ़ चुका है, सो मुझे लगता है ये बेसिक करेक्शन जो इस संशोधन से आएगा, इससे बहुत सारे आगे फायदा होगा।
1: जी बहुत धन्यवाद सुमिबल जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर आपने विभिन्न आयामों पर हमारे साथ अपना विश्लेषण रखा, बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

जी हाँ, मेरे मित्रों, मेरे सखाओ, मेरे सुधे श्रोताओ, आकाशवाणी दिल्ली का यह है एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। और जो वक्त समय हुआ है वो हुआ है 7:25:37। और तमाम हमारे सुधे श्रोता ये जानते हैं कि ये वक्त है सांझ ढले प्रोग्राम का।

जी हाँ, कदम के निशान बनाते हुए चल रहे हैं देवानंद साहब। और आवाज थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म ज्वेल थीफ का गीत आपने सुना। संगीत बद्दे से किया था एसडी बर्मन साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रोग्राम चल रहा है सांझ ढले, जिसमें आज आपके साथ हूँ मैं सुनील।

0: राजेंद्र कुमार अभिनीत ये फिल्म झुक गया आसमान 1968 में आई थी साहब, और इस गीत को गाया था रफी साहब ने। फिल्म झुक गया आसमान को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। और इससे पहले कि हम अगले गीत की ओर बढ़ें, आपको सुनवाते हैं कुछ संदेश और मिलते हैं कुछ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
3: घर। नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल प्रोग्राम चल रहा है सांझ ढले, और प्रोग्राम के साथ साथ बताते आपको चलें कि वक्त 7:35 हो गया है, और आज के इस प्रोग्राम में आपके सफर में आपका हम सफर हूँ मैं सुनील सयाल।

जी हाँ, छमछमा छमछम इस गीत को जो आपने सुना अभी, हो सकता है आज की जो पीढ़ी है उसके लिए ये कुछ नया गीत हो, या फिर ये संगीत इसमें जो था वो कुछ नयापन उन्हें लगे। लेकिन एक दौर था जब इस आवाज़ के लोग कायल हुआ करते थे, और ये आवाज़ थी शमशाद बेगम की। बहार फिल्म 1951 में आई थी, जिससे आपने अभी ये गीत सुना। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz प्रोग्राम चल रहा।

ब्लैक एंड व्हाइट एरा की इस फिल्म हरियाली और रास्ता के इस गीत के साथ ही प्रोग्राम को संपन्न करने की दीजिए अनुमति। 1962 में आई थी ये फिल्म। लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना हरियाली और रास्ता फिल्म से गीत। इस छोटे से अंतराल के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल के मसौदे पर विचार किया गया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी की समृद्ध विरासत और कला को प्रदर्शित करने के तरीकों पर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रामजस कॉलेज में शोध फाउंडेशन द्वारा आयोजित अन्वेषण 2.0 के समापन सत्र को संबोधित किया। लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने रोहिणी सेक्टर 20 और 21 की सीवर व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या

0: 30 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 के मसौदे पर विचार किया गया। इसका उद्देश्य राजधानी को देश में उद्यम स्थापित करने और संचालित करने की दिशा में व्यापक सुधार लागू करना है। इसके माध्यम से कारोबार शुरू करने और संचालित करने से जुड़ी मौजूदा जटिल प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा प्रशासन स्थापित करना है जहां उद्यमियों और निवेशकों का समय सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने में नहीं बल्कि अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में लगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अब इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक ही ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकांश व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा भवन निर्माण स्वीकृति, फैक्ट्री लाइसेंस, फायर क्लियरेंस, पानी, सीवर और बिजली कनेक्शन सहित अनेक सेवाएं इसी पोर्टल के माध्यम से तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कम जोखिम वाली गतिविधियों के लिए स्वयं प्रमाणन की व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं निर्धारित श्रेणियों के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा, भवन योजना स्वीकृति, प्रदूषण संबंधी अनुमति तथा लो टेंशन बिजली कनेक्शन जैसी प्रक्रियाएं स्वयं घोषणा के आधार पर पूरी की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि इससे छोटे, कम जोखिम वाले और कम खतरे वाले उद्यम बिना अनावश्यक देरी के अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जिन उद्यमियों का पहले से जीएसटी, एफएसएसएआई, एमएसएमईडी अधिनियम और लेबर कोड्स के तहत पंजीकरण है, उन्हें अलग से ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, ईटिंग हाउस लाइसेंस तथा दुकान और संस्थान के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इससे एक ही उद्देश्य के लिए कई प्रकार के लाइसेंस लेने की बाध्यता समाप्त होगी और कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी आवेदक से वह दस्तावेज या जानकारी दोबारा नहीं मांगेगी जो पहले से दिल्ली सरकार के किसी विभाग के पास उपलब्ध है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित कर रही है जिसमें मंजूरियां आसान हो, प्रक्रियाएं स्पष्ट हो, निर्णय तय समय सीमा के भीतर लिए जाएं और अनावश्यक अनुपालन की बाधाएं समाप्त हो। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में आयोजित जन सुनवाई के दौरान राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत योजना, संपत्ति नियमितीकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
3: मुख्यमंत्री ने सभी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई, समयबद्ध समाधान और प्रत्येक पात्र नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पेंशन से संबंधित शिकायतों की जांच कर पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने को भी कहा। इस अवसर पर महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। श्रीमती गुप्ता ने महिलाओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शांत कुमार।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी की समृद्ध विरासत, कला और अभिकल्पना परंपराओं को प्रदर्शित करने के तरीकों पर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहले से सफल तरीकों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। उपराज्यपाल ने बताया कि दिल्लीवासियों, कलाकारों और युवाओं के लिए ऐसे समावेशी मंच तैयार किए जाएं जो राजधानी की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने में अपना योगदान दें। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मॉनसून सत्र के दौरान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की दो रिपोर्ट तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से संबंधित एक रिपोर्ट अधिसूचना सदन के पटल पर रखी जाएगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रामजस कॉलेज में शोध फाउंडेशन द्वारा प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से आयोजित अन्वेषण 2.0 के समापन सत्र को संबोधित किया। इसके अंतर्गत रामजस कॉलेज के विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए 6 सप्ताह का समर इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। श्री सूद ने कहा कि अगली पीढ़ी को तैयार करने और भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को

0: मजबूत करने के लिए ऐसे मंचों को बढ़ावा देना जरूरी है। लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कैंप कार्यालय में रोहिणी सेक्टर 20 और 21 की सीवर व्यवस्था पर आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान, नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। श्री सिंह ने कहा कि राजधानी की डबल इंजन सरकार जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों के साथ साथ एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर्स की तैनाती को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सिंह ने कहा कि बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंदर इंद्राज सिंह ने बवाना में दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम द्वारा बनाए गए लाल फ्लैट्स का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से बात की और वहां की समस्याओं की जानकारी भी ली। दोनों नेताओं ने समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तर रेलवे ने दिल्ली मंडल में डफरिन ब्रिज तथा पुल मिठाई के नीचे स्थित ओवरहेड उपकरण के डेड जोन में विद्युत लोकोमोटिव के रुक जाने की लंबे समय से जारी परिचालन संबंधी समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया है। एक रिपोर्ट।
1: रेलवे ने बताया कि कई वर्षों से ये दोनों स्थान विशेष परिचालन चुनौती बने हुए थे। पुलों के नीचे सीमित हेडरूम के कारण इन स्थानों पर 50 मीटर से अधिक लंबे ओएचई डेड जोन बनाए गए थे। इन डेड जोन से गुजरते समय कई बार विद्युत लोकोमोटिव की विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती थी, जिससे वे बीच में ही रुक जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप ट्रेनों के संचालन में विलम्ब होता था और इन व्यस्त रेल मार्गों पर परिचालन प्रभावित होता था। उत्तर रेलवे ने कहा कि इस उपलब्धि से रेल परिचालन की विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर 22 अगस्त तक राखी डाक से भेजने के लिए विशेष व्यवस्था की है। संचार मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली के 34 प्रमुख डाकघरों के साथ साथ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर राखी डाक के लिए विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। डाक विभाग ने लोगों से राखी और अन्य जरूरी सामान समय पर तथा सुरक्षित ढंग से पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट सेवाओं का उपयोग करने की भी अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नागरिक अपनी यात्रा के दौरान तय 15 दिन की समय सीमा से ज्यादा समय तक राजधानी के होटल में रुके थे। विदेशी नागरिकों के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, 11 डबल एंट्री वीजा और 14 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि विदेशी पंजीकरण कार्यालय के जरिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। विदेशी पंजीकरण कार्यालय ने उनके आने जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं और देश से वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी 11 लोगों को हिरासत केंद्र में भेजा गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 से पहले दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज एक अंतरराज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग तथा समन्वय को मजबूत करना और स्वतंत्रता दिवस समारोह को बिना किसी घटना के संपन्न कराने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने की। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक भयावह योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल जिन दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, उन्होंने जांच के दौरान यह खुलासा किया कि वे दिल्ली में प्रदर्शन स्थल पर पेट्रोल बम से हमला करने के इरादे से आए थे। हालांकि वहां भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज सवेरे एक हादसे में हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे तीन युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक अलीगढ़ के रहने वाले थे। उनकी दोपहिया वाहन में किसी तेज गति के वाहन ने टक्कर मार दी थी और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों के परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई है। मामले की जांच जारी है। शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद ने जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह और अस्मिता डी से मुलाकात की। दोनों खिलाड़ियों ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। श्री सूद ने कहा कि केंद्र सरकार खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और भरोसा जताया कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया में आ रहे उन दावों का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड वाले विद्यार्थियों को मुफ्त विद्युत साइकिल देने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी और डिजिटली जोड़ तोड़ है। प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। पीआईबी ने लोगों से ऐसे संदिग्ध दावों की सरकार को सूचना देने को भी कहा है। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। आज का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान कल 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल के मसौदे पर विचार किया गया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी की समृद्ध विरासत और कला को प्रदर्शित करने के तरीकों पर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रामजस कॉलेज में शोध फाउंडेशन द्वारा आयोजित अन्वेषण 2.0 के समापन सत्र को संबोधित किया। लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने रोहिणी सेक्टर 20 और 21 की सीवर व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। अब आप सर फिरोजी से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारियों की सेवा को एकाएक समाप्त

एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तनखा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंता कायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्ज्वल निकम आदि ने भाग लिया। करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के अनवारुल हक।
अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्य

शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलना देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल है, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंक कार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एन के प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे, हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका, हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया।
सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितने स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में 7 खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रज्ञानंदा सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष पर। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप अमेरिका के यूजीन में आज से शुरू। और केंद्रीय मंत्री HD कुमार स्वामी ने राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक विजेता शिल्पा शायला को सम्मानित किया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां आज का दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला रहा। अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो कुछ वर्ग में खिलाड़ियों हार के साथ वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज कई भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कई बैडमिंटन खिलाड़ियों का सफर आज समाप्त हो गया। प्रतियोगिता से जुड़े आज के मुकाबलों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी निखिल। निखिल, आज अलग अलग वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्धा किया, कुछ खिलाड़ियों को अगले दौर में जगह मिली तो कई प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कैसा रहा खिलाड़ियों का आज का प्रदर्शन?
1: प्रशांत, आज की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। कुछ वर्ग में खिलाड़ियों ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया तो कई में खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। और अगर प्रशांत महिला सिंगल्स की हम बात करें तो कुल 7 खिलाड़ियों ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी शर्मा भारत का नेतृत्व कर रही थी, उन्होंने भी अगले दौर में जगह बना ली है। वहीं अगर महिला डबल्स की हम बात करते हैं तो आज एक मुकाबला खेला गया जिसमें खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की और अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं मिक्स डबल्स के 2 मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया, जिसमें से एक में तो हमें जीत मिली और दूसरे में हार कर सफर समाप्त हो गया है। और पुरुष डबल्स के एकमात्र मुकाबले में आज भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कल भारतीय डबल्स भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज करके इस वर्ग में उम्मीदें कायम रखी हैं। लेकिन प्रशांत, आपको मैं बताना चाहूंगा कि पुरुष सिंगल्स में आज निराशा ही हाथ लगी, सभी 6 खिलाड़ी हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं।
0: जैसा निखिल आपने बताया कि महिला सिंगल्स में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया, तो किन खिलाड़ियों ने आज बाजी मारी है?
1: मैं आपको बताना चाहूंगा प्रशांत कि हाल ही में ताइपे ओपन विजेता बनी तन्वी शर्मा ने आज भी बड़ा शानदार प्रदर्शन किया। उनका खेल देखने लायक था। तन्वी ने सीधे गेम में युआन आंशी को 21-16 और 21-15 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया है और उनका ये खेल दिखाता है कि किस तरह से वो लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वहीं अनमोल खरब ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हांगकांग की ली सिन यान को 16-21, 21-17, 21-12 से हराया। मानसी सिंह ने भी कोरिया की किम जो युन को 14-21, 21-19, 21-9 से हराया। वहीं रक्षिता श्री रामराज ने कोरिया की ये यौन यू को 22-24, 21-12, 21-13 से

0: पराजित किया। उधर अश्विता चालिया ने भी एक तरफा मुकाबले में जापान की हिरामोतो को 22-20 21-18 से हराया। श्रेयांशी वाली शेट्टी ने वाई पी पाई को 21-15 21-14 से हराया। और आपको हम ये भी बता दें कि ईशा रानी बरुआ ने कोरिया की ली सो युल को 21-18 15 21 और 21-7 से हरा कर अगले दौर में प्रवेश किया है। हालांकि आकर्षी कश्यप मिनजी किमसे और तान्या हेमनाथ जापान की हिना आकेचाई से हार कर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं।
1: जी निखिल, महिला सिंगल्स वर्ग के बारे में आपने बताया, लेकिन पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिक्स डबल्स में क्या कुछ रहा आज खिलाड़ियों का प्रदर्शन?
0: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर पुरुष डबल्स की बात करें तो भारत को एकमात्र मुकाबले में हार मिली है। भारत के विश्व तेज गोबरू और भार्गव राम एरिगेला की भारतीय जोड़ी को चीन की आरुणताई और अरुण चिया ने 21-17 21-15 से हराया। इस वर्ग में सभी की निगाहें कल होने वाले कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय के मुकाबले पर होंगे। वहीं महिला डबल्स के बारे में भी हम बता दें कि आज एक मुकाबला खेला गया जिसमें भारतीय जोड़ी को जीत मिली थी। सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर ने 32वें राउंड में स्थानीय दावेदार जी सनबैंग और ह्यून जी जांग को 13-21 21-15 21-12 से हराया। उधर मिक्स्ड डबल्स की बात करें तो भारत को आज एक जीत और एक हार मिली है। ईशान भटनागर ने अपने ही देश के सात्विक रेड्डी कन्नापुरम और राधिका शर्मा को 22 21-10 21-15 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया है। वहीं एक अन्य मुकाबले में मलेशिया की लू बिंग कुन और नोराकिला मायसारा ने ध्रुव रावत और मनीषा को 18-21 21-14 21-17 से हरा दिया था।
1: आपने सभी वर्ग की तो बात कर ली निखिल, लेकिन पुरुष सिंगल्स में खिलाड़ियों ने आज कैसा प्रदर्शन किया है?
0: पुरुष सिंगल्स की अगर हम बात करें तो निराशा हाथ लगी है। पुरुष सिंगल्स के सभी 6 खिलाड़ी हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। बड़ी उम्मीदें थी किदांबी श्रीकांत से, तो उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, थारुण मन्नेपल्ली, सनी दयानंद और मिथुन मंजुनाथ की हार के साथ ही पुरुष सिंगल्स में भारत की चुनौती अब समाप्त हो गई है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद निखिल इस विस्तृत जानकारी के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि अब जो बाकी खिलाड़ी बचे हैं इस प्रतियोगिता में वो अच्छा प्रदर्शन करें और देश का परचम लहराते रहें।
0: बिल्कुल।
1: उधर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी कंधे की चोट से उभर गए हैं और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत के मुख्य डबल्स कोच टैन किम हर ने इस बात की पुष्टि की है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: सात्विक साईराज रंकी रेड्डी कंधे की चोट से उभर गए हैं और चिराग शेट्टी के साथ मिलकर 17 अगस्त से होने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की चुनौती की अगुवाई करने को तैयार हैं। सात्विक की कंधे की चोट जुलाई में जापान ओपन के दौरान फिर उभर आई थी, जिस कारण सात्विक और चिराग को पुरुष डबल्स के पहले दौर के मुकाबले के बीच से हटना पड़ा। इस जोड़ी ने इसके बाद चीन ओपन से भी नाम वापस ले लिया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में दुनिया की 5वें नंबर की जोड़ी सात्विक और चिराग को भारत के लिए पदक का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। पहले दौर में बाई हासिल करने वाली ये 5वीं वरीय जोड़ी अपने अभियान की शुरुआत दूसरे दौर से करेगी। मलेशियाई कोच किम हर ने सात्विक की चोट से जुड़ी चिंताओं को दूर करते हुए कहा कि उनका कंधा लगभग पूरी तरह ठीक हो गया है और वो कोर्ट पर उतरने के लिए तैयार हैं। भारत के हरिहरन अमसा करुणन और MR अर्जुन की जोड़ी भी पुरुष युगल में चुनौती पेश करेगी और पहले दौर में आयरलैंड की जोड़ी से भिड़ेगी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और श्रोताओं, आपको बता दें कि बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप के बाद एशियाई खेल भी होने हैं। सात्विक और चिराग एशियाई खेलों में गत चैंपियन है और वे विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। उधर BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन 17 से 23 अगस्त तक इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में होगा। इस आयोजन के लिए हाल ही में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली स्टार भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु को 9वीं वरीयता दी गई है। 2022 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता स्वातिक चिराग की जोड़ी को 5वीं वरीयता मिली है। इस चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो सभी 5 कैटेगरी में भारत की 2-2 एंट्री है और 5 में से 4 कैटेगरी में कम से कम एक वरीयता वाली एंट्री है। सिंधु और सात्विक चिराग के अलावा पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन को पुरुष सिंगल्स में 14वीं वरीयता मिली है। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की मिक्स डबल जोड़ी को 15वीं वरीयता मिली है और खिलाड़ी 28 अप्रैल की अपनी वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुए। रैंकिंग के आधार पर भी इस चैंपियनशिप के लिए उनकी वरीयता तय की गई है।

0: और अब बैडमिंटन कोर्ट से चलते हैं शतरंज की ओर। सेंट लुइस में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता के रैपिड वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 में से 12 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उन्होंने इसके साथ ही वर्ष के अंत में होने वाले ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल में जगह बनाने की अपनी उम्मीदें भी कायम रखी है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: विश्व चैंपियनशिप 2026 की दौड़ से बाहर हो चुके प्रज्ञानंदा ने 9 दौर के रैपिड मुकाबलों में बेहतरीन तकनीक, सटीक चालों और जीत के जज्बे का परिचय दिया। हालांकि उन्हें 9वें और अंतिम दौर में नीदरलैंड्स के ग्रैंड मास्टर जॉर्डन वान फॉरेस्ट से हार का सामना करना पड़ा, फिर भी वो एक अंक की बढ़त के साथ शीर्ष पर बने रहे। उन्होंने उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव को पीछे छोड़ा, जो इस वर्ष विश्व चैंपियनशिप मुकाबले में डी गुकेश को चुनौती देंगे। प्रतियोगिता का परिणाम केवल रैपिड वर्ग से तय नहीं होगा, अब 18 ब्लिट्ज मुकाबले खेले जाएंगे, जिनके बाद कुल विजेता का फैसला होगा। प्रज्ञानंदा ने रैपिड वर्ग में 4 जीत, 4 ड्रॉ और 1 हार के साथ कुल 12 अंक जुटाए। अब उनका पूरा ध्यान 18 दौर के ब्लिट्ज मुकाबलों पर होगा, जहां प्रत्येक जीत के लिए 1 अंक मिलेगा। सिंदारोव 11 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि अमेरिका के वेस्ली सॉ 10 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इनके बाद अमरीकी लेनियर डोमिंगेज पेरेस और जर्मनी के विंसेंट कीमर 9 अंकों के साथ संयुक्त रूप से अगले स्थान पर हैं। 10 खिलाड़ियों की राउंड रॉबिन प्रतियोगिता के बाद प्रतिष्ठित सिंक फील्ड कप खेला जाएगा, जो क्लासिकल प्रारूप में आयोजित होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात एथलेटिक्स पर भी कर लेते हैं। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से अमेरिका के यूजीन में शुरू हो गई। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 23 पुरुषों और 13 महिलाओं की टीम की घोषणा की है, जो हेवर्ड फील्ड में 5 दिनों तक चलने वाले 18 ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगी। भारत ने इस प्रतियोगिता में 36 सदस्यीय दल भेजा है। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। सुनते हैं हमारे सहयोगी विशेष की ये रिपोर्ट।
2: अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की ओर से कई एथलीट इस सीजन में घरेलू स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने के बाद चैंपियनशिप में प्रवेश कर रहे हैं। भारत प्रिंट मध्यम दूरी की स्पर्धाओं, बाधा दौड़, कूद, थ्रो, रेस वॉक और रिले स्पर्धाओं में भाग लेगा। भारत की पुरुष टीम में मोहम्मद अशफाक और पीयूष राज 400 मीटर दौड़ तथा 400 मीटर मिक्स्ड रिले में चुनौती पेश करेंगे। वहीं वेंकट राम रेड्डी मोगाली और उविन आनंद 800 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे, जबकि अमित कुमार 400 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेंगे। बसंत और अम्बरीश कार्तियन ऊंची कूद में, शहनवाज खान और जितिन अर्जुनन रमन लंबी कूद में प्रतिस्पर्धा करेंगे। रोशन चंद्रशेखर और धनुष राज मनापट्टी ट्रिपल जंप में, निश्चय चक्का फेंक में चुनौती पेश करेंगे। भाला फेंक में आशीष यादव और धरणीधरन त्यागराजन अपना दमखम दिखाएंगे। 5000 मीटर रेस वॉक में नितिन गुप्ता, 4x400 मीटर रिले में अंशु रजक, आदित्य तात्या, निवेद कृष्ण ज्योति प्रकाश, नील रामराज, रुद्र सचिन शिंदे और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में रंजीत कुमार, सबीर सैयद, नकुल प्रभु हिस्सा लेंगे। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शॉटपुट F57 स्पर्धा में देश को कांस्य पदक दिलाने वाली पैरा एथलीट शिल्पा शायला को आज भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी ने सम्मानित किया। शिल्पा ने 7.26 मीटर दूर गोला फेंकते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। केंद्रीय मंत्री ने शिल्पा के साथ उनके कोच सत्यनारायण और पुष्पा निरंजन प्रसाद को भी सम्मानित किया। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए साझा की। उन्होंने लिखा, आज मैंने कर्नाटक की बेहतरीन पैरा एथलीट शिल्पा के शायला का स्वागत और सम्मान किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शिल्पा ने शर्मिला धनखड़ के साथ पोडियम फिनिश किया था। शर्मिला पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी रहीं। शर्मिला ने 9.81 मीटर के अपने बेस्ट प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पर कब्जा जमाया था। भारत ने 13 स्वर्ण समेत कुल 39 पदक जीते हैं। और अब जन्मदिन विशेष में आज बात उस भारतीय क्रिकेटर की जिन्होंने तेज गेंदबाजी, कोच और प्रशासक के रूप में अहम भूमिका निभाई। आज भारत के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद का जन्मदिन है। एक योद्धा की तरह क्रिकेट के मैदान में विपक्षी टीम से लड़ने वाले वेंकटेश प्रसाद संन्यास के बाद कोच और प्रशासक की भूमिका में सफल रहे। मौजूदा समय में वे कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वेंकटेश प्रसाद का जन्म 5 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में हुआ।

0: उन्होंने 1994 में 25 वर्ष की उम्र में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था। वेंकटेश प्रसाद ने 7 वर्ष के अपने करियर में 33 टेस्ट और 161 वनडे खेले। उन्होंने टेस्ट में 96 और वनडे में 196 विकेट लिए। वेंकटेश प्रसाद के करियर का सबसे दिलचस्प किस्सा पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, जो आज भी क्रिकेट इतिहास की चर्चित कहानियों में से एक मानी जाती है। इस मैच में वेंकटेश प्रसाद ने 10 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे।
1: Response from Amir Sohail is magnificent. He's down the track and really it's been a flat-batted tennis shot. Over covers for 4. Well, that's the answer. That's the best way you can answer a batsman. Venkatesh Prasad has clean bowled Amir Sohail. Sohail losing a bit of concentration, having a chat with the bowler and having his off stump pegged back next ball. 113 for 2 Pakistan.
2: Well, let's watch it here. It's a really terrible shot. And by losing his concentration, arguing with the bowler, now look what Pakistan has suffered.
0: वेंकटेश प्रसाद को स्पोर्ट्स कैन की टीम की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
5: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
4: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
6: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक

0: उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
2: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला। पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
3: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से

0: करने वाले थे, हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को आईएसआई द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
1: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बॉम्ब फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई आईएसआई के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी के एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ता गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
2: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव यहां एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई 2 दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95 रुपए और 13 पैसे पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित सात भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जरा कल्पना कीजिए, एक पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वर्षों तक पैसे जोड़े, एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंक में सुरक्षित समझ कर रखी, एक युवा ने अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह खाते में आते ही अपने सपनों की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक क्लिक और कुछ ही सेकेंड में सपने भी गायब और बैंक बैलेंस भी। आज अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं, वे आपकी जेब नहीं काटते, वे आपकी पहचान, आपका बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक वायरस नहीं है, उस तिजोरी का नाम है म्यूल अकाउंट्स, यानी वो कठपुतली बैंक खाते जिन्हें कभी बेकसूर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर तो कभी चंद रुपयों के लालच में किराए पर लेकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक SOP बनाने का निर्देश दिया है जो इन म्यूल अकाउंट सहित साइबर फ्रॉड को रोकने में कारगर साबित हों। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि SOP कैसी होगी, सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में किसी साइबर गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे, क्या सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी कुमार राणा जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
4: जी नमस्कार
2: शरद जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो यही होगा कि म्यूल अकाउंट्स, बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी से जुड़े हैं और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द पहली बार हो, आप बहुत ही व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में अगर लोगों को समझा पाएं कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं।
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं म्यूल अकाउंट क्या होता है। देखिए, म्यूल अकाउंट जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो व्यक्ति गलत इंटेंशन से पैसे किसी से वसूलना चाहता है, किसी को फ्रॉड द्वारा किसी से पैसे लेना चाहता है, कोई गलत जानकारी दे के पैसा लेना चाहता है, तो होता क्या है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में तो पूरा KYC किया जाता है। बैंक में आप कौन है, आपका आधार, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस वगैरह बैंक में सब रिकॉर्डेड होता है। तो यदि वो क्रिमिनल अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है तो लाजमी बात है उसका तो पकड़ा जाना लगभग तय हो जाता है। तो ऐसे में ये शातिर दिमाग क्या करते हैं कि ये किसी भोले भाले व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको कुछ पैसे का लालच देकर, उसको और लालच देके उसके अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे वसूल करने में। यानी कि म्यूल अकाउंट का मतलब है अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी भोले भाले इनोसेंट व्यक्ति को, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा, आपको बताइए अब जनधन खाता खोलने के बाद देश में तो ज्यादातर लोगों के अब बैंक अकाउंट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। किसी ने जाके कहा कि भाई आप अपना ऐसा करो, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और उसके बदले में कुछ उसकी परसेंटेज आप रख लेना। तो आप अनजाने में किसी साइबर क्रिमिनलियों की फ्रॉड करना चाहता है उसके एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो मैंने इसमें आनंद देखे हैं, वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। बाद में जब उनके सामने सारा कुछ आता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, FIR हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, साइबर डिपार्टमेंट तहकीकात करता है, तब पता लगता है ये तो हम किसी गलत चक्कर में फंस गए। तो म्यूल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट आपका पर करतूत किसी और की, और नाम आपका आगे आएगा अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें।
2: जी हाँ बिल्कुल, अश्विनी जी आपसे समझना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जैसे कई तरीकों से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि

0: साइबर फ्रॉड से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरह का खतरा है कि उच्चतम न्यायालय को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देना पड़ा?
1: जिस प्रकार से मैंने वो स्टडी किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा है SOP बनाने के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ने एक AI टूल भी जनरेट किया है म्यूल हंटर के नाम से, और उसने कुछ काम करना शुरू किया है म्यूल अकाउंट को डिटेक्ट करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन्स किसी ऐसे खाते में जिसमें बैलेंस नहीं है, बड़ा कुछ बैलेंस आ रहा है, उस तरह का शुरुआत किया है। लेकिन और भी जरूरत है, और उसमें मुझे लगता है SOP बनाने के साथ साथ बैंकों में जो खाते खोलने का जो सिस्टम है उसका ड्यू डिलीजेंस भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाते जो है वो कैसे भी खुल जाते हैं, जब ऐसे खुलते हैं तो वो आगे बिक जाते हैं। कोहली साहब ने भी ठीक कहा कि म्यूल अकाउंट वही है, और खाता खोलने के लिए आपको एक सिम चाहिए, और सिम भी आपको सड़क पर फर्जी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है। तो इससे ये दोनों अगर चीजें जो है हो जाए तो इससे कंट्रोल हो सकता है। और जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है तो उसके लिए हम बैंकों को सीधा सीधा नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अगर कोई उसमें फंस गया है और तैयार हो, और आजकल तो बैंक इंप्लाइज को भी बैंक इतना ट्रेन कर रहे हैं कि कोई आदमी आता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मनी निकाल रहा है या कोई टेंशन में है तो उसको जो है काउंसलिंग की जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस बैंकों ने बचाए हैं। तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है और जो लोगों का पैसा है उसको सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए बैंक का जो है और आगे टेक्नोलॉजी वाइज जो है अपग्रेड हो, ये बहुत जरूरत है।
0: शरद जी, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग साइबर ठगी का कभी ना कभी शिकार भी हुए होंगे। जो लोग इससे सतर्क होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं, सरकार ने 1930 का एक पोर्टल भी बनाया है जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके साथ साइबर ठगी हुई है तो शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके, यानी आपके पैसे आगे बढ़ने से रुक सके। शुरुआती पहल क्या करनी चाहिए? एक नागरिक जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, साइबर ठगी अगर उसके साथ हो गई, उस समय उसको शुरुआती घंटों में किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय उठाने चाहिए?
2: सबसे पहले तो इसमें आनंद ये है कि पहले कोशिश तो ये करें कि आप इस साइबर ठगी का शिकार ही ना हो। तो अब बहुत सारे लोग जो शिकार हुए हैं उन सब से आप बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों से बात करी पीछे, मुझे निरंतर मिलते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें उस समय पता होता तो हम शायद कोई पैसा ना ट्रांसफर करते, या जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, घंटों तक आप स्क्रीन के आगे आपको बैठाए रखा जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी फोटो हम उस पे डाल देंगे, हम AI से ये करके, दुनिया भर की धमकियां उसमें दी जाती है। अब अगर आप शिकार हो ही चुके हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि लोग क्या होता है शिकार होने के बाद, एक अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक, कि आप ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शिकार हो चुके हैं, तो जैसे ही पता लगे फौरन आपको, जैसे आपने नंबर दिया 1930, वहां पर आप कॉल करें, कॉल करके सारा मामला बताएं, आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो जो नियरेस्ट आपके कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, नहीं तो आप एक साधारण पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक साइबर का पुलिस का सेल है, और ये जरूरी नहीं कि जिस शहर में, जिस गांव में आप हो वहां पर ये सेल हो, ये तो जरूरी नहीं है, परंतु सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि आपके पास अगर कोई साइबर ठगी का कोई विक्टिम आता है, कोई व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आता है, तो आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन के पास, वहां का नंबर होता है, आप उससे संपर्क कराएं। बहुत जल्दी एक्ट करना, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि बहुत जल्दी एक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो शातिर दिमाग होते हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करते हैं, यानी बहुत सारे अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं, और ये पैसा एक जगह पहुंच के उसके बाद अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई अकाउंट्स में जाके बट जाता है, उसको लॉन्डर कर दिया जाता है पैसे को, जिससे कि अगर एक अकाउंट फ्रीज भी हो, एक अकाउंट पकड़ा भी जाए तो आप दूसरे अकाउंट तक हम पहुंच जाए, तीसरे अकाउंट पर। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं एक्ट करेंगे तो तब तक पैसे के लिए बाद में साइबर सेल को, पुलिस को उस पैसे को वापस लाने में, उस पैसे को रिकवर करने में और भी ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा, और मैं ये भी बता दूं साथ में चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं इस पैसे के रिकवरी के। इसलिए अगर आप देखें कि कोर्ट ने जो आनंद जो SOP जारी किया है, उस SOP में क्या क्या चीज है, आप देखिए अगर SOP को देखेंगे तो आपके सवाल का पार्टली यहां से भी जवाब निकल जाता है। पहले सब केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दीजिए। भाई वो तो साइबर में होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएंगे, अगर आपके यहाँ साइबर नहीं भी है तो आप जैसे ही आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए आप उसको साइबर सेल से कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कई बार कंप्लेंट नहीं लिखते, उनको कहा गया है कि आप इस कंप्लेंट को लिखेंगे भी, FIR भी करेंगे और आप जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने की भी चेष्टा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो आप साइबर सेल के पास जाइए, आप ये तो हमारा

0: थाना इसको देखता नहीं है वगैरह वगैरह। दूसरा इसमें देखिए आनंद समझना होगा कि इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा किस माध्यम से गया, यूपीआई से गया या किसी और ऐप के थ्रू गया, गया तो बैंक के माध्यम से, पैसा तो बैंक के माध्यम से जब भी आप पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंकिंग चैनल तो उसमें चाहिए चाहिए। तो बैंक्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के थ्रू निर्देश दिए हैं कि बैंक भी पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि ऐसे में बैंक क्या कहता है जी हमें क्या पता, वो तो आपने ट्रांजेक्शन किया होगा, आपने एक देने वाला कोई लेने वाला कोई, तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक का आ रहा है बैंक के पास तो बैंक को भी उसको पूरा ध्यान देना। दूसरा देखिए मामला कहां जाता है, अगर राज्यों की हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट तो सारा देखेगा नहीं, हर राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट्स को साथ में बोला गया है कि आप जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप पूरा सहयोग करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, उनको पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट्स को भेजेगा, हाई कोर्ट्स आगे लोअर कोर्ट्स इसको हम बोलते हैं उनको निर्देश देंगे कि इन मामलों को किस तरीके से जल्द निस्तारण करना है। उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज ये भी कहा गया आनंद के स्टेट वाइज बैंक वाइज रिपोर्ट्स निकाली जाएं बकायदा, जो कि कंप्लेंट को पूरी तरह से कम समय में सर्कुलेट कर दें, और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि बैंक को कंसल्ट करती है उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिससे जो बीच में जो इंटरमीडिएट्स, क्योंकि देखिए होता क्या है जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो लोग इसके पीड़ित हैं उन्होंने एक शिकायत करी कि जी हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो कहता है बैंक करेगा, बैंक कहता है नहीं इंटरमीडिएट करेगा, इंटरमीडिएट कहता है ऐप वाला करेगा, ऐप वाला कहता है पुलिस स्टेशन करेगा। तो ये जो लंबी चेन है इन सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक फेसलेस क्रिमिनल है आपके सामने, आपको उसका चेहरा नहीं मालूम है, तो आपको जब तक सारे के सारे विभाग एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त तरीके से काम नहीं करेंगे, यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये इस क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये एसओपी जो मैंने बताया, इस एसओपी के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई है, एक मुहिम लाई गई है कि चौतरफा उसको घेरा जाए कि ऐसा व्यक्ति बच के निकल ना पाए। आनंद
1: जी, अश्विनी जी आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद जी भी अपनी बात में उसका चर्चा कर रहे थे, जो 14C पोर्टल है या फिर E0FIR है और न्यू मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की जो चर्चा हो रही है, उससे पीड़ितों को कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
2: देखिए क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बहुत अच्छा नहीं है हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि साइबर थानों में जो लोग डिप्यूटेड हैं वो उस तरह से उन चीजों को निपटने के लिए उतने एक्सपर्टाइज नहीं है और वो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करते, लेकिन अब वो कहा गया है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक एक एफर्ट्स कर रहा था वो अभी तक हो जाए तो इसमें और लोगों को लाभ मिल सकता है, कि जो एक डिले, एक घंटे के डिले पेमेंट जो है का जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक का था कि अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट यूपीआई से हो रही है तो वो आप एक घंटे के बाद वो जो है वो ऑपरेटिव हो, मतलब आपने पैसा डाल दिया लेकिन वो एक घंटे के बाद उसके बीच में कभी आप रोक सकते हैं। तो बड़े अमाउंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए अगर इस प्रकार का जो सिस्टम आ जाता है तो उससे जो एक आदमी फंस गया है और उसको मुश्किल में और उसको समझ आता है तो वो उसको रोक सकता है। तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है लेकिन नीचे धरातल पर उतरने के लिए निश्चित रूप से बैंकों को, एक्सपर्ट्स को, रिजर्व बैंक को, इन सबको जो है मिलके, और साइबर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो थानों में भी वैसी पुलिस, ताकि और उसके कारण से ये निपटारा, नहीं तो हम नई नई चीजें बना, 1930 है, आप फोन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहां पर रिप्लाई मिला है, वो ऑल इंडिया एक लाइन है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर रिस्पांस जो है, जो वहां पुलिस है उसका उतना लोगों को नहीं होता, तो लोग एकदम से वो हो जाते हैं। और उसके साथ साथ लोग अगर 1930 के साथ साथ अपने बैंक को भी इमीडिएट कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर भी अपनी ट्रांजेक्शन को फर्दर वो रोक सकते हैं, और बैंक अगर कोशिश करता है तो जहां वो पैसा गया है उसको भी आगे रोका जा सकता है। ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, अभी वो है, लेकिन और फास्ट वो अगर होता है तो लोगों को उसका लाभ हो सकता है।
1: शरद जी, साइबर फ्रॉड का पैसा केवल भारत के भीतर नहीं घूमता जैसा आप भी बता रहे थे, बल्कि ये म्यूल अकाउंट से होते हुए क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और हवाला नेटवर्क के जरिए साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूरोप के कई देशों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक अर्थशास्त्री के नाते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के भरोसे पर इस इंटरनेशनल मनी ट्रेल और कैपिटल ड्रेन का क्या आप दूरगामी आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं?
0: देखिए आपने जो बात कही पहले उसमें हमें समझना होगा कि भारत में अगर रुपए में पैसा आपका कनेक्ट हुआ है तो उसको अगर आपको विदेश भेजना है तो अंटिल एंड अनलेस कि उस देश के साथ हम रुपी और उसकी करेंसी में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ है तो आप रुपी में तो भेज नहीं पाएंगे उसको। ये जनरली जो आप कह रहे हैं वहां होता है जहां पर आपका कोई क्रिमिनल विदेशी है या आपसे विदेशी मुद्रा में कह रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर दीजिए। उसके लिए डॉलर किसी आम आदमी को या कोई और करेंसी किसी आम आदमी को, यूरो है, पाउंड है, किसी आम आदमी के लिए ऐसे आसानी से लेना संभव नहीं है। उसके लिए बैंक में एक A2 फॉर्म होता है, आपको पर्पस बताना होता है आप डॉलर क्यों इशू कराना चाहते हैं। और मैं जो जिसपे ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहा था आनंद आपकी इजाजत से, वो था कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और कुछ लोग जो इसका शिकार हुए थे, जिनको दिक्कतें आई, जो पीछे शिकार हुए हैं, उन्होंने 3-4 कॉमन जो समस्याएं निकल के आई जिसकी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी कि जब पुलिस स्टेशन जाके आप FIR कराते हैं, जब हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं तो FIR करने में डिले होती है, इसके बारे में मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया। दूसरा होता है कि जैसे ही पता लगता है, और मान लीजिए पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं, तो तुरंत निर्देश दिए जाने चाहिए उस अकाउंट को फ्रीज करने के। अब ये तो म्यूल अकाउंट है, यानी कि ये अकाउंट तो किसी दूसरे व्यक्ति का है, अब उस व्यक्ति का उसने किसी और के लिए ये काम किया, यानी किसी और को अपने अकाउंट को बेच दिया या अपने अकाउंट को किराए पे दे दिया या किसी लालच में आके किया, तो उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो फ्रॉड किया नहीं है, वो तो शिकार हुआ है लालच का या शिकार हुआ है किसी और के चक्कर में। तो अब इसमें क्या है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में, वो मुझे लगता है बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से पुलिस के इंस्ट्रक्शन आएंगे, बैंक तब फ्रीज करेगा, बिना उसके तो फ्रीज करेगा नहीं बैंक। तो इसमें स्पीड करने की जरूरत है। दूसरा, एक दफे अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको टाइमली हियरिंग्स करके अनफ्रीज करने की भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पहले से मान लीजिए कुछ पैसे उस बैंक में पड़े हों। इसके अलावा ये व्यक्ति जो पैसे की ट्रांजैक्शन कर रहा है, जिसने उसको म्यूल अकाउंट बनाया है, वो व्यक्ति अपने पैसे यूज कर रहा है पर उसके पैसे उसमें ऑलरेडी पड़े हुए, अब उसका तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसके जो पैसे पड़े थे वो भी फ्रीज हो गया, या उसको कल को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी तो उसका अकाउंट फ्रीज पड़ा। तो मुझे लगता है टाइमली हियरिंग करके उसको डीफ्रीज करना भी जरूरी। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे सामने आई आनंद, जो लोगों से मैंने जब बात करी, कि रिकवरी रेट बहुत कम है। मतलब जो फ्रॉड, मान लीजिए मैं मानता हूं 1,00,000 रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है कुल, मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, तो 1,00,000 रुपए में मान लीजिए 8 व्यक्ति शामिल हैं, 12,000-12,500 इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो रिकवरी रेट बहुत पुअर है। उसमें से मात्र 5-10,000 रुपए, 5%-10% रिकवरी हो पाती है। और उस रिकवरी रेट कम होने का कारण जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन विभिन्न, अब एजेंसीज कौन सी हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुननी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन हो गया, जहां पहले रिकॉर्ड करेंगे, जहां पहले रिपोर्ट करेंगे 1930 पे कर रहे हैं तो वहां ठीक है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो आपको साइबर सेल से कनेक्ट करें वहां, बैंक दूसरी एजेंसी हो गई। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करें, कई दफे ऐसा होता है कुछ खरीद बेच लोग कर रहे होते हैं, आपको कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहा है किसी कंपनी का नाम देके कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है आप पहले पेमेंट कर दीजिए, या कोई आप सर्विस ले रहे हैं तो किसी कंपनी का नाम लेके सर्विस की जा रही है, तो उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जितनी इसमें जितनी जानकारी काम आती है आनंद, उससे ज्यादा अंग्रेजी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं समझता हूं जितनी जानकारी आज इस शो के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कोशिश तो करें कि आप इसका शिकार ना हो। और जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में आप अखबार में भी इश्तेहार आते हैं, आकाशवाणी इसको लगातार चलाता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आपको चौकन्ना रहना है। मुझे लगता है लोगों का चौकन्नापन सबसे ज्यादा कारगर है, और अब हो गया है तो उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का फायदा आनंद जो मुझे नजर आता है कि ये एजेंसी अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने लाने को बोला है, कोई नई एजेंसी नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, परंतु इन एजेंसीज को आपस में तालमेल जो है उससे काफी हद तक ये रिकवरी 50-60% तक जा सकती है, अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि पूरे संगठित तरीके से ये सारी की सारी एजेंसीज काम करें।
1: जी हाँ, रिकवरी से जुड़े अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया सरकार की तरफ से, और इसके माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित राशि को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाता है। 31 जनवरी 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 24,65,000 से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़े अभी भी बहुत कम है जैसा कि शरद जी बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपसे दो व्यवहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले कि जब बैंकों का सिस्टम इतना मजबूत है, अगर मैं या कोई भी इस देश का नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवाने जाता है तो KYC की सुविधा उपलब्ध होती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, EKYC भी होता है, इन सब के बावजूद म्यूल अकाउंट्स बड़ी तादाद में खुलना, क्या बैंकों के जो संस्थागत ढांचे में कोई कमी है? और दूसरी बात जिस तरफ शरद जी इशारा कर रहे थे कि साइबर ठगी से बचने

0: की जरूरत है? आज के आधुनिक दौर में जब तकनीक की भरमार है, किन बातों का ध्यान रखा जाए?
1: बिल्कुल, मैं दो बातें बताऊंगा कि खाता खुलने के लिए क्या चाहिए। आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको एक सिम चाहिए, एक नंबर चाहिए, फ्रॉड करने के लिए भी यही चाहिए। सिम आपको पटरी पे मिल जाता है, जब तक उसको ड्यू डिलिजेंस के साथ, सख्ती के साथ वो नहीं इश्यू होगा, ये काम होते रहेंगे। दूसरा, खाता खोलने के लिए भी बैंकों पर इतना दबाव रहता है कि टारगेट्स पूरे करके आप इतने खाते खोलो, और फिर कई बार वो खाते प्राइवेट एजेंट्स के थ्रू खोल जाते हैं। बीसी मॉडल है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, उसमें ज्यादातर लोगों को वो गुमराह करके उनके खाता खोल लेते हैं, और बाद में उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम खाता खुल गया और खाता कहीं और भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिम इशू और खाता खोलना, ये बहुत ड्यू डिलिजेंस के साथ, सख्ती के साथ इसके ऊपर खुलने चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि बचने के लिए, क्या होता है कि हम ट्रैप कहां होते हैं, हम लालच में ट्रैप होते हैं। सोशल मीडिया पर इतने तरह के प्रलोभन आते हैं कि हम फटाक से उसमें फंस जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट समझ सकते हैं कि आपके पास फोन आया, आपको उन्होंने वो किया, लेकिन यहां तो हम खुद ही फंस रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी एड आती हैं, हमें सोचना होगा कि ये हमें क्यों फ्री दे रहा है, या हमें ये क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है, मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, ये हमें सस्ता, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। या किसी ने हमें रेस्टोरेंट में, हम खाना खाने के अगले दिन फोन आ गया कि भाई आपको फ्री जो है एक और डिनर या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो वो क्यों? यानी वो अगर हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग के इसको खोल के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर टक टक टक टक करते जाएंगे तो हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो बचना है, और दूसरा, सरकार को इस खाते को खोलने और सिम को इशू करने के लिए जब तक सख्ती नहीं होगी, आप इन चीजों को नहीं रोक सकते।
0: शरद जी, जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं या इससे जुड़े रोकथाम की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। पहले के जमाने में जो पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, उसके मुकाबले जो एआई के इस्तेमाल से अब डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एआई दोनों ही तरीकों में इस्तेमाल हो रहा है, पहली तो साइबर ठगी में और दूसरा उसके बचाव में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में दोनों तरफ से एआई की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप?
2: देखिए, अगर हम एआई की भूमिका पहले उस तरफ से देखें कि क्या हम ठगी से बच सकते हैं, मुझे लगता है ज्यादा जरूरी वो है। तो एआई के अभी टूल्स आप बैंक तो लगा सकता है, पर एक किसी निजी व्यक्ति के लिए ये टूल लगाना कि ये असली है नकली है, क्योंकि एआई में भी आपके सामने जो शख्सियत आती है, क्योंकि फेसलेस काम होता है, ज्यादातर तो फेसलेस होता है, बहुत कठिन होगा। और इसमें मैं अभी जो अश्विनी ने बात कही, मैं आपकी इजाजत से उसमें जोड़ना चाहूंगा, ये आपके सवाल से भी बात जुड़ी हुई है। जब मैंने प्रिवेंशन की बात करी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप कोशिश करें कि आप इसमें फंसे ना। अब देखिए, हम म्यूल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने म्यूल अकाउंट खुलवाया है उसकी तो ड्यू डिलिजेंस पूरी है, उसने अपना आधार दिया है, उसने अपना पैन दिया है, उसके पास फोन नंबर भी, सिम कार्ड, जैसे अश्विनी पटरी वाले बता रहे थे, उसके पास पटरी वाला नहीं, उसने बकायदा एक ऑथराइज्ड सेंटर से जाके सिम लिया है, परंतु अकाउंट खुलवा लिया, अब बाद में वो लालच में आ गया। तो मैं यहाँ पर जो बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूँ, जो लोग हमको सुन रहे हैं, आकाशवाणी की पहुंच तो पूरी देश में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं ये मेरे साथ बीता हुआ है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट अभी खुलवाया है मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे पास कोई फोन आया है कि आपको हम 10,000 रुपए कमीशन देंगे, आपका तो स्टूडेंट का अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप हमसे 10,000 रुपए महीने के लेते रहिए। तो स्टूडेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था, वो एक मिनट में मान जाता, उसके बाद वो तो उसके घर पे बात हुई, फिर उनका पेरेंट्स मुझे जानते थे, मेरे से बात हुई, तो हमने उसको मना कर दिया। आपको शक हो जाना चाहिए, जैसे ही कोई व्यक्ति, अब ये मेन बात है, सुनने वाली बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये कहे, या कोई दूसरी तरफ से एआई टूल आपको ये कह रहा है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें पैसे आया करेंगे और इसके लिए अलग से अकाउंट होगा, तो यहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हम क्योंकि यहां पर म्यूल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं आनंद, तो ये बात श्रोताओं के लिए जाननी बहुत जरूरी है। जिसने अकाउंट खुलवाया है वो इनोसेंट है, उसको उस समय जब अकाउंट खुलवाया था तब उसके सामने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उसने अपने अकाउंट को बेचा या किराए पे दिया। आपका अकाउंट ना तो किराए पे देने की चीज है, आपका अकाउंट ना बेचने की चीज है, आपके अकाउंट केवल आपके पैसे आपके ट्रांजैक्शंस के लिए है किसी भी थर्ड पार्टी को। ये तो वैसे भी कल को मान लीजिए साइबर फ्रॉड नहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में वैसे आपकी जानकारी से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है वो पैसे का सोर्स जो है वो क्रिमिनल हो, तो अगर क्रिमिनल होता है तो अगर वो व्यक्ति कल को जेल जाता है तो आप तो उसके पार्टनर माने

0: रहेंगे उसमें, जो कि अमूमन होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को पहले तो किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। कोई लालच दे आपको कि आपके हम इतने पैसे देंगे, आप अपना अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दीजिए, कितने भी पैसे ऑफर करे, मुझे लगता है उस व्यक्ति को, अनलेस कि वो आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके घर का माता पिता है, भाई बहन है, तो अलग बात है। पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कर रहा है, अनजान क्या, मैं कहता हूं अगर दूर की जान पहचान का भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट में किए गए हर जमा और हर विड्रॉल के लिए जिम्मेवार पूरी तरह से आप होंगे। कल को वो व्यक्ति अगर फंसता है तो आप उसके साथ फंसते हैं। यू बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आप उसके साझीदार बन जाते हैं उस अवैध गतिविधि में। आनंद
1: जी, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खातों का गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा होगा, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये आरबीआई को एसओपी बनाने को कहा है, और उनको अगर बहुत बाद में पता चला कि उनका अकाउंट एक तरीके से म्यूल अकाउंट है या उस अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो बैंक को बताएं या पुलिस में जाकर बताएं, लेकिन उनके मन में झिझक है कि ऐसा करने से वो भी उस जांच के दायरे में आ जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
2: नहीं नहीं बिल्कुल, आपके खाते में कोई पैसा आया है और आपको पता है कि ये सोर्स इसका जो है मेरे लिए नहीं है, ये मनी ना मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी ट्रांसफर नहीं किया, ना मेरी पेंशन है, सैलरी है, कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उसको ना तो उस व्यक्ति द्वारा फोन करने पर वापस करना चाहिए और उसको कहना चाहिए आप अपने बैंक के थ्रू ही इसको जो है रिवर्स करवाएं, और अपने बैंक को बता देना चाहिए कि दिस मनी डजंट बिलोंग टू मी, तो आप इसको जो है अपना वो कर लीजिए। क्योंकि बाद में जब वो, जैसे कोहली जी कह रहे थे कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मनी जो उस ट्रेल में थी वो आपके अकाउंट में आई है, तो आपका अकाउंट भी सीज हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए पहले ही आपको वो करना चाहिए। और ऐसे केस में जहां आपकी गलती नहीं है, आपके खाते में पैसा कोई डाल दिया गया है, और उसके लिए भी कोर्ट ने पहले भी कहा है, बार बार कहता है कि जितना वो ट्रांजेक्शन आई है उस खाते को ही फ्रीज बैंक करे, बाकी उसके खाते को ऊपर जो है वो फ्रीज ना लगाए, ताकि उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि वो तो कल्प्रिट नहीं है, वो तो इनोसेंट है और किसी ने उसके खाते में डाला है। तो इसलिए अपने खाते को रेगुलर हम देखते रहें, और जो हमने फोन नंबर दे रखा है उस पर भी देखते रहें कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो हम बैंक से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो इस तरह के लोग रहते हैं वो बैंक में मिलकर या कुछ भी करके जो है आपका मोबाइल नंबर जो वहाँ फीड है उसको भी चेंज करवा देते हैं, ताकि कोई ट्रांजेक्शन वो करते हैं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती। तो इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी चीजों को टटोलते रहे।
1: शरद जी, कार्यक्रम में समय नहीं है, आकाशवाणी जन जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है, साइबर ठगी से बचने के लिए आप लोगों को जागरूक रहने के लिए संक्षेप में क्या संदेश देंगे?
0: बस मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि ये जो म्यूल अकाउंट है ये इसी प्रकार से होता है कि एक जगह जैसे बैंक में रॉबरी होती है, बैंक को लूटा जाता है, उसके लिए जैसे कार इस्तेमाल की जाती है, तो बैंक को लूटने के लिए जैसे कार है, ऐसे ही म्यूल अकाउंट आपका समझ लीजिए लूटे जाने का एक साधन बन जाता है। सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, यही सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन है, और अगर हो भी जाए तो घबराइए नहीं, जो तरीके बताए गए हैं कार्यक्रम में उनको फॉलो करिए, और आपका पैसा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन की वजह से और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे अवश्य वापस आएगा।
1: आज की चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोशिशें नहीं, वो न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र, न पेशा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक छात्र है, किसान, सैनिक, व्यापारी या कोई बुजुर्ग, उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी एक गलती। याद रखिए, दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी भी उस समय बेकार हो जाती है जब उसकी चाबी हम खुद किसी और को सौंप देते हैं। डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ पासवर्ड नहीं, जागरूकता है। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा है। आज अगर हम अपने बैंक खाते, अपने डेटा और अपनी डिजिटल पहचान की रक्षा करने सीख जाएं, तो न केवल अपनी मेहनत की कमाई बचाएंगे, बल्कि एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सशक्त डिजिटल भारत के निर्माण में अपनी शानदार भूमिका भी निभाएंगे। शरद जी आपका और अश्विनी जी आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद,
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR

0: IR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
3: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
2: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्य प्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्य प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
4: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
2: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मुंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेदों को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। तथाकथित यौम इस्तेसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब

पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लूर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्रों में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डी फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। चीन ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी आर्थिक कदमों की घोषणा की, जिसमें अमेरिका को ड्रोन निर्यात पर नियंत्रण भी शामिल। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौमे इस्तेहाद साल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा झूठ फैलाने के ये हताश प्रयास केवल मानवाधिकारों के अपने दयनीय रिकॉर्ड और आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में उसकी स्थिति से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान हटाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वर्तमान में जम्मू कश्मीर में मौलिक अधिकारों के क्रूर दमन का साक्षी है। बलोच वॉयस एसोसिएशन बीवीए ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र से पहले एक रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान प्रांत में मानवाधिकारों की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया है। 17 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बलूचिस्तान का संघर्ष राजनीतिक प्रकृति का है और लंबे समय से कथित उपेक्षा, आर्थिक शोषण और मानवाधिकार उल्लंघनों के कारण वहां असंतोष बढ़ा है। रिपोर्ट में जबरन लोगों को गायब किए जाने, न्यायेतर हत्याओं, नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक और असहमति की आवाज दबाने के आरोप लगाए गए हैं। इसमें पाकिस्तान के जबरन गुमशुदगी मामलों की जांच आयोग और मानवाधिकार आयोग की रिपोर्टों का भी हवाला दिया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज श्रीलंका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर दृष्टिकोण के अंतर्गत श्रीलंका के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। विदेश सचिव के रूप में श्रीलंका की ये उनकी पहली यात्रा थी। विदेश सचिव ने इस यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, प्रधानमंत्री डॉ हरणी अमरासुरिया और विदेश मंत्री विजयथा हेरात से मुलाकात की। उन्होंने विदेश मामलों, विदेश रोजगार और पर्यटन सचिव अरुणी रणराजा से भी बातचीत की। विदेश सचिव ने विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा से भी मुलाकात की तथा श्रीलंकाई तमिल और भारतीय मूल के तमिल समुदाय के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय मुद्दों और परियोजनाओं के संबंध में चल रहे सहयोग की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने चक्रवात दितवाह के बाद घोषित 45 करोड़ डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज सहित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने रेलवे परियोजनाओं के लिए 25 करोड़ डॉलर तथा पशुधन और अन्य प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं के लिए 10 करोड़ डॉलर के भारतीय रुपये में दिए जाने वाले 2 ऋणों के संबंध में हुए समझौते का स्वागत किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति की उपस्थिति में श्रीलंका सरकार के वित्त सचिव और भारत के उच्चायुक्त ने भारतीय निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका के वित्त मंत्रालय के बीच हुए समझौते का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने विद्युत ग्रिडों को आपस में जोड़ने की परियोजना, संपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना और त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने सहित ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के तौर तरीके पर भी चर्चा किया। उन्होंने श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निविदा प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से आदित्य प्रताप से।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। उन्होंने इस पर क्षमा मांगी है और अपनी गलती पर खेद व्यक्त किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन ने अमेरिका की ओर से हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों के उत्तर में उसके विरुद्ध कई आर्थिक कदम उठाने की घोषणा की है, जिनमें ड्रोन के निर्यात पर नियंत्रण और 6 अमेरिकी संस्थाओं पर पाबंदियां शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि ये कदम चीनी ड्रोन के आयात पर अमेरिकी प्रतिबंध और 43 चीनी कंपनियों को उइघुर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम से संबंधित सूची में शामिल करने के बाद किए गए हैं। मंत्रालय ने अमेरिका से अपने प्रतिबंध को वापस लेने का आग्रह किया और चेतावनी दी है कि यदि नए प्रतिबंध लगाए गए तो चीन और भी कार्रवाई कर सकता है। चीन की ओर से प्रतिबंधित 6 अमेरिकी संस्थाओं में अप्लाइड डीएनए साइंसेज और गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स इन चाइना शामिल है। उन पर चीन में व्यापार या अन्य गतिविधियों में भाग लेने से रोक लगा दी गई है। ये घोषणा चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की सितंबर में अमेरिका की संभावित यात्रा से पहले की गई है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खोलने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत में प्रगति की घोषणा के बाद तेल की कीमतें 3 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गई हैं। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान कम होने की संभावना बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल लगभग 5% गिरकर $80 प्रति बैरल से नीचे आ गया है। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 5% से अधिक गिरकर लगभग $76 प्रति बैरल पर आ गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ओमान से संबंधित बातचीत में प्रगति हुई है। श्री बेसेंट ने कहा कि समझौता शीघ्र हो सकता है। दक्षिण कोरिया में भीषण गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि इस वर्ष मई के मध्य से जब सरकार ने भीषण गर्मी से संबंधित बीमारियों की निगरानी प्रणाली शुरू की थी, तब से भीषण गर्मी से संबंधित बीमारियों के कारण 2400 से अधिक लोग आपातकालीन कक्षों में भर्ती हुए हैं। देश की रोग नियंत्रण और रोकथाम एजेंसी के अनुसार इस वर्ष भीषण गर्मी से होने वाली बीमारियों से मरने वालों की संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस आज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की यात्रा पर पहुंचे, जहां इबोला का प्रकोप चिंताजनक रूप से फैल रहा है। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कुछ स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से वेतन न मिलने पर की गई हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न हुई है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इन खिलाड़ियों में इशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालीहा और श्री यांशी वल्ली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर और मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। चीन ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी आर्थिक कदमों की घोषणा की, जिसमें अमेरिका को ड्रोन निर्यात पर नियंत्रण भी शामिल है। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज़।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। ये सुरमई सुरमई रात, ये बादलों के साए, ये हवाओं का बाबरापन, ये सावन का महीना, महकता मौसम, ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई पैगाम सुना रहा हो, कोई इशारा करता हो। जी हाँ, जिंदगी का पैगाम, जीने का इशारा, कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है जीने का ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म अवतार से। आइए सुनें।

बात कहनी थी, इजाजत हो तो कह दूं मैं। ये भीगा भीगा सा मौसम, ये तितली फूल और शबनम, चमकते चांद की बातें, ये बूंदे और बरसातें, ये काली रात का आंचल, हवा में नाचते बादल, धड़कते मौसमों का दिल, महकती खुशबुओं का दिल, ये सब जितने नजारे हैं, कहो किसके इशारे हैं, किसके इशारे हैं। आइए इस गीत में सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म अनजाना से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत आपके लिए।

भीगी रात, ये कैफे बहार, ये सांसों की सरगम, ये बूंदों की रिमझिम, जिंदगी जैसे इन्हीं पलों में सिमट आई है। सीली हवाओं के होठों पर कोई धुन पुरानी है और मौसम कह रहा कोई मोहब्बत की कहानी है। और ये दिल तो है जो कहता है कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। ये गीत महबूब की मेहंदी फिल्म से हमने लिया है, लता मंगेशकर की आवाज में। आइए सुनें।

जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये याद है कि सावन का महीना चल रहा है और ये सावन की भीगी रात भी गुजर जाएगी, फिर किसी और रात में ये रात बहुत याद आएगी। तो याद को मीठी याद बनाने के लिए क्यों ना इस गुजरती रात के स्याह पन्नों पर हम लिखें रोशनी के गीत और मोहब्बत की सरगम में ढालकर बूंदों की धारों पर भेज दें समंदर की आगोश में, जहां हमेशा हमेशा के लिए ये गीत बजते रहें, वक्त के होंठों से छूकर अमर हो जाएं और उम्र की सीमा जन्मों के बंधन से परे ये प्यार बहता रहे दिलों से दिलों तक। कुछ ऐसा ही कह रहा है फिल्म प्रेम गीत का ये गीत।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: इसी गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर।

0: संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई, विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश हैं।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते साहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रेट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी।

0: के लिए आज श्रोताओं हमारे साथ आमंत्रित हैं हमारे समक्ष वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
1: प्राची, आप के साथ साथ गौरा, आपको भी गुड इवनिंग।
0: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर।
2: थैंक यू प्राची। सिद्धार्थ, वंस अगेन गुड इवनिंग, वेलकम। Listeners, a quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex rises over 150 points. Nifty settles above 24,600. RBI leaves repo rate unchanged. Raises current fiscal year growth forecast to 6.7%. Trims inflation projection to 5%. And global crude oil prices rise.
0: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त। सेंसेक्स 150 अंकों से ऊपर बढ़ा। निफ्टी 24,600 से ऊपर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष में विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया। वहीं महंगाई दर का अनुमान 5% घटाया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी।
2: Listeners, before we move further into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स 0.2% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% बढ़ा। बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा, दोनों प्रमुख शेयर सूचकांक कमजोर होते नजर आए। हालांकि कारोबार के अंत में क्लोजिंग ऑक्शन सत्र के बाद दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कुछ हद तक रिकवरी भी की।
2: Benchmark domestic equity indices ended on a positive note today. The Sensex gained 152 points to close at 78,581. The Nifty rose marginally by 10 points to settle at 24,625. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index rose 0.2% and the Small-Cap 100 Index added 0.8%. Earlier, the markets opened in the positive zone, but as the session progressed, both benchmark indices slipped into negative territory. However, towards the end of the session, the Sensex and the Nifty paired their losses after the closing auction session.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बढ़त वाली कंपनियों के शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट 2%, एनटीपीसी 1.8% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.7% बढ़े। वहीं घाटा दर्ज करने वाली कंपनियों के शेयरों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.2%, एचसीएल टेक 1% से अधिक और रिलायंस में लगभग 1% की गिरावट आई।
2: In sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, housing finance advanced 1.8%, metal rose 1.6% and auto gained 1.4%. In contrast, mid-small private banks quality tilt, energy and oil and gas fell by 0.4%, mid-small private banks fell 0.3% and capital goods dropped by 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,292 companies advanced, 1,958 declined and 198 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, अगर हम पिछले यूएस स्टॉक मार्केट के सेशन की बात करें तो वहां पर एक रैली रही, तो क्या ये उसी का प्रतिरूप हमें आज बाजार में देखने को मिला कि बाजार जो है पॉजिटिव नोट पर बंद हुए?
1: नहीं, उसके अलावा प्राची, जो मुझे लगता है न केवल जो यूएस मार्केट का रिफ्लेक्शन जो आप बोल रही हैं वहाँ पे जो तेज़ी है पिछले तीन चार दिनों में, खासकर आईटी स्टॉक्स में तेज़ी है जो अमेरिकी बाज़ारों में, मुझे लगता है कि आज जो मुझे लगता है जैसे जैसे जब बाज़ार खुले तो काफ़ी फ्लैट थे, उसके बाद गिरे भी लेकिन उसके बाद रिकवरी आई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दो तीन जो महत्वपूर्ण कारण मुझे लगता है, खासकर एक जो अमेरिका और ईरान

0: और अन्य विवरण जल्द साझा किए जाएंगे। प्लास्टिक के नोट जब चलन में आ जाएंगे, जिसकी परिकल्पना हम अभी कर रहे हैं, और किस तरीके से उभरेंगे ये तो वक्त बताएगा सिद्धार्थ, मगर आप इसे कैसा देखते हैं ये हम जानना चाहेंगे।
1: नहीं प्राची, मुझे लगता है कि दुनिया के 30 देश कम से कम ऑलरेडी प्लास्टिक नोट्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और RBI रिजर्व बैंक भी इसको एक पायलट के तहत अभी शुरू कर रहा है, एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। हालांकि जो एक्चुअल हमको देखने को मिलेंगे नोट्स वो अगले साल अप्रैल में, जो उन्होंने बोला है अगले वित्त वर्ष के शुरू में। और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, कम से कम ऐसा बोला जाता है कि जो अपने कागज़ के नोट हैं उनसे कहीं ना कहीं कम से कम 2 से 4 गुना ज़्यादा उनका लाइफ स्पैन होता है। आप उसमें जो फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स और अच्छे डाल सकते हैं, और अगर लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा अगर कॉस्ट इनिशियली ज़्यादा भी होगी तो जो उनकी लाइफ स्पैन है अगर वो ज़्यादा है तो वो उसको कवर कर लेगी। तो कहीं ना कहीं एक तो दो कारण तो ये हो गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली कि जो छोटे नोट्स हैं, जो छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स हैं
0: जी,
1: उनका जो उसका शुरुआत हम वहाँ से कर रहे हैं, और वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे 10 या 20 रुपए के नोट्स की जो बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो आप इस्तेमाल में आते हैं वो 10 से 10 रुपए या 20 रुपए के नोट्स का चलन ज़्यादा होता है।
0: हाँ,
1: जो 500 का नोट है वो आप रोज़ रोज़ हर चीज़ में अपने लेन देन में उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो है छोटे नोट्स, इसीलिए फोकस इज ऑन स्मॉल नोट्स, स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स। और ये आने वाला मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने बोला कि पायलट के तौर पे शुरुआत करें, अगर रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो इसको और जो है बड़े पैमाने में इसको आगे बढ़ाएंगे।
0: बिल्कुल।
2: मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज आइटम, द ऑफर फॉर सेल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हिच क्लोज्ड टुडे अट्रैक्टेड बिड्स फॉर अबाउट 70% ऑफ द शेयर्स सेट असाइड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। अकॉर्डिंग टू BSE, द कैटेगरी प्लेस्ड बिड्स फॉर अबाउट 57.6 मिलियन शेयर्स कंपेयर्ड टू 82.2 मिलियन शेयर्स रिजर्व्ड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। यस्टरडे ऑफर फॉर सेल इन द LIC रिसीव्ड एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल investors and was oversubscribed. In view of the exceptional demand, the government had decided to exercise the green shoe option. Moving on to our next story, India's services sector remained in expansion territory in July, supported by healthy export demand and continued hiring. According to the HSBC India Services Purchasing Managers Index PMI, data compiled by S&P Global, the seasonally adjusted services PMI, Business Activity Index stood at 53.3 in July. It remained above the 50 mark that separates growth from contraction. However, the country's service economy growth slowed in July as business activity rose at the weakest pace in over 4 years. This was largely due to softer demand, competitive pressures and order postponements. Meanwhile, service providers continued to report growth in activity with strong overseas demand emerging as a key support factor. The report showed that the rate of job creation showed an uptick from that in June, with service providers continuing to expand their workforce. Further, input cost inflation softened to a 6-month low and remained below the long-running average despite higher fuel, labor, material, technology and transportation expenses. Additionally, the HSBC India Composite PMI Output Index, which tracks both manufacturing and services activity, fell to 54.3 in July, from 57.1% in June. So that here we're seeing figures and we're also seeing mixed indications. And we also know that a lot of seasonal adjustments, normally some months it does traditionally fall and does pick up later. Anything, any area of concern? Because we're moving overall over the indicators, we're seeing a marginally downward movement.
1: No, Gaurav, I don't think it is anything of concern, obviously, and also this PMI index, it's also gives us it's a futuristic indication of things to come. So the heartening, still what is heartening in this is that it is above 50%. So anything above 50% indicates that there is expansion, there is in demand, so nothing to worry. And the other important why we should watch this data is also because, especially the service index, because almost 50% of Indian economy is now service sector. So I don't think there is anything to worry. Yes, obviously, and this is despite so much of uncertainty, and so I don't see still anything which is should be a matter of concern.
2: Oh, right. Okay. It could be considered in, as they say, in the normal flow of things.
1: And it is sometimes it's also month to month dips.
2: Absolutely.
1: So probably then. No,

0: next month it picks up.
1: And not read too much into it.
0: Yeah, and it is, since it is still futuristic and above 50%, so I don't think anything to as a matter of concern.
2: आगे बढ़ते हैं गौरा और जायजा लेते हैं एशिया बाजार का. प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 4% और जापान का निकेई 3.5% से अधिक बढ़ा. सिद्धार्थ, क्या ये कहना उचित होगा आज की तारीख में कि एआई को लेकर के जो भय जो एक लोगों के दिल में था वो अब धीरे धीरे निवेशकों के जहन से उतर रहा है, कम हो रहा है? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं एशियाई बाजार के संदर्भ में, तो आप क्या इससे सहमत होंगे कि अब ये भय उतर रहा है या फिर अभी कहीं ना कहीं और भी देखने की जरूरत है और वक्त लेने की जरूरत है?
0: नहीं प्राची, मुझे लगता है ये मतलब अगर मैं एकदम से कहूं कि नहीं ये खत्म हो गया ये भय, तो ये सत्य नहीं होगा. क्योंकि जब ये भय आया था तब भी आप देखेंगे जो जिस मार्केट की आप बात कर रहे हैं साउथ कोरियन कॉस्पी, तो वहां पे जो दो बड़ी कंपनियां उनको रिकॉर्ड ऑर्डर्स मिले थे यूएस की कंपनियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चिप्स वगैरह बनाने,
2: यानी ये कड़ी वहां से जुड़ी हुई.
0: हाँ बिल्कुल है, उसका बहुत बड़ा रोल है उनका वहां पे, क्योंकि दो बड़ी कंपनियां दुनिया को जो सप्लाई कर रही है चिप्स वो साउथ कोरिया के मार्केट में ही है. उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन से आता है तकरीबन 50%. तो ये जल्दबाजी होगा कहना कि अब वो भय खत्म हो गया. लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स आए हैं और कहीं ना कहीं जो एक अब जो लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना भी दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ का पार्ट है. हाँ, अब वो उसकी वैल्यूएशन, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो कितना जस्टिफाई करेगा, वो आने वाले समय में तय होगा. और अभी ये कह देना कि भय खत्म हो गया, मुझे लगता है ये जल्दबाजी.
2: यानी कुछ चीजें गौरा भविष्य के गर्भ में रहने देनी चाहिए.
1: राइट. इनफैक्ट व्हेन वी टॉक ऑफ द फियर लिंक टू दिस, आई थिंक द कंसर्न दैट इट्स अ बबल, इट्स अ वेरी बिग बबल, इट्स गोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दैट समवेयर हैज बीन मॉडरेटेड एंड आई थिंक ऑल्सो स्ट्रेंथन्ड बाय द फैक्ट दैट यू नो इट्स नॉट रियली अ बबल. But it's a sunrise area.
0: Or would do the kind of investment justify the earnings? Probably that also is a reason.
1: Right. Our next story, government has operationalized the inventory-based cross-border e-commerce export framework under the Foreign Trade Policy 2023. The framework provides a comprehensive policy and procedural architecture for facilitating inventory-based cross-border e-commerce exports of goods manufactured or produced in India. It incorporates several safeguards to ensure that the benefits of e-commerce exports accrue to Indian manufacturers and MSMEs while maintaining regulatory oversight. It also provides for timely payments to Indian sellers within the prescribed timeline, irrespective of the receipt of payment from overseas buyers. A quick comment here, Siddharth, because one of the grudges of the MSMEs is that, you know, we want a quick turnaround time for the money to come back to us.
0: Timely
1: and
0: payment.
1: This will, yes, because that keeps them going.
0: Yeah, I think one more step in the direction of ease of doing business and facilitating the process of for our exporters, and also obviously taking care of the interest of the MSME, small scale industries.
1: Right. Crude oil prices, global crude oil prices rose today. Brent crude was trading 1.4% up at $80.45 per barrel in intraday trade. West Texas intermediate crude was trading 0.8% higher at $76.37 per barrel when reports last came in. Right. I think you already have made your comment on crude oil prices, so we shall move to gold and silver, the glittering metals. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 2.2% up at 1,47,490 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% higher at 2,28,800 rupees per kilogram. A short while ago.
2: मल्टीकमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.8% बढ़कर 1,45,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 2.7% की बढ़त के साथ 2,27,520 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. सिद्धार्थ, समय की परिधि में रहते हुए मैं टिप्पणी आपसे चाहूंगी सोने के दाम पर खास करके, और एक सोने चांदी अगर आप दोनों के दाम पर बताएं तो बेहतर है.
0: नहीं देखिए, सोना अभी तक जो बॉटम हमने देखा इस पिछले 2-3 महीने में, हमने देखा तकरीबन $4,000 पर आउंस पे कहीं ना कहीं वो मतलब वहाँ बाइंग आ रही है. हाँ, वहाँ बाइंग आ रही है. लेकिन अभी आप जब आज की बात करें तो एक बार फिर कीमतें बढ़ी हैं, तकरीबन मुझे लगता है $4,100 के ऊपर पर आउंस है. और उसके दो प्रमुख कारण जो मुझे लगता है, एक तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आई हैं, साथ ही साथ जो US के ट्रेजरी यील्ड्स हैं या बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी थोड़ा घटा है हल्का सा. तो वो दोनों कारण है, क्योंकि गोल्ड को ये माना जाता है कि इसमें कोई आपको रोज रोज कोई इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी अभी भी बड़े पैमाने पे गोल्ड जमा कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड बनी रहेगी।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, मेरे और गौरा के हम दोनों के ही तमाम सवालों के जवाब।
0: आप दोनों को भी धन्यवाद।
1: थैंक यू सिद्धार्थ। Before we close the headlines, benchmark domestic indices end on positive note. Sensex rises over 150 points. Nifty settles above 24,600. RBI leaves repo rate unchanged, raises current fiscal year growth forecast to 6.7%, trims inflation projection to 5%, and global crude oil prices rise. That's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। पहला गीत हमने लिया है फिल्म असली नकली से, आइए सुनें।

फिल्म श्री 420 का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश मन्ना डे की आवाजों में। अगला गीत हमने लिया है फिल्म मदर इंडिया से, लता मंगेशकर की आवाज में, आइए सुने।

फिल्म साहिब बीवी और गुलाम का ये गीत आपने सुना गीतादित्य की आवाज में। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए फिल्म आया सावन झूमके से, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

0: इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अंजू आ गई है स्टूडियो में आगे का कार्यक्रम लेकर। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग

0: हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई, विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा को सभी के लिए बेहतर और सुलभ बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी विचार विमर्श किया गया। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कल रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। इससे ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं। डॉक्टर राज्य सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें होम्योपैथी डॉक्टरों को एक विशेष प्रशिक्षण के बाद एलोपैथी दवाएं लिखने की अनुमति देने का प्रावधान है। सेंट्रल महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर अथर्व शिंदे ने कहा कि सरकार से बातचीत नहीं होने पर 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं भी बंद की जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कल लैंडमाइन विस्फोट में सेना के दो जवान घायल हो गए। ये घटना मेंढर सेक्टर के कांगा गली इलाके में हुई जहां सेना के जवान लैंडमाइन को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान विस्फोट हो गया। घायल जवानों को तुरंत सेना के अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित सात भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसेन सिंह, रक्षिता श्रीरामराज, अश्मिता चालीहा और श्रेयांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर और मिक्स डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी।
4: The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion.
3: The Lok Sabha has passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the

ये सावन की फुहार और तुम्हारी मीठी सी बातें, ये सावन की फुहार और तुम्हारी मीठी सी बातें लगता है सदियों बाद आई हैं, ऐसी हसीन रातें।

दोस्तों समय हुआ है 12:11 और ये हुए 13 सेकंड। मैं हूँ आपके साथ अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूँ निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करती हूँ कि ये सफर हमारा बहुत सुंदर रहेगा। तो चलिए शुरुआत करती हूँ हमेशा की तरह कुछ अल्फाज के साथ।

सच तो है कि कुछ कहता है ये सावन। क्या कहता है सुनिए। कहता है कि बूंदे तो गिर रही हैं लगातार मेरे आंगन में, बूंदे तो गिर रही हैं लगातार मेरे आंगन में, पर एक तुम्हारी कमी खल रही है इस सावन में।

मांग लो खुदा से या खुद को तुम्हारे नाम कर दूं, मांग लो खुदा से तुम्हें या खुद को तुम्हारे नाम कर दूं, मेरे इस नादान दिल पर पूरा हक, मैं चाहती हूं तुम्हारे नाम कर दूं।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

शायद तुम्हें नहीं पता कि बिना कुछ कहे वो सब कुछ कह जाती हैं, कि बिना कुछ कहे वो सब कुछ कह जाती हैं। तेरी आंखें ही तो हैं जो मेरे दिल में रह जाती हैं।

क्या करूं कि तुम इस दिल की धड़कन में हमेशा बनकर रहते हो? क्या करूं कि तुम इस दिल की धड़कन में बनकर रहते हो? मेरी हर सोच, मेरी हर बात में सिर्फ तुम ही रहते हो।

कि किस्मत के पन्नों पर खुदा खुद ये पैगाम लिखेगा, एक दिन वो हमारी मोहब्बत का मुकम्मल अंजाम लिखेगा।

लोग बदलते होंगे बदलते मौसम की तरह यहाँ, लोग बदलते होंगे बदलते मौसम की तरह यहाँ, पर मुझे भरोसा है तुझ पर कि मैं हूँ तेरी जमीन और तू है मेरा आसमान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

0: लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डी फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानी हारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कल ताशकंद में हुई। बैठक में दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, रक्षा शिक्षा, क्षमता निर्माण और रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुखरोव जोन सोजिक जोनोविच सिरोजोव ने की। दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों और सैन्य तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अंतर्गत दोनों देशों में विशेष प्रशिक्षण और अभ्यास आयोजित किए जाएंगे जिससे सैनिक एक दूसरे के अनुभवों और बेहतर रणनीतियों को साझा कर सकेंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ताशकंद स्थित सैन्य सुरक्षा और रक्षा विश्वविद्यालय का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बड़ी क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। नेटफ्लिक्स इंडिया ने बताया कि बैठक में भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच पर ले जाने की साझा सोच पर बातचीत हुई। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में ओडिशा का सामना पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से, ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया। वहीं झारखंड ने उत्तर प्रदेश को शूटआउट में हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Parliament has passed a Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is a need of the hour and a timely reform. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. The Lok Sabha has passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers, books and to align it with the contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first

दोस्तों समय हुआ है 1:10 समय हुआ है 1:11:03। मैं हूं अंजू, एक बार फिर से आपके साथ कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अभी तो दिल की बात शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो दिल की बात शुरू भी नहीं हुई है। रात रात को यहीं रोक लो, क्योंकि अभी तो मुलाकात शुरू भी नहीं हुई है।

बिना कुछ कहे ही जो सब कुछ बयां कर देती है, बिना कुछ कहे ही जो सब कुछ बयां कर देती है, तेरी इन कातिल निगाहों को मेरा 100 बार सलाम है।

वैसे तो लाख चेहरे हैं इस दुनिया की भीड़ में, मगर वैसे तो लाख चेहरे हैं इस दुनिया की भीड़ में, मगर जिस पर ठहर जाए ये नजर, वो इकलौता चेहरा सिर्फ तुम हो।

0: दुनिया ढूंढती है खुदा को पत्थर की मूरत में, दुनिया ढूंढती है खुदा को पत्थर की मूरत में, मैंने तो अपने दिल के मंदिर में सिर्फ और सिर्फ तेरी तस्वीर को ही बसाया है।
1: तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिल

तेरी बाहों के घेरे में आकर दुनिया भूल ही जाते हैं हम। तेरी बाहों के घेरे में आकर बस ये दुनिया भूल ही जाते हैं हम। यही तमन्ना है कि ये वक्त यहीं रुक जाए।

एक महफिल सी सज गई है अब मेरे वीरान दिल में, एक महफिल सी सज गई है अब मेरे वीरान से दिल में, जब से आपने मोहब्बत की रोशनी को बिखेरा है।

लाख संभल कर चलते हैं लोग इस जमाने में मगर, लाख संभल कर चलते हैं लोग इस जमाने में मगर, जिसने भी तुझको देखा एक बार वो अपने सुध-बुध खो बैठा।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर रात सर में लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाला कर्मी नहीं पाया गया। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,098 हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की पहचान की गई थी। उन्होंने कहा कि सभी चिन्हित लोगों को 40,000 रुपए की एक मुश्त सहायता

0: राशि दी गई है। मंत्री ने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दे रही है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन पवन हंस लिमिटेड ने नई दिल्ली में नॉर्वे की कंपनी नोएमी एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह सहयोग देश में स्वदेशी क्षमता को मजबूत करने और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। भारतीय रेल ने कंटेनर ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटरों के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अब कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर एक ही अखिल भारतीय लाइसेंस के अंतर्गत भारतीय रेल के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेन चला सकेंगे। अलग अलग मार्गों के लिए अलग अनुमति और शुल्क की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि नए नियमों से प्रक्रिया आसान होगी, निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रेल के जरिए माल ढुलाई बढ़ेगी। इससे सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा, ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बहुत क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडो से मुलाकात की। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का सामना पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु के कोयंबटूर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is a need of the hour and timely reform. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. The Lok Sabha has passed the Banker's Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. August 5, 2026 marked 7 years since the historic abrogation of the Articles 370 and 35A. On this day in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said, constitutional changes made in 2019 ushered in development and empowerment in the two union territories. In a social media post, Mr. Modi highlighted that infrastructure has expanded, opportunities in areas such as education, healthcare, entrepreneurship and sports have grown in both Jammu and Kashmir and Ladakh.

दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। समय हुआ है 2:11 और 12 सेकंड। कार्यक्रम लेकर आई हूँ रात सुहानी। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। रहेगा ये सफर बहुत ही खूबसूरत, तो क्यों ना शुरुआत कुछ अल्फाज के साथ की जाए। चाहकर भी हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं, चाहकर भी हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब भी तुम पास आते हो हम और मदहोश हो जाते हैं।

जो कभी मिट ना सके वो हसीन सा एहसास हो तुम, जो कभी मिट ना सके वो हसीन सा एहसास हो तुम, तुम्ही के पता कि मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत का खूबसूरत आगाज हो तुम।

ना कोई ख्वाहिश ना कोई तमन्ना, ना कोई ख्वाहिश ना कोई तमन्ना है अब इस दिल को। मेरी इबादत, मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम हो।

जमाने भर को पसंद होंगी सावन की ये पहली बारिश, जमाने भर को पसंद होगी ये सावन की ये पहली बारिश, पर तेरे बिना इस दिल के लिए सिर्फ ये एक आजमाइश है।

अजनबी थे वो, मगर पहली नजर में कुछ ऐसा कमाल हुआ। अजनबी थे वो, मगर पहली नजर में कुछ ऐसा कमाल हुआ कि निगाहें क्या मिली उनसे, दिल का संभलना ही मुश्किल हो गया।

लाख पहरे लगा ले ये जमाना हमारे जज्बातों पर मगर, लाख पहरे लगा ले ये जमाना हमारे जज्बातों पर मगर, दुनिया से बचकर तेरी निगाहें, दुनिया से बचकर तेरी निगाहों का मेरी निगाहों से मिलना लाजवाब होता है।

आईना भी देखता है जब तुम्हें तो खुद पर गुमान करता है। आईना भी देखता है जब तुम्हें तो खुद पर गुमान करता है। तेरी मासूमियत के आगे तो चांद भी झुककर तुझे सलाम करता है।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है। भारतीय स्टूडियो में आ चुके हैं। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 3:10 पर। भारती रहेंगी आपके साथ कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी को नहीं पाया गया है। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,000 से अधिक ऐसे कर्मियों की पहचान की गई थी। मंत्री ने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दे रही है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बहुत क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिसरी ने श्रीलंका

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, लेकिन आपका स्वागत करती हूं मैं कार्यक्रम हमराही में। जी हां, और एक प्यारे से गीत के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

कुछ रिश्ते वक्त की किताब में नहीं, दिल की धड़कनों में लिखे जाते हैं। सच्ची मोहब्बत वही है जो दूरियों में भी अपनेपन की खुशबू बिखेरती है।

कभी कभी एक नजर ही पूरी कहानी कह जाती है। जब आंखों में प्यार उतर आए तो शब्द भी मुस्कुराने लगते हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मोहब्बत की राह में अलहड़पन भी एक खूबसूरत एहसास होता है, जो दिल को बेवजह मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। वही तो प्यार की सबसे प्यारी अदा है।

जब किसी की खुशी अपनी खुशी बन जाए और उसकी मुस्कान में अपनी दुनिया नजर आए, तब समझिए कि प्यार अपनी सबसे खूबसूरत मंजिल पर पहुंच चुका है।

प्यार कोई जीत हार का खेल नहीं, ये तो दिलों का खूबसूरत सफर है, जहां अहंकार नहीं सिर्फ अपनापन और विश्वास ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए, जल्द मुलाकात होगी 4:10 पर। जी हाँ, प्रोग्राम अरुणिमा में। तब तक के लिए मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति। आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाज

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाला कर्मी नहीं पाया गया। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,000 से अधिक ऐसे कर्मियों की पहचान की गई थी। मंत्री ने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दे रही है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बहुत क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजिदा हिरात और विदेश सचिव अरुणे रणराजा से मुलाकात की। नीति आयोग ने कल री इमेजिनिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और समय हो गया है 4:11 और 14 सेकेंड। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम अरुणिमा की अभिमान फिल्म के गीत के साथ। लता मंगेशकर ने गीत को अपनी आवाज़ दी है और संगीतकार एस जी बर्मन, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म जुर्म से कुमार सानू और साधना सरकम की आवाज में। संगीतकार राजेश रोशन, गीतकार इंदिवर।

अभी आपने गीत सुना फिल्म कस्मे वादे से किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, संगीतकार आरटी बर्मन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम है अरुणिमा। आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और सुनते हैं अगला गीत फिल्म आया सावन झूम के से मोहम्मद रफी की आवाज़ में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म धरती से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार राजेंद्र कृष्णन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म क्रांति से लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार संतोष आनंद।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म साजन का घर से साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज में, संगीतकार नदीम श्रवण, गीतकार समीर।

और अब जो गीत है वो है कार्यक्रम का आखिरी गीत। गीत है फिल्म सत्य पे सत्ता से किशोर कुमार, भूपेंद्र, सपन चक्रवर्ती और आरटी बर्मन की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं ये गीत और उसके बाद वैसे तो समय कह ही रहा है कि आपसे अनुमति ले ली जाए, लेकिन छोड़ के जा रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। जल्द मुलाकात होगी 5:10 पर कार्यक्रम भोर सुहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया। सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाला कर्मी नहीं पाया गया। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,000 से अधिक ऐसे कर्मियों की पहचान की गई थी। उन्होंने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों का कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। नीति आयोग ने कल रीमैनेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 नामक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में देखभाल करने वाले कर्मियों को सशक्त बनाने और देश में एक बेहतर देखभाल व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य भारत को कुशल देखभाल कर्मियों के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि देखभाल केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं व्यापक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन पवन हंस लिमिटेड PHL ने नई दिल्ली में नॉर्वे स्थित नोएमी एयरोस्पेस के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन की अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि यह सहयोग नागरिक उड्डयन क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और उभरती प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए भारत की व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की काफी क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरांटोस से मुलाकात की। पुदुचेरी सरकार ने अंततः अपने मंत्रिपरिषद को विभागों का आवंटन कर दिया है। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने आवंटन को मंजूरी दी और मुख्यमंत्री एन रंगासामी की उपराज्यपाल के साथ हुई बैठक के बाद सरकारी राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी की गई। विभागों के आवंटन में देरी को लेकर हाल के हफ्तों में विपक्षी दलों ने आलोचना की थी। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्रालय में कई वरिष्ठ सैन्य नियुक्तियों और बदलावों की घोषणा की है। रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव और सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में पुतिन ने कहा कि इन सुधारों से सेना

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ।

सुख में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच्ची पहचान वही है जो कठिन समय में भी आपका हाथ थामे रहे। आइए आज ऐसे इंसान बने जो हर परिस्थिति में अपनेपन का साथ निभाए।

कोयल गाती है क्योंकि उसकी वाणी में मधुरता है। उसी तरह हमारी वाणी में भी प्रेम, सम्मान और सद्भाव से भरी हो, ताकि जहां भी जाएं खुशियों की गूंज छोड़ जाएं।